0: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

बोल, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल। लक्ष्मण आंख खोलो। लेकिन जब लक्ष्मण जी बहुत देर तक बोले नहीं तो राम जी के अश्रु के बिंदु गिरने लगे। अश्रु के बिंदुओं को गिरता देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले, बाबा प्रभु आपको रोता हुआ देखकर हमसे नहीं रहा जा रहा, आप कहो तो हम मौत को मार दें, मृत्यु को ही मार दें। राम जी बोले, उससे क्या होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु यदि हम मौत को मार देंगे तो लक्ष्मण जी नहीं मरेंगे। राम जी बोले, तुम मौत को मार दोगे तो लक्ष्मण जी तो नहीं मरेंगे पर रावण भी तो नहीं मरेगा। जब मौत ही मर जाएगी तो रावण काहे को मरेगा। मौत को मत मारो, कोई उपाय खोजो। विभीषण ने कहा, एक वैद्य रहता है लंका में, उसका नाम सुसेन वैद्य है। यदि वो आ जाए तो वो दवा बता सकता, बहुत पहुंचा हुआ वैद्य है। अब लंका में वैद्य रहता, जाए कौन। हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, आप टेंशन ना लो, पूरा गूगल मैप पता है। फर्स्ट टाइम आए थे तो घर घर गए थे एंट्री देखने के लिए, तो कौन मकान कौन से कैसा है, हम जा रहे हैं। राम जी बोले, पर जा तो रहे हो पर वैद एक ही है। बोले एक ही है। विभीषण बोले एक ही है। राम जी बोले एक ही वैद है तो पक्का रावण ने वहां पे पहरेदार लगा दिए होंगे। हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, उन सबसे निपट लेंगे। बोले क्यों। हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, हमें जानते हैं, हमने उलट पलट लंका सब जारी, आग लगाने हमने पहले श्री गणेश में ही ऐसा माहौल बना दिया कि अब वो बंदरों के नाम से डरते। और बात सही है, क्या गजब का माहौल बजरंग बली ने मनाया लंका में कि जब हनुमान जी गए वापस आ गए तो दूसरी बार अंगद जी गए। अंगद जी गए तो लंका में हल्ला मचा। बोले क्या। बोले वही बंदर आ गया। लंका वाले कौन। बोले जो पहले आया था। तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी का ऐसा स्वागत, अंगद जी को ऐसे लगे जैसे अपने राज्य में आ गए। तो अंगद जी बोले, भैया हाथ क्यों जोड़े हो। सब राक्षस कह रहे। बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा, दस मूड वाला उसे समझा। हाँ। तो अंगद जी जब वापस आए तो राम जी ने पूछा, क्यों लंका का माहौल क्या था। अंगद जी बोले, प्रभु हनुमान जी ऐसा माहौल बनाया है कि और बंदरों को भी वो हनुमान जी ही समझते हैं। तो हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, लंका का माहौल अपन सेट किए, हम जा रहे। हनुमान जी गए सुसेन नामक वैद्य के पास, पहरेदार लगे थे। जैसे ही हनुमान जी को देखा सब बोले लगे ना, महाराज जो करना हो सो करो, हम जे चले, आंख बंद किए। हाँ, वो होता ना हमारे गांव में कहावत है, घर का परसने वाला हो ना तो दो रसगुल्ला एक्स्ट्रा धर देता। तो सब हनुमान जी को जानते ही थे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे। बोले विरोध का तेरी भी खबवानी है क्या, इनसे विरोध करने का मतलब है सीधा जाना। और हनुमान जी की एक आदत अच्छी है, क्या, जब भी मन करता कीर्तन करते। और लंका में कीर्तन करते तो मंजीरा चाहिए, और मंजीरा मिलते नहीं तो दो राक्षस को ही बजाने लगते। आ आ तो हनुमान जी की किसी चीज से आदमी डरे ना डरे, लंका वाले दो चीजों से डरते थे, कीर्तन से और पूंछ से। इनकी पूंछ और खतरनाक, पूंछ के एरिया में कोई नहीं फंसता था। अच्छा, एरिया फिक्स हो पूंछ का तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो तो घट भी जाए और बढ़ भी जाए। तो जैसे ही हनुमान जी सुसेन वैद्य के पास पहुंचे, जितने राक्षस सिक्योरिटी में लगे थे सब समझ गए कहीं कीर्तन ना कर दे। सो एक तरफ हो गए, बोले महाराज जो करना हो सो कर लो। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम भ्रष्टम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। क्या हनुमान जी ने सोचा, यदि मान लो हमने वैद्य को उठाया ले गए तो ये घर जाके कहेगा सामग्री यही रह गई, दवाई यही रह गई, बीपी मशीन वही रह गई, अगर गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने कहा डिस्पेंसरी ही उठा लो, पूरा अस्पताल ही उठा लिया, और कौन जगह पे पूरा मकान। अच्छा, हनुमान जी कोई भी काम करते हैं फुटकर नहीं करते, थोक ही में करते। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पहाड़ ही लेके आओ। इनसे कहा कि जानकी माता का पता लगाया, लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि वैद्य को ले आओ, ये पूरा अस्पताल ही उठा के चले आए। और जैसे ही लेकर के आए, सुसेन नामक वैद्य आया, दरवाजा खटखटाया तो सुसेन वैद्य को लगा कि हमारे दरवाजे पे इतने लोग आए, क्योंकि वो तो सो रहा था। जगाया, राम जी का परिचय बताया। हनुमान जी बोले, इनको दिक्कत हो गई, लक्ष्मण जी को जरा चेक करो। सुसेन वैद्य बोला, एक दिक्कत, एक उपाय है। क्या। बोले कोई बूटी ले आए तो बच सकते हैं, नहीं तो। और बोले सुनो, सूर्योदय के पहले बूटी आ जाए। अब राम जी चिंता में, जामवंत जी चिंता में, विभीषण जी चिंता में, सब सेना चिंता में कि उपाय तो बता दिया कि बूटी लाओ, पर शर्त रख दी सुबह सूर्योदय के पहले। अब जाए कौन। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु हम जाएंगे।
आप पे संकट है, हमारा नाम संकट मोचन है, बोलो हनुमान जी महाराज। तो राम जी बोले तुम जाओगे तो पर शर्त है। हनुमान जी बोले क्या? बोले सूर्योदय के पहले आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान की टेंशन ना लो, वो हमें बचपन से ही जानते उनकी चिंता नहीं है हमें। बोले क्यों? बोले ब्रेकफास्ट में हम अर्ली मॉर्निंग ले गए थे उनको तो पहले तो ब्रेकफास्ट में अब डिनर में ले लेंगे जय बजरंग बली की। बोले उनकी टेंशन ना लो, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, हम समझा देंगे कि थोड़ा देर से आना। एक तो उसके पहले हम आ ही जाएंगे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी उसके पहले कैसे आ सकते? तो जामवंत जी ने कहा आ सकते कैसे?

जी बोले ये जा सकते हैं, जामवंत जी बोले जा सकते हैं, बोले कैसे, बोले भैया ये अंजन पुत्र है, अंजनी पवन सुत नामा है, ये पवन सुत है तो पवन की तरह गति से चलने वाले, इनकी प्रगति का क्या कहना, इसीलिए हनुमान जी महाराज पवन से तेज चलने वाले, पवन की तरह चलने वाले हैं, यही जाकर के ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। तो संकट कटे मिटे सब। अब यहां राम जी ने कहा, जब बूटी लेकर के आए संजीवनी बूटी, अच्छा आप देखो संजीवनी बूटी लेने गए तो एक और दिक्कत हुई, पूछो क्या, जोर से पूछो, देखो हनुमान जी कितने संकट मोचन है। जैसे ही संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए तो जो पहरेदार लगे थे वैद के बाहर, उनने रावण को खबर दी कि जो बंदर फर्स्ट टाइम आया था वही सेकेंड टाइम आया। रावण बोला किस लिए, वो तो युद्ध में आया। अरे बोले युद्ध में नहीं, अलग से फिर से लंका आया, किस लिए, हम बोले वैद को ले गया, किडनैप हो गया वैद। रावण बोले अच्छा, हाँ रावण बोले हम समझ गए, जो शक्ति लगी है वो संजीवनी पता कर लिया होगा। बोले हाँ पता कर लिया कि थोड़ी देर में भाई साहब टेक ऑफ करने वाले। बोले कहाँ के लिए, बोले बूटी लाने के लिए जाने वाले हैं थोड़ी देर में, ये खबर है। तो सबके राजाओं के गुप्तचर होते थे तो रावण के भी गुप्तचर थे, बोले थोड़ी देर में जाने वाले। रावण बोला टेंशन ना लो हम, बोले शर्त क्या है, बोले सूर्योदय के पहले आने की शर्त है। रावण बोला चिंता ना करो, एक पता करो इस बंदर की कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या, सबकी एक ना एक कमजोरी होती है, इस बानर की क्या कमजोरी है। गुप्तचर बोले एक भी कमजोरी नहीं है, मजबूती मजबूती है। हाँ, एक गुप्तचर बोला इसलिए इनका नाम बजरंग बली है। रावण बोला क्या नाम है, बजरंग बली। बोले इसका मतलब क्या, बोले जिसकी देह वज्र की तरह हो, वज्र अंग, इसलिए इनको बजरंग कहते। रावण बोला अच्छा हाँ। रावण बोले और कोई उपाय इस बंदर को फंसाने का, तो बोले क्या जाल के लिए वैसा वाला बंदर है, खतरनाक है खतरनाक। रावण बोला कोई तो उपाय होगा। एक सेवक बोला हम बहुत दिन वहां रहे, इसकी एक कमी है और हनुमान जी की एक कमजोरी है, पूछो क्या।

भैया राम, अब कथा सुन लो नहीं तो कथा छूट जाए। यदि हमने भजन सुनाया तो कथा छूट जाएगी, यो कथा सुनाएंगे तो भजन छूट जाएगा, भजन तो बाद में हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, राजस्थान वाले बहुत फास्ट है। तो रावण ने कहा कमजोरी क्या, हनुमान जी की कमजोरी क्या है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम, जहां जहां राम जी का कीर्तन है वहां वहां हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की कमजोरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब रावण ने हनुमान जी को फंसाने का उपाय किया, काल नेमी के पास पहुंच गए। किसके पास भैया? काल नेमी। हाँ बोलो। एक काम करना है। क्या? तुम्हें कथावाचक बनना। काल नेमी बोला हमने कथा ही नहीं सुनी, वाचक क्या हलवा में बनेंगे, हमने कथा ही नहीं सुनी है। तो रावण बोला वो तो बनना पड़ेगा। काल नेमी बोला और चाहे जो बना लो पर कथावाचक मत बनाओ, हमने कथा आती ही नहीं सुनाएंगे। रावण बोला सुनाना क्या, यही लंका की सुना देना। मान लो किसी ने पकड़ लिया तो? अरे बोले वो काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए। हाँ काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए। तो काल नेमी बोला कि यदि हम ना कथावाचक बने तो? रावण बोला फिर क्या, मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा इसके हाथों से मरने से अच्छा है उनके हाथों से मरे। एक बात बताओ, सुनानी किसको कथा है? रावण बोला हनुमान जी को। काल नेमी बोला ये हनुमान जी कौन है? अरे बोलो बंदर है ना वो। बोले किस लिए? अरे बोले उसको फंसाना है। काल नेमी बोले कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में आके आग छुबाई थी? रावण बोला हाँ वही है वही है। काल नेमी बोला तुम फंसा नहीं पाए, हम हलुआ फंसा ले, तुम्हारे जैसा बलवान उसे फंसा पाया? बोले नहीं फंसा पाए। तो काल नेमी बोला जब तुम फेल हो गए तो हम तो पहले ही फेल है। रावण बोला ज्यादा पटर पटर मत करो, हम फेल नहीं हुए, हमने कोशिश नहीं की। अहंकारी आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता, जो घमंडी होता वो बहुत खतरनाक होता, कभी भी अपनी गलती नहीं समझता। गलती भी पकड़ी जाए तब भी कह देता है रहने दो देखा जाएगा। तो यही रावण बोला है हमने कोशिश नहीं की। काल नेमी बोला ठीक है हम कर रहे कोशिश। अब काल नेमी चला हनुमान जी को फंसाने। अब देखना कैसे हनुमान जी संकट मोचन। काल नेमी बैठा बीच में माया का आश्रम बना करके ब्याज गद्दी लगाकर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी उड़ते हुए पवन की तरह वेग से चलने वाले पवन पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी चले जा रहे थे। हनुमान जी की नजर नीचे पड़ी, नीचे काल नेमी बैठा था। हनुमान जी ने सोचा ध्यान

एक घड़ी नहीं आधी घड़ी ही सही, आधी में से भी आधी। भगवान की कथा सुन ले, करोड़ों अपराधों को काट देती। हनुमान जी उतर गए नीचे, काल नमी बैठा और जैसे ही हनुमान जी को देखा सो पहचान गए यही वो बंदर है। तो जो कथा आती थी वो और भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो हमसे बड़े वाले आ जाते ना, बड़े कथावाचक, उनको देखकर हम भी भूल जाते। तो ये कथा पढ़ के हमें लगा कालनेमी पे क्या बीती होगी। अब कालनेमी पे जो बीती, अरे पूछो ना, कालनेमी कथा क्या सुना रहा, ना बाल कांड, ना अयोध्या, ना अरण्य कांड, ना सुंदर, सीधा लंका कांड। न रावण का जन्म, न राम जी का, सीधा लड़ाई बता रहा। बोले रावण को राम जी मार रहे और रावण भी लड़ रहा। हनुमान जी ने सोचा पहले से ही कथा चल रही होगी इसलिए यहां तक पहुंच गई। भाई होता ना कि भाई आगे निकल गई, हम थोड़ा लेट आए होंगे, तो हनुमान जी बैठ गए, अब कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास लगी। बताइए हनुमान जी को प्यास, अरे हनुमान जी के लिए तो लिखा राम।

0: जिनके पास राम रसायन है उनको प्यास, यदि कोई भक्त भगवान की कथा गाएगा तो लगी हुई प्यास हनुमान जी की बुझ जाती है, पर कोई काल नेमी गाता है तो प्यास हनुमान जी को लग जाती है, इसलिए हनुमान जी को प्यास लगी। अब हनुमान जी को प्यास लगी तो बोले गुरुजी क्षमा करो हमें प्यास लगी। कालनेमी बोला कोई बात नहीं, एक काम करो हमारा कमंडल ले लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। तो कालनेमी बोला चेला बन जा। अब उसने कभी दीक्षा दी नहीं ली नहीं, उसे क्या पता। बोले चेला बन जा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। तो स्नान करने बोले करो। जैसे ही स्नान करने गए मगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। अच्छा ये क्या है, मगर क्या है? अच्छा मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, केवल हनुमान जी का नहीं सबका, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी।
1: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान, और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाल ने जीता सिल्वर मेडल, भारत ने अब तक जीते 24 मेडल्स। मुंबई में आज धूमधाम से हो रहा है लाल बागचे राजा की विदाई, कुछ ही देर में गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी शोभा यात्रा, मन्नतों के राजा की विदाई यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा दल, गरबा और तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज, पितरों के तर्पण का पर्व 10 अक्टूबर तक चलेगा, महाले पक्ष सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, देवी देवताओं की दिव्य झांकियों ने मंत्रमुग्ध किया, कलाकारों ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग, किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार, आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास, तो वहीं अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। 12 अक्टूबर को समापन होगा।

0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति की विदाई की तस्वीरें। मुंबई में लालबाग चौराजा की भव्य शोभा यात्रा जारी है और थोड़ी ही देर में लालबाग चौराजा की सवारी गिरगांव चौपाटी पहुंचने वाली है, जहां पर उन्हें भावभीनी विदाई दी जाने वाली है। आपको बता दें कि कल दिन में विधि विधान से लालबाग चौराजा की सवारी लालबाग के पंडाल से निकली और उनकी विदाई की शोभा यात्रा अभी तक जारी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज सुनने को मिल रही है। लोगों का उत्साह है जो देखते ही बनता है। ये शोभा यात्रा लालबाग मार्केट से शुरू होती है और यहां से शुरू होकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, भारत माता सिनेमा, लालबाग पुलिस चौकी और चिंचपोकली ब्रिज से होते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ी है। तो वहीं लालबाग चौराजा के विसर्जन शोभा यात्रा का कुल सफर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का होता है। इसी दूरी को तय करने में आमतौर पर 18 से 24 घंटे का समय लग जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास राजा की सवारी लालबाग पंडाल से निकलती है और अगले दिन सुबह गिरगांव चौपाटी पहुंचकर विसर्जन संपन्न होता है। बप्पा की एक झलक को पाने के लिए सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है, जिसे रथ पर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया जाता है। तो वहीं बप्पा की विशाल मूर्ति और उनके भव्य रथ को मुंबई की संकरी सड़कों और बिजली की तारों से बचाते हुए बेहद सावधानी से ले जाया जाता है। वहीं मुंबई के जुहू बीच पर देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा और इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति को विदाई दी गई। देश के दूसरे इलाकों में भी 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद गजानन को विदाई दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की, जहां पर गणपति विसर्जन के लिए यहां पर पंडालों से यहां शोभा यात्रा निकाली गई। और आपको बता दें लालबाग चौराजा का विसर्जन आज होना है, आज उन्हें भावभीनी विदाई दी जाने वाली है और लाखों की भीड़ है जो उनकी एक आखिरी झलक को इस साल पाने के लिए यहां पर जुटी हुई है। आपको बता दें महाराष्ट्र की संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लाखों की भीड़ होती है और यही वजह है कि घंटों का समय लग जाता है। पंडाल से निकलकर गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं और वहां पर विसर्जन होता है और इसी वजह से कई बार 23 से 24 घंटे का समय भी लग जाता है इस शोभा यात्रा को पूरे होने में। अब से कुछ देर में गिरगांव चौपाटी लालबाग चौराजा की प्रतिमा पहुंचने वाली है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गणपति बप्पा मोरया की गूंज के साथ विसर्जन किया गया है। बेहद धूमधाम से भावुक होते हुए लोग यहां पर विसर्जित कर रहे हैं। 10 दिनों के गणेशोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया गया। और चलिए अब वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुजरात के अंबाजी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा संघ। 25 साल से ट्रेडिशनल ड्रेस कोड के अंबाजी आ रहा राजकोट का संघ। 15 दिन 15 पारंपरिक पोशाकों के साथ लंबी पद यात्रा निकाली गई। राजकोट के संघ के सदस्य हर दिन अलग अलग पारंपरिक पहनावा पहनते हैं। राजपूत अहीर और भरवाड़ समाज की पोशाकें भी यात्रा का हिस्सा है। अंबाजी के चाचर चौक में गरबा और तलवारबाजी की शानदार प्रस्तुति। पैदल यात्रियों के ने मां अंबा के दरबार में गरबा किया तो वहीं महिलाओं और बच्चों ने हैरतअंगेज तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। मां अंबा के दरबार में रंग बिरंगी पोशाकों का नजारा देखने को मिला। राजकोट का संघ हर साल अनोखे ड्रेस कोड के साथ करता है पदयात्रा। 130 से 150 सदस्य एक जैसे पारंपरिक अंदाज में पदयात्रा करते हैं। बोल मारी अंबे, जय जय अंबे से गूंजा है मार्ग। गुरुजी माड़ी के नेतृत्व में हर साल आयोजित होती है अंबाजी की पदयात्रा। अंबाजी में 5 दिन में 35 लाख भक्तों ने दर्शन किए। आज से पितृपक्ष, पितरों के तर्पण का पर्व है। 10 अक्टूबर तक महाले पक्ष चलेगा। सर्वपित्र अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन होगा। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज हुआ है। दिवंगत हुए पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध की परंपरा चलेगी। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान किया जाएगा। पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा है। तो वहीं तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ होता है। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत। इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, रोशनी, सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। 22 से ज्यादा झांकियों से सजा शहर। इंदौर की सड़कों पर दिखा आस्था और कला का संगम, देवी देवताओं की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं को मोहा, कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। खजराना गणेश मंदिर की झांकी से हुई उत्सव की भव्य शुरुआत, AI और 3D तकनीक से सजी इंदौर।

0: झांकियों में दिखी बॉडी बिल्डिंग की झलक। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा, आर्य तारा शाक्य ने इंद्र जत्रा में किया नगर भ्रमण। सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालुओं में दिखा खास उत्साह। नई जीवित देवी ने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। आर्य तारा शाक्य की एक झलक को पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग कुमारी के साथ, रथ के साथ उमड़ा आस्था का सैलाब। इंद्र जात्रा में कुमारी का रथ काठमांडू की सड़कों से गुजरा। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। उत्सव में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम दिखा। ढोल नगाड़ों से गूंजा काठमांडू, निकली भव्य रथ यात्रा। इंद्र जात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इंद्र जात्रा में दिखी सदियों पुरानी नेवारी संस्कृति। कुमारी, गणेश और भैरव के रथ रहे मुख्य आकर्षण। हनुमान ढोका से शुरू हुआ रंगीन इंद्र जात्रा उत्सव 8 दिनों तक काठमांडू में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग। अनंत चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गिरिराज तलहटी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने गिरिराज महाराज पूजा अर्चना कर आशीर्वाद की कामना की। हजारों श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक आयोजन ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। विशेष सजावट ने गिरिराज तलहटी की बढ़ाई भव्यता। मंदिर में गिरिराज महाराज का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार। गिरिराज महाराज का पंचरत्नम महाअभिषेक किया गया। गिरिराज महाराज के दरबार में भक्तों की आस्था का रंग देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। हैदराबाद में धूमधाम से दी गई पापा की विदाई। हुसैन सागर झील में क्रेन की मदद से किया गया 69 फीट ऊंचे खैतराबाद के पंचमुखी महागणपति का विसर्जन। झील में बनाए गए टैंक में किया गया इको फ्रेंडली पापा का विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पापा को विदाई दी। अगले साल जल्द आने की कामना की। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने ढोल ताशों की गूंज के बीच पापा को विदाई दी। गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष से गूंजा पूरा परिसर। 11 दिन की पूजा के बाद धूमधाम से विदा किए गए गणपति बापा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के बीच निकली शोभा यात्रा। पुलिस वालों ने उड़ाए गुलाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर बापा की प्रतिमा को विसर्जित किया। चौहान ने लोगों के कल्याण की प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बापा को धूमधाम से विदाई दी गई। विसर्जन जुलूस में बापा की 70 विशाल प्रतिमाएं शामिल हुई। भक्तों ने ढोल ताशों और डीजे की धुन पर नाच गाकर बापा का स्वागत करने के बाद उन्हें विदा किया। तो वहीं गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। अकोला में गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बप्पा ने दूर किया भक्तों का कष्ट। बारिश होने से श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको

0: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। देखिए, पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है तो आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत तो हो चुका है उन्हें हम सामान्यतः पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा मन के साथ जुड़ करके सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है और पितृपक्ष के 15 दिनों में जो आपके पितर हैं वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके सम्मान में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा तो पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक यानी पितृ विसर्जन अमावस्या तक रहेगा। देखिए, पितृपक्ष बड़ा पवित्र समय है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है। तो पितृपक्ष में कौन से काम किए जाएं, कौन से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय जिसको कुतप वेला कहते हैं, लगभग मध्य दोपहर के समय में ये जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास है कुश, इसको रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और पूर्वज के देहांत वाली तिथि पर किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। तो जब आप अपने पितृ के देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, किसी निर्धन को भोजन करा लेते हैं तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है जिसको तर्पण करना कहते हैं और जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि पर उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण पितृपक्ष में रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पुत्र, भतीजा, ये भी तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र या नाती यानी पुत्री का पुत्र, इसको भी तर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। आजकल के समय में, वर्तमान में, स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, अगर दूर दूर तक घर में कोई पुरुष नहीं है तो। तर्पण जो भी करे नियमानुसार करे, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप तर्पण कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने पितरों को जल दे रहे हैं, तो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय है, लेकिन पितृपक्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपना जीवन जीने में, अपने रूटीन का पालन करने में। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करिए और अपने पितरों को याद करिए, उनके नाम से संध्या में दीपक जलाइए और दिन के समय में तर्पण करिएगा। कुतप वेला मध्य दोपहर का जो समय है, इस समय में पितरों को जल दीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है, और जब आप तर्पण करेंगे तो जल में काला तिल मिला लेंगे, हाथ में कुश ले लेंगे, और इसके बाद जब आप जल देंगे, जब आप तर्पण करेंगे, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। जो कोई व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, पितरों के लिए दान कर रहा है, दीपक जला रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करिएगा। जहां तक हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और अगर आप पितरों को फूल चढ़ाते हैं या जल में फूल डालकर उनको अर्पित करते हैं तो वो हल्की सुगंध वाले होने चाहिए, तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। और पितरों का श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है, तर्पण करना है, तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले तो पितृ पक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। सारी भगवत गीता का पाठ ना भी कर पाए तो 11वें अध्याय का नियमित पाठ करिएगा। कर्ज लेकर या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर प्रेशर में, कष्ट में श्राद्ध करने का लाभ नहीं होता। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, निगेटिव समय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष कोई नकारात्मक समय या कोई निगेटिव समय नहीं होता। पितृपक्ष में पवित्रता से रहने से, दान करने से, धर्म का पालन करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, बिल्कुल सामर्थ्य ना हो कि पितरों के नाम से दान करें, श्राद्ध करें, लोगों को अन्न वस्त्र वगैरह दें। आप खुद ही बहुत गरीब हो तो श्राद्ध कैसे करेंगे? श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। दोपहर के समय में पितरों को जल दीजिएगा और इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाइएगा और पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा, श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबर।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत। पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाल ने जीता सिल्वर मेडल। भारत ने अब तक जीते 24 मेडल्स। मुंबई में आज धूमधाम से हो रही है लालबाग चौराजा की विदाई। कुछ ही देर में गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी शोभा यात्रा। मन्नतों की राजा की विदाई यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा दल। गरबा और तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज। पितरों के तर्पण का पर्व 10 अक्टूबर तक चलेगा। महालिपक्ष सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव। देवी देवताओं की दिव्य झांकियों ने मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग। किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति 2026 का युद्धाभ्यास। अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं होंगी शामिल। 12 अक्टूबर को होगा समापन।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है, इसके नियम क्या होते हैं और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, निगेटिव समय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष कोई नकारात्मक समय या कोई निगेटिव समय नहीं होता। पितृपक्ष में पवित्रता से रहने से, दान करने से, धर्म का पालन करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं।
4: और चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 26 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या होगा।
0: दिनांक 26 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत अपने खास विषय के साथ करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि पितृ कौन होते हैं और पितृपक्ष किसे कहते हैं।
0: जी देखिए, पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है तो आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम सामान्यतः पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा मन के साथ जुड़ करके सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। और पितृपक्ष के 15 दिनों में जो आपके पितृ हैं वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके सम्मान में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा, तो पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक यानी पितृ विसर्जन अमावस्या तक रहेगा।
4: और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मेष राशि, इस समय आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, पैसा लगाने में धन के निवेश में सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि पितृपक्ष में किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
0: देखिए, पितृपक्ष बड़ा पवित्र समय है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, तो पितृपक्ष में कौन से काम किए जाएं, कौन से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय जिसको कुतप वेला कहते हैं, लगभग मध्य दोपहर के समय में ये जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास है कुश, इसको रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और पूर्वज के देहांत वाली तिथि पर किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। तो जब आप अपने पितृ के देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, किसी निर्धन को भोजन करा लेते हैं, तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं।
4: और चलिए वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आज आप पहला सवाल किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं जम्मू से। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1993, जन्म का समय रात में 9:42, जन्म स्थान है जम्मू। मीनाक्षी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की अच्छी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं और ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2027 के पहले आपका विवाह होना चाहिए। जम्मू या जम्मू के आसपास होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। आपके करियर और धन का मामला आपकी कुंडली में अच्छा है, तो उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
4: और आगे बढ़ते हैं आज की आपकी दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आप दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न रीना सिंह ने हमें लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 2010, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे मुझे अपने बेटे को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए? रीना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आपका बेटा आगे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में जाए, आगे अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जाए, कंप्यूटर्स की पढ़ाई करे, तो आपके बेटे के लिए बहुत उत्तम रहेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकेंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने दिन आपके बेटे की अगले 2-2.5 साल तक पढ़ाई चल रही है, उसमें वो भटकने ना पाएं, गलत संगति आदि में ना पड़ें। तो फिलहाल आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं, और अगर संभव हो तो इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए बेहतर होगा।
4: तो चलिए, पितृपक्ष की बात कर रहे हैं इस शो में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है।
0: देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जिसको तर्पण करना कहते हैं, और जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि पर, उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, वो रोज तर्पण पितृपक्ष में रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पुत्र, भतीजा, ये भी तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र या नाती यानी पुत्री का पुत्र, इसको भी तर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। आजकल के समय में, वर्तमान में, स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, अगर दूर दूर तक घर में कोई पुरुष नहीं है। तो तर्पण जो भी करे, नियमानुसार करे, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप तर्पण कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने पितरों को जल दे रहे हैं, तो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना चाहिए।
4: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने की।
0: तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और चलिए पितृपक्ष के विषय में आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जानने का वक्त हो चला है कि आखिर पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी होता है।
0: देखिए, पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय है, लेकिन पितृपक्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपना जीवन जीने में, अपने रूटीन का पालन करने में। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करिए और अपने पितरों को याद करिए, उनके नाम से संध्या में दीपक जलाइए और दिन के समय में तर्पण करिएगा। उत्तप वेला, मध्य दोपहर का जो समय है, इस समय में पितरों को जल दीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है और जब आप तर्पण करेंगे तो जल में काला तिल मिला लेंगे, हाथ में कुश ले लेंगे और इसके बाद जब आप जल देंगे, जब आप तर्पण करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। जो कोई व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, पितरों के लिए दान कर रहा है, दीपक जला रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिएगा। जहां तक हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और अगर आप पितरों को फूल चढ़ाते हैं या जल में फूल डालकर उनको अर्पित करते हैं तो वो हल्की सुगंध वाले होने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। और पितरों का श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है, तर्पण करना है तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। सारी भगवत गीता का पाठ ना भी कर पाए तो 11वें अध्याय का नियमित पाठ करिएगा। कर्ज लेकर या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर प्रेशर में कष्ट में श्राद्ध करने का लाभ नहीं होता।
4: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न वरुण गुप्ता ने हमें लिखा है और वरुण हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1982। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है आगरा। वरुण कह रहे हैं कि मैं अभी खाने पीने की चीज का व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो क्या ये व्यापार मेरे लिए सुटेबल है और आगे क्या इस व्यापार को करने से मुझे लाभ रहेगा? वरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप खाने पीने की चीज का, कन्फेक्शनरी का, होटल रेस्टोरेंट का अगर काम कर रहे हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। थोड़ा सब्र करिए, मई

0: आप तरक्की कर सकेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आपका चौथा और अंतिम सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, चौथा सवाल किसका होने वाला है आज?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न रमेश कुमार जी ने हमें लिखा है, और रमेश कुमार जी मुरादाबाद से हमें मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1965, जन्म का समय दोपहर में 2 बजे, और जन्म स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। रमेश जी कह रहे हैं कि मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, आधे में बन करके ही रुका हुआ है। जब भी मैं मकान बनाने की शुरुआत करना चाहता हूं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा मकान जल्दी बन सके और मुझे सफलता मिल सके। रमेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से आपका मकान पूरा बन पाएगा और पूरा लाभ आपको हो पाएगा। आप नवंबर के महीने से जो बाकी बचा हुआ मकान है उसको बनवाने का प्रयास करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 26 सितंबर को है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: ही विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से ये जान लेने का कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि पितृ पक्ष के नियम किनके ऊपर लागू नहीं होते। देखिए, जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम सावधानियां लागू नहीं होती।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 26 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा होने वाला है।
0: दिनांक 26 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 26 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए ये जान लेंगे कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में किस चीज का प्रयोग जरूर करेंगे। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। आपको पूजा में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप तमाम तरह की मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज का सबसे जरूरी सवाल लेने का, वो है आज का महा उपाय कौन सा है।
0: जी, देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, बिल्कुल सामर्थ्य ना हो कि पितरों के नाम से दान करें, श्राद्ध करें, लोगों को अन्न वस्त्र वगैरह दें। आप खुद ही बहुत गरीब हों तो श्राद्ध कैसे करेंगे। श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। दोपहर के समय में पितरों को जल दीजिएगा और इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाइएगा और पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा, श्राद्ध कर्म संपन्न होगा।
1: तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।

0: नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

11 दिनों तक घर घर में सुख समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देने वाले गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई दी गई और इस दौरान मुंबई से लेकर जालना, कोला और नागपुर तक श्रद्धा का सैलाब नजर आया। ढोल ताशों की गूंज, गुलाल और फूलों के साथ बप्पा को भावभीनी विदाई दी गई और साथ ही भक्तों ने उनसे अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की। देखिए रिपोर्ट।

0: आगमन हुआ था तो घर आंगन खिल उठे थे। अप्रस्थान की घड़ी है तो वही आंगन सूना सूना है। ढोल की थाप के बीच विदाई है, गुलाल की रंगत के बीच हल्की उदासी है। हजारों आवाजों के बीच एक ही पुकार है, बप्पा जल्दी आना, अगले बरस जरा जल्दी आना। अपने साथ नई उम्मीदें लाना, नई खुशियां लाना, हर परिवार के जीवन में मंगल भरना। दिल में बप्पा की छवि है, हाथ जुड़े हैं और होठों पर सिर्फ एक पुकार, गणपति बप्पा मोरिया। ये वो पल है जब उत्सव थम रहा है मगर आस्था की धड़कन अब भी तेज है। 11 दिनों तक घर घर में मंगल का उजाला रहा, आरती की थाल सजी, मोदक का भोग लगा, हर दिन बप्पा के नाम रहा। अब वही गजानन विदाई ले रहे हैं। मुंबई से लेकर अकोला और अलग अलग जगहों पर सड़कें श्रद्धालुओं के सैलाब से भर चुकी है। कहीं गुलाल की रंगत है, कहीं फूलों से सजारत, ढोल ताशों की गूंज है, लेकिन दिल में बिछड़ने की टीस आंखों में दिखाई दे रही है। सुबह जब लालबाग से पहली तस्वीर सामने आई तो भक्तों की आंखें नम हो गई। लालबाग के राजा विसर्जन के लिए निकले तो दर्शन के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। जितनी दूर तक नजर जाए भक्ति भक्त नजर आए। किसी के हाथ में पुष्प थे, किसी की आंखों में नमी, हर चेहरे पर अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था। ऐसी ही भावना जालना में भी देखने को मिली, जहां मोती तालाब स्थित विसर्जन कुंड पर गणेश प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात तक जारी रहा। घरेलू पूजा से लेकर सार्वजनिक मंडलों तक अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु अपने लाडले गणराय को लेकर पहुंचे। जल में समर्पित करने से पहले बप्पा की आरती हुई, हाथ जोड़कर अगले साल शीघ्र आगमन की प्रार्थना की गई। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने प्रतिमाओं को विधिवत विसर्जित करवाया और किसी अनहोनी से बचाव के लिए पुलिसकर्मी भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। उधर अकोला में भी बप्पा की विदाई का रंग भावना से मिलकर इंद्रधनुषी हो गया। विदर्भ की सबसे बड़ी विसर्जन शोभा यात्राओं में शामिल 12 भाई गणपति की पालकी निकली। ढोल ताशा, डिंडी और अखाड़ों के साथ निकले इस जुलूस में करीब 70 गणेश मंडल और अखाड़े शामिल हुए। रास्ते में भव्य झांकियां दिखी, कलाबाजी के करतब नजर आए और सबसे खास रहा गजानन का हाथी पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देना। कृत्रिम हाथी पर विराजे विघ्नहर्ता का ये स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना रहा। मातृशक्ति पार्वती नंदन की सनूठी सवारी को आगे बढ़ाती दिखाई दी, लेकिन इन भव्य दृश्यों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी रही जिसने दिल छू लिया। कुछ श्रद्धालु जल में अर्पित करने से पहले प्रतिमा को बार बार सिर से लगाते नजर आए। आंखों में आंसू थे, मन में बिछड़ने का दर्द था और प्रार्थना थी कि जाते जाते बप्पा विदर्भ को अच्छी बारिश का आशीर्वाद देकर जाए। अकोला में घरेलू प्रतिमाओं के लिए महानगर पालिका की ओर से बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंड पर भी सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ युवा और महिलाएं झूमते दिखे, मगर समर्पण की घड़ी आते ही उल्लास भावुकता में बदल गया। नागपुर के राजा की विसर्जन यात्रा भी धूमधाम से शुरू हुई। आरती के बाद रथ आगे बढ़ा, साथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जुलूस। ढोल ताशों की थाप ने माहौल को भक्तिमय कर दिया, जयकारों से रास्ते गूंज उठे। दर्शन के लिए मार के दोनों ओर लोग खड़े रहे, किसी ने फूल बरसाए, किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कई दिनों तक भक्तों के बीच विराजे नागपुर के राजा का पूरे भक्तिभाव से विसर्जन हुआ। जालना से गौरव विजयशाली, अकोला से धनंजय साबले, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गणपति विसर्जन की परंपरा का धार्मिक महत्व है और इसके पीछे एक कहानी भी है जो इसे महाभारत काल से जोड़ती है। आपको दिखाते हैं आखिर क्या है विसर्जन से जुड़ी मान्यता।

0: सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। लेकिन भादो के महीने में विघ्नहर्ता गजानन संसार में शुभता की बौछार करने स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। पूरे 10 दिनों तक बेहद श्रद्धा के साथ भक्त गणपति की सेवा पूजा करते हैं और 10 दिनों के बाद उतनी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति को धूमधाम से विदा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौरी नंदन की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है।
1: 14 भुवन एक पति हुई, चतुर्दश भुवनानि विश्वा, ऐसा वेदों में उल्लेख आता है। तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 स्वामी होते हैं और गणपति को हमारे यहाँ गणाध्यक्ष माना गया। तो 10 दिशाओं से हम मंगल की कामना करें, 10 दिशाओं से समाज के लिए, परिवार के लिए उत्तम अवस्थाएं आए, इसलिए भगवान गणपति का 10 दिन का महोत्सव होता है। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को प्रणाम करके उनको हम विश्राम देते हैं, विसर्जन करते हैं, इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व है।
0: भाद्रपद के इन 10 दिनों में गणपति के पूजन और आखिरी दिन उनके विसर्जन से जुड़ी एक युगों पुरानी पौराणिक मान्यता भी है। ये पौराणिक कथा गणपति विसर्जन की परंपरा को महाभारत से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ अपने हाथों से लिखा था। दरअसल भगवान गणेश को विद्या के साथ साथ लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। इसी के चलते महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के महाग्रंथ को लिखने का दायित्व स्वयं गजानन को सौंपा था। कथा के मुताबिक महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का वाचन शुरू किया, जिसे सुनकर गजानन ने लिखने की शुरुआत। पौराणिक संदर्भों में गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो बिना धैर्य खोए शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। तभी तो महर्षि वेद व्यास आँख बंद करके महाभारत की कथा सुनाते रहे और गजानन बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर उसे अपनी लेखनी से उतारते रहे। वेद व्यास महाकाव्य समाप्त कर चुप हुए और आंखें खोली तो देखा गणपति के शरीर पर गर्द जम गया था। लगातार लेखन और श्रम से उन्हें गर्मी लग रही थी। तब महर्षि व्यास गजानन को सरस्वती नदी के तट पर ले गए। शरीर की गर्मी दूर करने के लिए उन्होंने गणपति को सरस्वती के जल में डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। माना जाता है कि इसी के साथ पवित्र नदियों में भगवान गणेश के विसर्जन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। सारे भारत में आज तक अलग अलग रूपों और रिवाजों के साथ ये परंपरा अनंत श्रद्धा से निभाई जाती है।
1: हमारे यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, मृतिका की जो मूर्ति होती है उसको एक संवत्सर से दूसरे संवत्सर तक रखने का पूजा का प्रमाण है। क्योंकि मिट्टी के मूर्ति पर जब हम जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अर्चना करेंगे तो वो मूर्ति खंडित होने की संभावना होती है। खंडित मूर्ति की पूजा हमारे धर्म शास्त्र में नहीं बताई गई, इसीलिए इन मृतिका की मूर्तियों को जिस स्थान से जल में जल मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, सब इसीलिए विसर्जन करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी पूजा लगातार हम नहीं कर सकते, इसलिए उस दिन हम उनको भगवान गणपति को विसर्जित कर देते हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं से इतर गणपति विसर्जन किस परंपरा के पीछे लोक कल्याण की भावना भी छिपे है। वास्तव में सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि शरीर या पिंड विनाशी है जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इसी तरह 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=MC² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य को बल देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गणपति बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। साफ है कि बापा के विसर्जन की परंपरा में जन कल्याण की भावना भी समाहित है। तभी तो जितने उल्लास के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, घरों में पूजा पंडालों में बापा को गाजे बाजे के साथ लाया जाता है, उतनी ही उमंग बापा की विदाई के दिन भी दिखती है। जिस तरह गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही विसर्जन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न न आए। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनोहार के बीच गणपति को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ नदियों, तालाबों और सागर के अंतस में विसर्जित कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि बाप्पा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। मूर्ति जल में लौट जाती है पर बाप्पा हर दिल में ठहर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों की मैराथन मिसावन बरवालन जीता सिल्वर मेडल, महिला 50 मीटर राइफल में आशी चोक से तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने जीता सिल्वर। मुंबई में आज लालबाग चौराहे की विदाई, गिरगांव चौपाटी पहुंची शोभा यात्रा, मन्नतों के राजा की विदाई यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बापा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बटाया हाथ। गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा दल गरबा और तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष की शुरुआत, 10 अक्टूबर तक चलेगा महाल्य पक्ष, सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा समापन। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, देवी देवताओं की दिव्य झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध कलाकारों ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले बुलेटिन में शानदार खबर आपको बता दें जापान में एशियन गेम्स चल रहे हैं और इससे खुशखबरी सामने आई है भारत के लिए। शानदार खबर यह है कि एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग में एक और सिल्वर मेडल जीत लिया है। आशी चौक से तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद की तिकड़ी ने विमेन्स 50 मीटर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौक से शानदार प्रदर्शन बदौलत भारत ने निशानेबाजी में अपना 11वां पदक जीत लिया है। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अब नजरें एथलेटिक्स के दूसरे मुकाबलों पर हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी मेडल्स की संख्या को बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 25 मेडल्स जीत लिए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं।

और चलिए अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की।

0: आपको दिखाते हैं गणपति की विदाई की तस्वीरें। मुंबई में लालबाग चौराहा की भव्य शोभा यात्रा जारी है। थोड़ी ही देर पहले ही लालबाग चौराहा की सवारी गिरगांव चौपाटी पहुंची, जहां उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। आपको बता दें कि कल दिन में विधि विधान से लालबाग चौराहा की सवारी लालबाग के पंडाल से निकली और उनकी विदाई की शोभा यात्रा आज सुबह तक जारी रही। हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, क्या आम और क्या खास। तमाम लोग बप्पा को विदाई देने गिरगांव चौपाटी पहुंचे, उनमें उद्योगपति अनंत अंबानी भी शामिल थे। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज सुनाई दी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये शोभा यात्रा लालबाग मार्केट से शुरू होकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, भारत माता सिनेमा, लालबाग पुलिस चौकी और चिंचपोकली ब्रिज से होते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ी। लालबाग चौराहा की विसर्जन शोभा यात्रा का कुल सफर लगभग 8-10 किलोमीटर का होता है और इस दूरी को तय करने में आमतौर पर 18-24 घंटे का समय लगता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास राजा की सवारी लालबाग पंडाल से निकलती है और अगले दिन सुबह गिरगांव चौपाटी पहुंचकर विसर्जन संपन्न होता है। बप्पा की एक झलक को पाने के लिए सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है, जिससे रथ बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया जाता है। बप्पा की विशाल मूर्ति और उनके भव्य रथ को मुंबई की संकरी सड़कों, बिजली के तारों से बमुश्किल बचाते हुए सावधानी से ले जाया जाता है। लालबाग चौराहा के साथ और कई गणपति प्रतिमाओं को आज गिरगांव चौपाटी पर विदाई दी गई है। बप्पा की विदाई के अवसर पर सबके मन में एक ही भाव है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुंबई के जुहू बीच पर देर रात तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति को विदाई दी गई। देश के दूसरे इलाकों में भी 10 दिनों के गणेशोत्सव के बाद गजानन की विदाई हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश तक की तस्वीरें। देखिए कितनी भक्ति भाव के साथ लोगों ने अपने बप्पा को विदाई दी है। देश भर की तस्वीरें आपके सामने हैं। गणपति बप्पा की प्रतिमा को शोभा यात्रा में भव्य रूप से लेकर गया गया है और उनका विसर्जन किया गया है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, बस यही गूंज हर ओर कल के दिन सुनने को मिली है। और आज शोभा यात्रा कई जगहों पर जारी है, जिनमें से एक है लाल बागचा राजा की प्रतिमा की शोभा यात्रा। आपको बता दें 23-24 घंटे ये शोभा यात्रा चलती है। पंडाल से निकलकर ये शोभा यात्रा पहुंचती है गिरगांव चौपाटी और यहां पर बप्पा का विसर्जन किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी यहां पर राफ्ट तैयार की गई है बप्पा के शानदार विसर्जन के लिए। और कुछ तरह का नजारा यहां पर बनता है कि लाखों की भीड़ बप्पा को देखने के लिए, उनकी एक झलक को आखिरी बार पाने के लिए उमड़ती हुई दिखाई देती है। देश भर के तमाम गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें से कुछ किस तरह से यहां पर भव्य तरीके से गणेश विसर्जन किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को ले जाया गया है, गीत गाते हुए, संगीत बजाते हुए यहां बप्पा का विसर्जन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गणपति बप्पा की विदाई की कुछ शानदार तस्वीरें जीएनटी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे गणेश उत्सव का यहाँ पर पर्व मनाया गया है वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब गणपति विसर्जन की तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें अनंत चतुर्दशी के दिन कल गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया कई जगहों पर और बेहद धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया है। बेहद शानदार सजावट की गई है। मुंबई में खास तौर से यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर चाहे वो लालबाग चौराहा का दरबार हो या फिर सिद्धि विनायक मंदिर, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गणपति बप्पा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते दिखाई देते हैं। दस तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शानदार तरीके से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया गया। कल अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया, उन्हें भावभीनी विदाई दी गई है। लोग भावुक नजर आए एक तरफ, दूसरी ओर धूमधाम से बेहद भक्ति भाव से उनका विसर्जन किया गया। अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि अच्छे तरीके से बप्पा का विसर्जन किया जा सके। तो वहीं कई जगहों पर प्रस्तुतियां भी दी गई जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नौका में सवार होकर लोग अपने अपने गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हुए नजर आए हैं। कल सुबह शोभा यात्रा शुरू हुई थी एक तरफ लालबाग चौराहा की और आज गिरगांव चौपाटी पहुंची है। तो वहीं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ, बस लोग यही कामना कर रहे हैं और यही जयकारे लगा रहे हैं। गुलाल उड़ाते हुए, संगीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों की थाप पर आगे बढ़ते हुए ये शोभा यात्रा निकाली गई। बेहद शानदार तरीके से, बेहद धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया है और अगले बरस उनके जल्दी आने की कामना भी यहाँ पर लोग करते हुए। मन्नतों का राजा कहा जाता है लालबाग चराजा को और यही वजह है कि लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनके दरबार में पहुँचते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, बिजनेस टाइकून्स का उनके दरबार में तांता लगा हुआ था और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग गणपति प्रतिमाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे शोभा यात्रा निकाली गई है। बेहद धूमधाम से इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है, संकरी गलियों से, सड़कों से सावधानी के साथ चौपाटी पर पहुँचते हैं और उनका विसर्जन किया जाता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाला ने जीता सिल्वर मेडल। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है। बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा। इस इवेंट में 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स में भारत को मिला था ब्रॉन्ज। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल, महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिकड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत, 1763 पॉइंट्स हासिल किए। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पहुंची बप्पा की विशाल प्रतिमा। बापा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी मौजूद, एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ी है लाखों भक्तों की भीड़। लगभग 8 से 10 किलोमीटर का होता है लालबाग चौराहे के विसर्जन शोभा यात्रा का कुल सफर। इस दूरी को तय करने में आमतौर पर लगता है 18 से 24 घंटे का समय। मूर्ति को मुंबई की संकरी सड़कों और बिजली की तारों से बचाते हुए बेहद सावधानी से विसर्जन के लिए पहुंची बप्पा की विशाल मूर्ति। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया का जय घोष। कल दिन में विधि विधान से लालबाग के पंडाल से निकली लालबाग चौराहे की सवारी बेहद भावुक नजर आ रही है। बप्पा की विदाई यात्रा में शामिल भक्त गुजरात के अंबाजी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा संघ। 25 साल से ट्रेडिशनल ड्रेस कोड के अंबाजी आ रहा राजकोट का संघ। 15 दिन 15 पारंपरिक पोशाकों के साथ लंबी पदयात्रा। राजकोट के संघ के सदस्य हर दिन अलग पारंपरिक पहनावा पहनते हैं। राजपूत, अहीर और भरवाड़ समाज की पोशाकें भी यात्रा का हिस्सा। अंबाजी के चाचर चौक में गरबा और तलवारबाजी की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। पदयात्रियों ने मां अंबा के दरबार में गरबा किया। महिलाओं और बच्चों ने भी हैरतअंगेज तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। मां अंबा के दरबार में रंग बिरंगी पोशाकों का नजारा देखने को मिला। राजकोट का संघ हर साल अनोखे ड्रेस कोड के साथ करता है पदयात्रा। 130 से 150 सदस्य एक जैसे पारंपरिक अंदाज में पदयात्रा करते हैं। बोल मारी अंबे, जय जय अंबे से गूंजा मार्ग। गुरुजी माड़ी के नेतृत्व में हर साल आयोजित होती है अंबाजी की पदयात्रा। अंबाजी में 5 दिन में 35 लाख भक्तों ने दर्शन किए। आज से पितृपक्ष पितरों के तर्पण का पर्व, 10 अक्टूबर तक चलेगा महालेपक्ष। सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध। इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा। तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों को किया जाता है श्राद्ध। पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ है। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत। इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, रोशनी, सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को भक्तिमय किया। 22 से ज्यादा झांकियों से सजा शहर। इंदौर की सड़कों पर दिखा आस्था और कला का संगम। देवी देवताओं की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं को अब मोहामन। कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समा। खजराना गणेश मंदिर की झांकी में हुई उत्सव की भव्य शुरुआत। AI और 3D तकनीक से सजी इंदौर की झांकियां। झांकियों में आधुनिक तकनीक का खासा इस्तेमाल। रोशनी से जगमगाया इंदौर, निकला झांकियों का कारवां। हाइड्रोलिक इफेक्ट और आकर्षक विद्युत सजावट ने बढ़ाई भव्यता। पुरुषों के साथ महिला कलाकारों ने भी दिखाई है तंगेज करतब। नृत्य और करतबों ने बटोरी दर्शकों की खूब तालियां। झांकियों में दिखी बॉडी बिल्डिंग की झलक। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा। आर्य तारा शाक्य ने इंद्र यात्रा में किया नगर भ्रमण। सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। नई जीवित देवी ने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। आर्य तारा शाक्य की एक झलक को पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुमारी के रथ के साथ आस्था का सैलाब उमड़ा। इंद्र यात्रा में कुमारी का रथ काठमांडू की सड़कों से गुजरा। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजन कर आशीर्वाद लिया। उत्सव में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम देखने को मिला। ढोल नगाड़ों से गूंजा काठमांडू, निकली भव्य शोभा यात्रा। इंद्र यात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इंद्र यात्रा में दिखी सदियों पुरानी नेवारी संस्कृति। कुमारी गणेश और भैरव के रथ रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। हनुमान ढोका से शुरू हुआ रंगीन इंद्र यात्रा उत्सव। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग। अनंत चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गिरिराज तलहटी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद की कामना की। हजारों श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक आयोजन ने माहौल को भक्तिमय किया। विशेष सजावट ने गिरिराज तलहटी की बढ़ाई भव्यता। मंदिर में गिरिराज महाराज का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार। गिरिराज महाराज का पंचरत्न महाअभिषेक किया गया। गिरिराज महाराज के दरबार में भक्तों की आस्था का रंग देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखे पीएम मोदी। इस दौरान पीएम ने ढपली पर भी बजाई। जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर किया गया भजन क्लबिंग संध्या का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने न सिर्फ भजन में रमते हुए दिखे प्रधानमंत्री, बल्कि भजन कर रहे कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ बड़ी संख्या में युवा भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम का आनंद लिया। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन किया गया। अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान। मेजर जनरल जूलियन सेबिने की अगुवाई में लेंगे हिस्सा। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026। दुनिया भर की वायुसेनाएं दिखाएंगी अपने कर्तव्य। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने विमानों के साथ हो रहे हैं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होगा अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेगा F-35 विमान। प्रयागराज में बदले मौसम ने लोगों को खुशनुमा मौसम की सौगात दी। पिछले दो दिन से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। नेपाल में बारिश के कारण बढ़ा कोसी बैराज के पानी का बहाव। खोले गए बैराज के 31 गेट। बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में हाई अलर्ट का निर्देश। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के बागहा में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील। स्वदेशी सैलानियों के लिए सीख लेने वाली गुड न्यूज आई सामने। उत्तराखंड के जोशीमठ में सफाई अभियान में जुटा रशिया से आए पर्यटकों का दल। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मठ में वासुदेवानंद जी के आश्रम के पास 3 दिन से सफाई अभियान में जुटे हैं रूस के पर्यटक। कूड़ा इकट्ठा कर दिया सफाई का संदेश। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली NCR में बारिश और आंधी का अलर्ट। गरज चमक और तेज हवाओं की भी संभावना। यूपी में आज और कल तेज बारिश की संभावना। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में बारिश का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश की वजह आज स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में भी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट। पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर तक बारिश का असर। नवेली का गाना भाभी तबाही हुआ रिलीज। वायु ने लिखे हैं तो वहीं इस शानदार गाने का कॉम्पोजिशन जीवी प्रकाश कुमार ने किया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस ग्लैमरस रेट्रो और विंटेज अवतार में नजर आ रही हैं। गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय पहली बार फिल्म तुम मेरे हो में साथ नजर आएंगे। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। नीम करौली के बाद बड़े पर्दे पर दिखेगी राजस्थान के बाबा रामदेव। पीर की कहानी 2027 में रिलीज होगी कृष्ण अवतार। सीताराम की गूंज के साथ 50 दिन से बॉक्स ऑफिस पर कायम हनुमान अंश। 381 करोड़ के पार हुई कमाई। चाइना में पांडा ने मनाया मिड ऑटम फेस्टिवल। चोंकिंग जू में पांडा को खास मून केक की दावत मिली। फल, सब्जियां और ताजे बांस के अंकुर का स्वाद दिया। चाइना में पांडे की अनोखी फेस्टिवल पार्टी देखने को मिली। पांडा ने सेब, अंगूर, कद्दू और गाजर का भी मजा लिया। प्राग जू में चीते के 5 शावकों ने जन्म लिया जिसमें 4 नर और 1 मादा शावक शामिल। 8 साल बाद प्राग जू में खुशखबरी मिली। 5 शावकों ने अपनी मां के साथ खेलते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। जंगल में सिर्फ 7,000 चीते ही बचे हैं। चीते संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है ये। हंगरी की नई स्टडी में डॉग्स और इंसानों के दिमाग की तुलना की गई। स्टडी में बड़ा दावा, डॉग्स का दिमाग भी बातचीत को समझता है। नतीजों में बातचीत के पैटर्न को प्रोसेस करने में समानता मिली। डॉग्स के दिमाग पर भाषा का असर होता है। इंसानों जैसी बातचीत प्रोसेस कर सकते हैं डॉग्स। बुडापेस्ट के वैज्ञानिकों ने 20 डॉग्स और 20 इंसानों पर रिसर्च की तो सामने आया। EEG से बातचीत सुनते समय डॉग्स के दिमाग की गतिविधि मापी गई तो वहीं डॉग्स में कॉन्सोनेंट पैटर्न पर रिदमिक एक्टिविटी ज्यादा मिली। डॉग्स सिर्फ आवाज नहीं पैटर्न भी पकड़ते हैं। डॉग्स ने पहचानी बातचीत के पैटर्न। रिसर्च में डॉग्स को बिना ब्रेक वाली लगातार बातचीत सुनाई गई। डॉग्स के दिमाग ने अलग अलग स्पीच पैटर्न पर अलग प्रतिक्रिया दी। डॉग्स के दिमाग ने कॉन्सोनेंट को अहमियत दी। डॉग्स को समझने की रिसर्च में नया मोड़ आया सामने। साइंस में प्रकाशित स्टडी ने कुत्तों की स्पीच प्रोसेसिंग पर नई रोशनी डाली। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में बच्चों की कला बनी आवाज। रोमाना आर्ट सेंटर में बच्चे अपने अनुभवों को चित्रों में उतार रहे हैं। चेक पॉइंट, छापों और हिंसा के बीच उम्मीद और आजादी भी रंग रहे हैं। पेंटिंग में बच्चों ने दिखाई आजादी की उम्मीद। 10 साल की तालिया सबा ने पिंजरे में उड़ते पक्षियों की तस्वीर बनाई। तालिया सबा ने इसे बताया आजादी का प्रतीक। हेब्रोन में कलाकार सारा अबू मादी का घर बना। बच्चों का आर्ट सेंटर 2020 में रोमाना सेंटर शुरू किया था। मकसद बच्चों को भावनाएं व्यक्त करने की सुरक्षित जगह देना। रोमाना की कलाकृतियां विदेशों तक पहुंची। बच्चों की कला वेस्ट बैंक से बाहर भी हो रही है प्रदर्शित। पुराने स्टोर रूम में शुरू हुआ रोमाना अब रंगीन चित्रों में सजा सेंटर। बस्तियों के विस्तार के बीच बच्चों की चित्रकारी। रोमाना की कार्यशालाओं में बच्चे अपनी कल्पनाओं को रंग दे रहे हैं। बच्चे रंगीन पेंटिंग्स के बीच बैठकर कला बनाते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: क्या है पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
11: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत। एशियन गेम्स में आज भारत का डबल धमाल, पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाल ने जीता सिल्वर मेडल, महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में आशी तिलोत्तमा और विदर्शा विनोद की तिकड़ी को भी रजत पदक। मुंबई में आज लालबाग राजा की विदाई गिरगांव चौपाटी में पहुंची शोभा यात्रा, तो वहीं मन्नतों के राजा की विदाई यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब।

बापा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन, अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बटाया हाथ। गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा दल, गरबा और तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष की शुरुआत, 10 अक्टूबर तक चलेगा महाल्य पक्ष, सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा समापन। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, देवी देवताओं की दिव्य झांकियों ने मंत्रमुग्ध किया, कलाकारों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले शानदार खबर आपको बता दें, जो है एशियन गेम्स से जुड़ी हुई, जहां पर भारत ने एक शानदार शुरुआत की है। एशियन गेम्स में भारत की जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स स्क्वॉश के सेमीफाइनल में हारने के बाद

खिलाड़ी मेडल्स की संख्या को बढ़ाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक सिर्फ कुल मिलाकर 26 मेडल्स जीत लिए हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 11 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं।

पितृपक्ष, ये वो समय है जो पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए है। 26 सितंबर यानी आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 10 अक्टूबर को होगा। मतलब ये कि भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलने वाले ये 16 दिन पितरों यानी कि पूर्वजों के लिए हैं। सनातन परंपरा में इस दौरान तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, पूर्वजों को याद किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: नदियों की कलकल बहती धारा, हाथ में कुशा, तिल और जल, होठों पर मंत्रों का जाप। ये दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही उस अटूट डोर का है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, पितृदेवो भव, यानी जिनका रक्त हमारी रगों में दौड़ रहा है उनका स्थान ईश्वर से भी पहले है। मतलब ये कि जिसने जन्म दिया, जिंदगी दी, ये समय उनको याद करने का है, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का है। यही सनातन परंपरा है, यही धार्मिक विधान है।
1: जिनके पिंडोदक क्रिया इत्यादि नहीं होती है वह पितर पतित हो जाते हैं, उनका पुण्य नहीं उदयता, वह प्रेत बन के घूमते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़ के जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। यह पितरों का पक्ष ही है, यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितृ जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है।
0: भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये 16 दिन सनातन धर्म में कृतज्ञता यानी धन्यवाद ज्ञापन का सबसे बड़ा पर्व कहे जाते हैं। इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने की मान्यता है। इसीलिए प्रयागराज से लेकर वाराणसी और गया से लेकर बद्रीनाथ तक अपने पितरों का श्राद्ध करने लोग पहुंचे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है जो आश्विन अमावस्या तक यानी 16 दिनों तक चलेगी। श्रद्धया इदम श्राद्धम यानी पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए जो कुछ श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और संपन्नता का आगमन होता है। श्रीमद् भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार इन 16 दिनों में पितरों को सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आने की छूट मिलती है। वो अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, उनकी श्रद्धा से तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं।
1: पिशाचमोचन में पूरे भारतवर्ष में पिशाचमोचन जिनको विमल तीर्थ कहा जाता है वहाँ श्राद्ध करने का बहुत महत्व है और किन्हीं किन्हीं बाधाओं के कारण ही हमारे परिवार के सारे कार्य रुकते हैं। तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन करावे।

0: गऊ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे, और सायंकाल के समय एक पोटली अपने दरवाजे पर बांधकर एक कैन में रख दे, एक दीपक जला दे, एक पात्र में जल रख के पितरों से प्रार्थना कर, हे पितृदेव, इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो, तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
1: महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करता है उसके कुल में कभी अकाल कष्ट नहीं आता। जल का एक आचमन भी पितरों को तृप्त कर देता है, लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ और अनुष्ठान का मौका नहीं बल्कि ये याद दिलाने का जरिया है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारा अस्तित्व सब उन्हीं पूर्वजों की देन है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं को प्रसन्न करने से पहले पितरों को तृप्त करना आवश्यक है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में शांति और समृद्धि की कल्पना अधूरी है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, पितृ तृप्त होते हैं तो संपूर्ण देवकुल तृप्त हो जाता है। ये 16 दिन केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा का आत्मा से संवाद है। जब हम अपने हाथ जोड़कर जल अर्पण करते हैं तो वो केवल पानी की धारा नहीं, हमारी भावनाएं होती हैं जो अदृश्य रूप में मौजूद हमारे पूर्वजों तक पहुंचती हैं। देह भले ही छूट जाए लेकिन प्रेम और रिश्तों का धागा कभी नहीं टूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर पूर्वजों को उचित सम्मान और श्रद्धा ना मिले तो वो नाराज हो जाते हैं, और इसलिए इस समय किए गए काम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन मान्यता है कि सही विधि और सच्चे भाव से किया गया श्राद्ध ही पितरों तक पहुंचता है और कुल को शांति का आशीर्वाद देता है। लेकिन श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है, ये कहाँ कहाँ किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
3: Oh.

0: जब पूर्वजों का हाथ हमारे सिर पर हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पितरों की प्रसन्नता से न केवल जीवन के संकट टलते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सवर जाता है। पितरों की कृपा हो तो रुका हुआ हर काम बन जाता है। पितरों का आशीर्वाद मिले तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म में माना गया है कि ईश्वर की आराधना से भी पहले पूर्वजों का स्मरण आवश्यक है, क्योंकि जिनके आशीर्वाद की छांव हमारे सिर पर होती है उनके घर में कभी सुख शांति और समृद्धि की कमी नहीं होती। श्रद्धाया इदम श्राद्धम, यानी जो सच्चे भाव और श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। मत्स्य और विष्णु पुराण के अनुसार पितृपक्ष में श्रद्धा से दिया गया जल का एक आचमन भी पितरों को तृप्त कर देता है।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में 272वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में कहा गया है, पितरी प्रीति मापन्ने सर्वाह प्रीणंति देवताः। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 50 के दूसरे श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरः प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सर्व देवता। हमारी जब पितरों की ओर प्रीति होगी तो देवता प्रसन्न होंगे। हम कितनों देवताओं की पूजा कर लें, अगर पितृ हमारे प्रसन्न नहीं हैं तो हमें पितरों कृपा प्राप्त नहीं होती। और जब तक पितरों कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: शास्त्रों में श्राद्ध के लिए पवित्र तीर्थों का विशेष महत्व बताया गया है। बिहार का गया जी, उत्तर प्रदेश का काशी और प्रयागराज और उत्तराखंड का हरिद्वार श्राद्ध कर्म के लिए सबसे उत्तम माने गए हैं। हालांकि सभी के लिए प्रयागराज वाराणसी या गया जाकर श्राद्ध करना संभव नहीं होता, ऐसे में वो अपने घर के ईशान कोण में या किसी पवित्र नदी के तट पर भी पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है, तर्पण पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। सबसे पहले पितरों का ध्यान कर तर्पण किया जाता है, फिर कुशा पर जौ और काले तिल से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद गाय कौए चींटी और देवों के लिए पंच बलि भोग निकाला जाता है। अंत में ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को आदर पूर्वक भोजन कराकर दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन श्राद्ध कर्म करते समय कुछ नियमों का पालन अति आवश्यक है, जैसे श्राद्ध का समय हमेशा दोपहर का यानी कुतुब मुहूर्त होना चाहिए। भोजन में चना मसूर लहसुन प्याज और बासी अन्न का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा श्राद्ध के दिनों में नए कपड़े खरीदना, मांगलिक कार्य करना और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना मना होता है। सबसे अहम बात, श्राद्ध करते समय मन में क्रोध या अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और नम्रता होनी चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों के अलावा घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने और जरूरी चीजों का दान करने का विधान है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाता है। ये सब इस धार्मिक विश्वास का हिस्सा है कि जो भोजन और वस्तुएं दान दी जाती हैं, वो दूसरे लोक में मौजूद पूर्वजों को मिलती हैं। इसी तरह मान्यता है कि जल से तर्पण करने से दूसरे लोक में निवास करने वाले पूर्वज तृप्त होते हैं।
1: 1 बजे के बाद वाला जो समय है उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे। गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे। और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे और ब्राह्मण भोजन कभी लोहे के थाल में न करावे। चांदी का पात्र हो और पात्र हो, लेकिन लोहे के पात्र में ब्राह्मणों को भोजन कराने का निषेध बताया गया है। और तर्पण के समय अपने हाथों में एक सोने की मुद्रिका पहनने से अगर कुशा नहीं भी है तब भी आप तर्पण कर सकते हैं। यह सब विचार अवश्य करना चाहिए।
0: हिंदू धर्म में मान्यता है कि वंशजों के रक्त में पितरों के अंश हैं, इसलिए सभी अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। इसी ऋण को उतारने के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है। इस दौरान श्राद्ध तर्पण या पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, तर्पण और श्राद्ध करने वालों को पितृ ऋण से मुक्ति भी मिल जाती है। मान्यता है कि यदि पितृ दोष हो तो व्यक्ति के जीवन में अनेक कष्ट और बाधाएं आती हैं। तर्पण से ये दोष शांत होता है। तर्पण करने से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। तर्पण से वंशजों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। विधि विधान से किया गया श्राद्ध न केवल पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति देता है बल्कि पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पितृपक्ष में पिंडदान के लिए लोग कई जगहों पर जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बिहार में गया जी का है। हालांकि प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बिहार में गया जी का है। ऐसा क्यों, जानने के लिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट।

0: ये गया है, जहाँ पितृपक्ष में पिंडदान के लिए हजारों की तादाद में लोग हर साल आते हैं। भारत के हर हिस्से से आते हैं और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग गया आकर अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में बहुत सारी जगह हैं, पर फल्गु नदी के किनारे मौजूद गया विशेष है, क्योंकि मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तभी तो गया को मोक्ष की स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में विराजते हैं। गया में पिंडदान का महत्व आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। गया में देवघाट की इन दीवारों पर ये शानदार तस्वीरें उकेरी गई हैं। इन तस्वीरों में पिंडदान की परंपरा से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित तस्वीरें शामिल हैं। मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत शैली में बनाई गई ये तस्वीरें, दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं का एहसास कराने की एक कोशिश है।
1: डीएम सर के द्वारा यह पेंट द सिटी कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत फेज वन में 5 लोगों का चयन किया गया था, जिन्होंने अपने चित्रों और कलाकृतियों से इन दीवारों को सजाया है। आगे और भी कई स्थानों में यह चित्र, सुंदर सुंदर चित्र उकेरे जाएंगे।
0: अब आपको बताते हैं कि फल्गु नदी के किनारे मौजूद गया आखिर क्यों पिंडदान के लिए इतना अहम माना जाता है। दरअसल मान्यता यह है कि गया में पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और इसके बाद पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि फल्गु नदी के तट पर ही भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया था। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने भी इसी जगह पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया का महत्व बताया गया है। इसीलिए हर साल पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है और इसके लिए पितृपक्ष का मेला लगता है। गया की कहानी गयासुर नाम के एक असुर से जुड़ी हुई है, जिसे ब्रह्मा से पवित्र शरीर का वरदान मिला था। उसके दर्शन से ही लोग पाप मुक्त होने लगे, लेकिन जब इस वरदान का गलत इस्तेमाल होने लगा तो भगवान विष्णु ने यज्ञ के लिए उसका पवित्र शरीर मांगा। 5 कोस में फैले उसके शरीर पर ही यज्ञ हुआ और वो जगह तीर्थ बन गई। मान्यता यह है कि गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर यानी कि गया की पवित्र जमीन पर ब्रह्मा और शिव भी निवास करते हैं। इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए इस जगह को उत्तम माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में एक बार गया जी जाकर पिंडदान करने से मनुष्य पितृ ऋण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और उसके पूरे कुल का कल्याण होता है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है, किस ग्रह की वजह से कान नाक और गले की तकलीफ होती है, और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं, 9 ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
7: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल,

0: राइफल तीन पोजीशन में जीता रजत, मिक्स डबल स्क्वॉश में भी ब्रॉन्ज मेडल। मुंबई में आज लालबाग चौराहे की विदाई, गिरगांव चौपाटी पहुंची शोभा यात्रा, मन्नतों की राजा की विदाई यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बापा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बटाया हाथ। गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था का सैलाब, उमड़ा 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा, राजकोट का अनोखा दल गरबा और तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू हुई, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद।
1: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क बीएलडीसी फैंस।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 सितंबर 2026, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है तो आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत तो हो चुका है उन्हें हम सामान्यतः पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा मन के साथ जुड़ करके सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है और पितृपक्ष के 15 दिनों में जो आपके पितृ हैं वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके सम्मान में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा, तो पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक यानी पितृ विसर्जन अमावस्या तक रहेगा। मेष राशि, इस समय आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, पैसा लगाने में, धन के निवेश में सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितृपक्ष बड़ा पवित्र समय है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, तो पितृपक्ष में कौन से काम किए जाएं, कौन से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय जिसको कुतप वेला कहते हैं, लगभग मध्य दोपहर के समय में ये जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास है कुश, इसको रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और पूर्वज के देहांत वाली तिथि पर किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। तो जब आप अपने पितृ के देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, किसी निर्धन को भोजन करा लेते हैं, तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जिसको तर्पण करना कहते हैं, और जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि पर, उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, वो रोज तर्पण पितृपक्ष में रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पुत्र, भतीजा, ये भी तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र या नाती यानी पुत्री का पुत्र, इसको भी तर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। आजकल के समय में, वर्तमान में, स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, अगर दूर दूर तक घर में कोई पुरुष नहीं है तो। तर्पण जो भी करे, नियमानुसार करे, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप तर्पण कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने पितरों को जल दे रहे हैं, तो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना चाहिए। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय है, लेकिन पितृपक्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपना जीवन जीने में, अपने रूटीन का पालन करने में। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करिए और अपने पितरों को याद करिए, उनके नाम से संध्या में दीपक जलाइए और दिन के समय में तर्पण करिएगा। कुतप वेला, मध्य दोपहर का जो समय है, इस समय में पितरों को जल दीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है, और जब आप तर्पण करेंगे तो जल में काला तिल मिला लेंगे, हाथ में कुश ले लेंगे, और इसके बाद जब आप जल देंगे, जब आप तर्पण करेंगे, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। जो कोई व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, पितरों के लिए दान कर रहा है, दीपक जला रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिएगा। जहां तक हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और अगर आप पितरों को फूल चढ़ाते हैं या जल में फूल डालकर उनको अर्पित करते हैं तो वो हल्की सुगंध वाले होने चाहिए, तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। और पितरों का श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है, तर्पण करना है, तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। सारी भगवत गीता का पाठ ना भी कर पाए तो 11वें अध्याय का नियमित पाठ करिएगा। कर्ज लेकर या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर प्रेशर में, कष्ट में श्राद्ध करने का लाभ नहीं होता। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, निगेटिव समय होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष कोई नकारात्मक समय या कोई निगेटिव समय नहीं होता। पितृपक्ष में पवित्रता से रहने से, दान करने से, धर्म का पालन करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, बिल्कुल सामर्थ्य ना हो कि पितरों के नाम से दान करें, श्राद्ध करें, लोगों को अन्न वस्त्र वगैरह दें। आप खुद ही बहुत गरीब हों तो श्राद्ध कैसे करेंगे? श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। दोपहर के समय में पितरों को जल दीजिएगा और इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाइएगा और पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा, श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है? किस ग्रह की वजह से कान, नाक और गले की तकलीफ होती है? और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं? नौ ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: भक्तों के संकट को भी बजरंगबली काटते हैं, ये तो भगवान देखो एक ऐसे समझो, पूछो कैसे। हम लोगों पर विपत्ति आती है तो किसको पुकारते हैं? भगवान को। बोलो हाँ या ना, बोलो। हम लोगों पर विपत्ति आती किसको पुकारते? भगवान को। लेकिन भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते हैं। ये हनुमान जी हैं। भगवान पर भी विपत्ति आती कब? जब लंका में लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, मेघनाद ने शक्ति का पात कर दिया और लक्ष्मण जी जब गिर पड़े तो मेघनाद उठाकर ले जाने लगा। तब अनंत बलवंत वीर बजरंग बली श्री अंजना नंदन हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक का प्रहार करके मेघनाद को धकेल दिया और लक्ष्मण जी को उठाकर के राम जी की गोद में डाल दिया। मेरे पागलो, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार है। कौन है? जीवाचार। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं। जीवाचार लक्ष्मण को महात्मा रूपी हनुमान ने परमात्मा की गोद में डाल दिया। परमात्मा कौन? राम। राम जी की गोद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को डाला। अब राम जी रो रहे। क्यों रो रहे? भाई को शक्ति लग गई। लक्ष्मण है लीला पर शक्ति लग गई, आंखों में अश्रु बहने लगे।

0: कुछ बोल, आंखों से आंसू बह रहे, कुछ बोल लक्ष्मण, आंख खोलो। लेकिन जब लक्ष्मण जी बहुत देर तक बोले नहीं तो राम जी के अश्रु के बिंदु गिरने लगे। अश्रु के बिंदुओं को गिरता देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले, बाबा प्रभु आपको रोता हुआ देखकर हमसे नहीं रहा जा रहा, आप कहो तो हम मौत को मार दें, मृत्यु को ही मार दें। राम जी बोले, उससे क्या होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु यदि हम मौत को मार देंगे तो लक्ष्मण जी नहीं मरेंगे। राम जी बोले, तुम मौत को मार दोगे तो लक्ष्मण जी तो नहीं मरेंगे पर रावण भी तो नहीं मरेगा। जब मौत ही मर जाएगी तो रावण काहे को मरेगा। मौत को मत मारो, कोई उपाय खोजो। विभीषण ने कहा, एक वैद रहता है लंका में, उसका नाम सुसेन वैद है, यदि वो आ जाए तो वो दवा बता सकता, बहुत पहुंचा हुआ वैद है। अब लंका में वैद रहता, जाए कौन। हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, आप टेंशन ना लो, पूरा गूगल मैप पता है। फर्स्ट टाइम आए थे तो घर घर गए थे एंट्री देखने के लिए, तो कौन मकान कौन से कैसा है, हम जा रहे हैं। राम जी बोले, पर जा तो रहे हो पर वैद एक ही है। बोले एक ही है। विभीषण बोले एक ही है। राम जी बोले एक ही वैद है तो पक्का रावण ने वहां पे पहरेदार लगा दिए होंगे। हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, उन सबसे निपट लेंगे। बोले क्यों। हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, हमें जानते हैं, हमने उलट पलट लंका सब जारी, आग लगाने हमने पहले श्री गणेश में ही ऐसा माहौल बना दिया कि अब वो बंदरों के नाम से डरते। बात सही है। क्या गजब का माहौल बजरंग बली ने मनाया लंका में, कि जब हनुमान जी गए वापस आ गए तो दूसरी बार अंगद जी गए, अंगद जी गए तो लंका में हल्ला मचा। बोले क्या। बोले वही बंदर आ गया। लंका वाले कौन। बोले जो पहले आया था। तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अंगद जी का ऐसा स्वागत, अंगद जी को ऐसे लगे जैसे अपने राज्य में आ गए। तो अंगद जी बोले, भैया हाथ क्यों जोड़े हो। सब राक्षस कह रहे। बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा, 10 मूड़ वाला उसे समझाओ। तो अंगद जी जब वापस आए तो राम जी ने पूछा, क्यों लंका का माहौल क्या था। अंगद जी बोले, प्रभु हनुमान जी ऐसा माहौल बनाया है कि और बंदरों को भी वो हनुमान जी ही समझते हैं। तो हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, लंका का माहौल अपन सेट की, हम जा रहे। हनुमान जी गए सुसेन नामक वैद्य के पास, पहरेदार लगे थे, जैसे ही हनुमान जी को देखा सब बोले लगे ना, महाराज जो करना हो सो करो, हम जे चले, आंख बंद किए। हाँ, वो होता ना हमारे गांव में कहावत है, घर का परसने वाला हो ना तो 2 रसगुल्ला एक्स्ट्रा धर देता। तो सब हनुमान जी को जानते ही थे, तो किसी ने कहा कि हनुमान जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे। बोले विरोध का तेरी भी खबवानी है क्या, इनसे विरोध करने का मतलब है सीधा जाना। और हनुमान जी की एक आदत अच्छी है, क्या, जब भी मन करता कीर्तन करते, और लंका में कीर्तन करते तो मंजीरा चाहिए, और मंजीरा मिलते नहीं तो 2 राक्षस को ही बजाने लगते। तो हनुमान जी की किसी चीज से आदमी डरे ना डरे, लंका वाले 2 चीजों से डरते थे, कीर्तन से और पूंछ से। इनकी पूंछ और खतरनाक, पूंछ के एरिया में कोई नहीं फंसता था। अच्छा, एरिया फिक्स हो पूंछ का तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो तो घट भी जाए और बढ़ भी जाए। तो जैसे ही हनुमान जी सुसेन वैद के पास पहुंचे, जितने राक्षस सिक्योरिटी में लगे थे सब समझ गए कहीं कीर्तन ना कर दे, सो एक तरफ हो गए। बोले महाराज जो करना हो सो कर लो। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। क्या हनुमान जी ने सोचा, यदि मान लो हमने वैद को उठाया ले गए तो ये घर जाके कहेगा सामग्री यहीं रह गई, दवाई यहीं रह गई, बीपी मशीन वहीं रह गई, अगर गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने कहा डिस्पेंसरी उठा लो, पूरा अस्पताल ही उठा लिया, और कौन जगह पे पूरा मकान। अच्छा, हनुमान जी कोई भी काम करते हैं फुटकर नहीं करते, थोक ही में करते। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पहाड़ ही लेके आए। इनसे कहा कि जानकी माता का पता लगा आओ, लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि वैद को ले आओ, ये पूरा अस्पताल ही उठा के चले आए। और जैसे ही लेकर के आए, सुसेन नामक वैद आया, दरवाजा खटखटाया तो सुसेन वैद को लगा कि हमारे दरवाजे पे इतने लोग आए, क्योंकि वो तो सो रहा था। जगाया, राम जी का परिचय बताया। हनुमान जी बोले, इनको दिक्कत हो गई, लक्ष्मण जी को जरा चेक करो। सुसेन वैद बोला, एक दिक्कत, एक उपाय है। क्या। बोले कोई बूटी ले आए तो बच सकते हैं, नहीं तो। और बोले सुनो, सूर्योदय के पहले बूटी आ जाए। अब राम जी चिंता में, जामवंत जी चिंता में, विभीषण जी चिंता में, सब सेना चिंता में, कि उपाय तो बता दिया कि बूटी लाओ पर शर्त रख दी, सुबह सूर्योदय के पहले। अब जाए कौन। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु हम जाएंगे।
1: आप पे संकट है, हमारा नाम संकट मोचन है, बोलो हनुमान जी महाराज। तो राम जी बोले तुम जाओगे तो पर शर्त है। हनुमान जी बोले क्या? बोले सूर्योदय के पहले आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान की टेंशन ना लो, वो हमें बचपन से ही जानते
0: उनकी चिंता नहीं है हमें। बोले क्यों? बोले ब्रेकफास्ट में हम अर्ली मॉर्निंग ले गए थे उनको तो पहले तो ब्रेकफास्ट में अब डिनर में ले लेंगे जय बजरंग बली की। बोले उनकी टेंशन ना लो, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, हम समझा देंगे कि थोड़ा देर से आना। एक तो उसके पहले हम आ ही जाएंगे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी उसके पहले कैसे आ सकते? तो जामवंत जी ने कहा आ सकते कैसे?

बोले ये जा सकते हैं। जामवंत जी बोले जा सकते हैं। बोले कैसे? बोले भैया ये अंजन पुत्र है, अंजनी पवन सुत नामा है, ये पवन सुत है तो पवन की तरह गति से चलने वाले, इनकी प्रगति का क्या कहना। इसीलिए हनुमान जी महाराज पवन से तेज चलने वाले, पवन की तरह चलने वाले हैं, यही जाकर के ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। तो संकट कटे मिटे सब। अब यहां राम जी ने कहा, जब बूटी लेकर के आए संजीवनी बूटी, अच्छा आप देखो संजीवनी बूटी लेने गए तो एक और दिक्कत हुई। पूछो क्या, जोर से पूछो। देखो हनुमान जी कितने संकट मोचन है। जैसे ही संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए तो जो पहरेदार लगे थे वैद के बाहर, उनने रावण को खबर दी कि जो बंदर फर्स्ट टाइम आया था वही सेकेंड टाइम आया। रावण बोला किस लिए? वो तो युद्ध में आया। अरे बोले युद्ध में नहीं, अलग से फिर से लंका आया। किस लिए? बोले वैद को ले गया, किडनैप हो गया वैद। रावण बोले अच्छा। हाँ रावण बोले हम समझ गए, जो शक्ति लगी है वो संजीवनी पता कर लिया होगा। बोले हाँ पता कर लिया कि थोड़ी देर में भाई साहब टेक ऑफ करने वाले। बोले कहां के लिए? बोले बूटी लाने के लिए जाने वाले हैं थोड़ी देर में, ये खबर है। तो सबके राजाओं के गुप्तचर होते थे तो रावण के भी गुप्तचर थे। बोले थोड़ी देर में जाने वाले। रावण बोला टेंशन ना लो हम। बोले शर्त क्या है? बोले सूर्योदय के पहले आने की शर्त है। रावण बोला चिंता ना करो, एक पता करो इस बंदर की कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या? सबकी एक ना एक कमजोरी होती है। इस बानर की क्या कमजोरी है? गुप्तचर बोले एक भी कमजोरी नहीं है, मजबूती मजबूती है। हाँ, एक गुप्तचर बोला इसलिए इनका नाम बजरंग बली है। रावण बोला क्या नाम है? बजरंग बली। बोले इसका मतलब क्या? बोले जिसकी देह वज्र की तरह हो, वज्र अंग, इसलिए इनको बजरंग कहते। रावण बोला अच्छा। हाँ रावण बोले और कोई उपाय इस बंदर को फंसाने का? तो बोले क्या? जाल के लिए वैसा वाला बंदर है, खतरनाक है खतरनाक। रावण बोला कोई तो उपाय होगा। एक सेवक बोला हम बहुत दिन वहां रहे, इसकी एक कमी है और हनुमान जी की एक कमजोरी है, पूछो क्या।

भैया राम अब कथा सुन लो नहीं तो कथा छूट जाए। यदि हमने भजन सुनाया तो कथा छूट जाएगी, और कथा सुनाएंगे तो भजन छूट जाएगा, भजन तो बाद में हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, राजस्थान वाले बहुत फास्ट है। तो रावण ने कहा कमजोरी क्या, हनुमान जी की कमजोरी क्या है।

राम जी का कीर्तन है, वहां वहां हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की कमजोरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब रावण ने हनुमान जी को फंसाने का उपाय किया। काल नेमी के पास पहुंच गए। किसके पास भैया? काल नेमी। हाँ बोलो। एक काम करना है। क्या? तुम्हें कथावाचक बनना। काल नेमी बोला, हमने कथा ही नहीं सुनी, वाचक क्या हलवा में बनेंगे? हमने कथा ही नहीं सुनी है। तो रावण बोला, वो तो बनना पड़ेगा। काल नेमी बोला, और चाहे जो बना लो, पर कथावाचक मत बनाओ, हमने कथा आती ही नहीं सुनाएंगे। रावण बोला, सुनाना क्या, यही लंका की सुना देना। मान लो किसी ने पकड़ लिया तो? अरे बोले, वो काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए। हाँ, काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए। तो काल नेमी बोला कि यदि हम ना कथावाचक बने तो? रावण बोला, फिर क्या, मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा, इसके हाथों से मरने से अच्छा है उनके हाथों से मरे। एक बात बताओ, सुनानी किसको कथा है? रावण बोला।

तुम्हारे जैसा बलवान उसे फंसा पाया? बोले नहीं फंसा पाए। तो काल ने भी बोला जब तुम फेल हो गए तो हम तो पहले ही फेल है। रावण बोला ज्यादा पटर पटर मत करो, हम फेल नहीं हुए, हमने कोशिश नहीं की। अहंकारी आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता, जो घमंडी होता वो बहुत खतरनाक होता, कभी भी अपनी गलती नहीं समझता। गलती भी पकड़ी जाए तब भी कह देता है रहने दो, देखा जाएगा। तो यही रावण बोला है हमने कोशिश नहीं की। कालनेमी बोला ठीक है हम कर रहे कोशिश। अब कालनेमी चला हनुमान जी को फंसाने, अब देखना कैसे हनुमान जी संकट मोचन। कालनेमी बैठा बीच में माया का आश्रम बना करके ब्याज गद्दी लगाकर, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी उड़ते हुए पवन की तरह वेग से चलने वाले पवन पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी चले जा रहे थे। हनुमान जी की नजर नीचे पड़ी, नीचे कालनेमी बैठा था। हनुमान जी ने सोचा ध्यान

घड़ी नहीं, आधी घड़ी ही सही, आधी में से भी आधी। भगवान की कथा सुन ले, करोड़ों अपराधों को काट देती। हनुमान जी उतर गए नीचे, काल ने भी बैठा और जैसे ही हनुमान जी को देखा सो पहचान गए यही वो बंदर है। तो जो कथा आती थी वो और भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो हमसे बड़े वाले आ जाते ना, बड़े कथावाचक, उनको देखकर हम भी भूल जाते। तो ये कथा पढ़ के हमें लगा कालनेमी पे क्या बीती होगी। अब कालनेमी पे जो बीती, अरे पूछो ना, कालनेमी कथा क्या सुना रहा, ना बालकांड ना अयोध्या, ना अरण्य कांड ना सुंदर, सीधा लंका कांड। ना रावण का जन्म ना राम जी का, सीधा लड़ाई बता रहा। बोले रावण को राम जी मार रहे और रावण भी लड़ रहा। हनुमान जी ने सोचा पहले से ही कथा चल रही होगी इसलिए यहां तक पहुंच गई। भाई होता ना कि भाई आगे निकल गई, हम थोड़ा लेट आए होंगे, तो हनुमान जी बैठ गए, अब कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास लगी। बताइए हनुमान जी को प्यास, अरे हनुमान जी के लिए तो लिखा राम

0: पर जिनके पास राम रसायन है उनको प्यास। यदि कोई भक्त भगवान की कथा गाएगा तो लगी हुई प्यास हनुमान जी की बुझ जाती है, पर कोई काल नेमी गाता है तो प्यास हनुमान जी को लग जाती है। इसलिए हनुमान जी को प्यास लगी। अब हनुमान जी को प्यास लगी तो बोले गुरुजी क्षमा करो हमें प्यास लगी। काल नेमी बोला कोई बात नहीं, एक काम करो हमारा कमंडल ले लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। तो काल नेमी बोला चेला बन जा।
1: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है? किस ग्रह की वजह से कान नाक और गले की तकलीफ होती है? और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं? नौ ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुडलक स्पेशल में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और

0: सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: जापान में चल रहे एशियन गेम्स से खुशखबरी सामने आई है। भारत के लिए शानदार खबर सामने आ रही है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने महिला कबड्डी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और ईरान को 37-34 से हरा दिया। आपको बता दें, भारतीय टीम ने इससे पहले हांगजू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भारत और ईरान के बीच तीसरी बार एशियाड में फाइनल मैच खेला गया, जिसमें से ये दो बार भारतीय टीम जीत दर्ज करने में सफल रही है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और अजय रहते हुए स्वर्ण का बचाव करने में सफल रहे। आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 27 मेडल्स जीत लिए हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं, 11 सिल्वर मेडल्स हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स भी शामिल हैं। और अब महिला कबड्डी टीम ने भारत का नाम रोशन किया है एशियन गेम्स में, जो जापान में चल रहा है, और एक और गोल्ड भारत के खाते में आ चुका है। एशियन गेम्स से ये शानदार खबर, ये गुड न्यूज सामने आई है। महिलाओं ने एक बार फिर से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, भारत का नाम रोशन किया है एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
0: एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड समेत 27 मेडल। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद। मुंबई में आज नम आंखों से लाल बाग चौराहा को दी गई विदाई, गिरगांव चौपाटी पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ अगले बरस फिर आने की प्रार्थना। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन, अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बताया हाथ। तुकुड़ी में पुरातासी के दूसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक आयुष अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किए।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अभी आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात एक ऐसे कैफे की करेंगे जो आपको स्कूल के बीते दिनों की याद करवा देगा। यहां पर ग्राहकों की फीडबैक के लिए नोटिस बोर्ड है, क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र के अंदाज में फूड मेन्यू है, टेबल नंबर की जगह रोल नंबर बताने पर ही ऑर्डर सर्व किया जाता है, और इस अनोखे कैफे में पैर रखते ही क्लासरूम, अटेंडेंस शीट, मार्कशीट और बहुत कुछ पलक झपकते याद आने लगता है। खाने पीने की चीजों के नाम भी ऐसे हैं कि उनके पढ़ते ही स्कूल में बताए गए दिन याद आ जाएं। देखिए ये रिपोर्ट।

0: जिंदगी की भागदौड़ और उम्मीदों के बोझ के बीच अक्सर हमें अपने स्कूली दिनों की याद आ ही जाती है। जीवन के उस खूबसूरत दौर में जहां ना कोई डर था ना ही कोई चिंता, आने वाले कल को लेकर जब बेफिक्री थी और आंखों में बेहिसाब सपने थे। खैर, गुजरा जमाना तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैफे जरूर है जो शर्तिया आपको अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाएगा। नोएडा का यह अनोखा कैफे आपको स्कूल के दिनों की यादों को जीने का मौका दोबारा देगा, जिससे जुड़ी स्मृतियां आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में एक मीठा एहसास कराएगी। खाने पीने के आइटम से पहले कैफे की थीम और कॉन्सेप्ट ग्राहकों को प्रभावित करती है। यहाँ पैर रखते ही क्लासरूम, रोल नंबर, अटेंडेंस शीट, मार्कशीट और बहुत कुछ पलक झपकते याद आने लगते हैं। बचपन भले ही लौट कर न आए, लेकिन उससे जुड़ी यादें चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर लाती है।
1: जब हम स्कूल में होते हैं तो कितनी जल्दी में होते हैं ना, कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, कितनी जल्दी ढेर सारे पैसे कमाएं, कितनी जल्दी अपने डिसीजन हम खुद ले लें। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन स्कूल हमसे बाहर कभी आ ही नहीं पाया। वो स्कूल हमेशा हमारे भीतर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं जहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ना सिर्फ आपको अपना स्कूल याद आएगा, बल्कि अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर, अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी मार्कशीट, सब कुछ याद आने वाली है। हम मौजूद हैं नोएडा में और इस जगह का नाम है अटेंडेंस शीट कैफे।
0: कैफे में लटकी स्कूल की घंटी ग्राहकों के लिए टाइम कीपर की तरह काम करती है। समय के बदलाव, अनुशासन और बचपन की अनमोल यादों की याद दिलाने के साथ ये घंटी पीरियड की शुरुआत या अंत होने का भी प्रतीकात्मक संकेत देती है। हालांकि कैफे में लगी घंटी बजने के बाद वहां लगे ब्लैक बोर्ड पर आपको ग्राहकों को अपना रोल नंबर, नाम और फेवरेट स्नैक के बारे में लिखना होता है।
1: तो स्कूल की घंटी बज चुकी है, पीरियड्स आपके शुरू हो चुके हैं, तो आइए अंदर। और सबसे पहले क्या करना है स्कूल में आने के बाद, कि आप अपना नाम लिखेंगे और याद करेंगे कि आपका स्कूल में रोल नंबर क्या हुआ करता था, उसे याद करिए और फिर उसे यहाँ पर आप डालते जाइए। देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपने नाम लिखे हैं, अपने रोल नंबर लिखे हैं और क्या उनको पसंद है स्नैक में, वो भी यहाँ पर लोगों ने लिखा है।
0: इसके अलावा कैफे की दीवारें आपको पीरियड के दौरान टीचर्स की तरफ से बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ आम वाक्यों की भी याद दिला देंगी। कैफे में कन्फेशन बोर्ड भी मौजूद है, जिस पर स्कूल के दिनों में छिपे हुए विचार, भावनाएं, गलतियां या अपना कोई राज बताने की छूट है। साइंस लैब तो स्कूल के दिनों में किए गए प्रोजेक्ट्स की याद दिलाने की गारंटी की तरह है।
1: कुछ चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें आपके जहन में हमेशा रजिस्टर होती हैं, जैसे कि स्कूल टाइम्स के ये डायलॉग्स, मैं आई कम इन सर, किसने फेंका ये कागज, हु थ्रू दिस पेपर, स्टैंड अप ऑन द बेंच जब सजा मिलती थी, साइलेंस इन द क्लास जब टीचर गुस्सा होते थे, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये अगर स्कूल की हम बात करें और ब्लैक बोर्ड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपको एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा जिस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि आपने, बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड है और साथ साथ एक कन्फेशन बोर्ड भी है, मतलब आपको यहाँ पर वो कन्फेस करना है जो कभी आपने अपने क्लासरूम में किया हो, स्कूल में किया हो। उसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया है, उन्होंने अपनी रियल स्कूल डेज की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई हुई हैं। अभी तो ये फोटोज़ ऐसे टंगी हुई हैं, लेकिन अपने घरों में हमने अपने स्कूल डेज की फ़ोटो को फ्रेम करके रखा है।
0: आज के भागदौड़ में जब हम थक जाते हैं तो हमारा मन सुरक्षित और सुकून भरे कोने को खोजता है, तब बचपन की यादों से जुड़ा ये कैफे एक सहारा बन सकता है।
2: जो ये आप टाई बेल्ट देख रहे हैं, हमारे स्कूल टाइम पे इसी तरीके की टाई बेल्ट होते थे, तो वही हमने कोशिश करा है यहाँ पे प्लेस करने के लिए। ये पूरी वॉल जो है, ये स्कूल की एक्सेसरी वॉल्स है, वॉल है जो हमारे स्कूल में वाटर बॉटल हम यूज करते थे वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। आप देख रहे हैं टिफिन बॉक्स हो गया, टाई बेल्ट्स और पेंसिल बॉक्स, ये सब आपको याद दिलाते हैं आपके स्कूल टाइम के जो एक्सेसरीज होते थे उन सब चीजों।
0: इस कैफे की सबसे खास चीज है इसका मेन्यू कार्ड। यहाँ मेन्यू किसी रेस्टोरेंट के कार्ड की तरह नहीं, बल्कि क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र की तरह डिजाइन किया गया है। ग्राहक को इसी मार्कशीट में अपनी पसंद की डिश पर टिक लगाना होता है और फिर इसे स्टाफ को दे देना होता है, और खाने के नाम भी पूरे स्कूल वाले अंदाज में रखे गए हैं। मेन्यू में शामिल खाने की चीजों का नाम भी स्कूल के दिनों से जुड़ी है।
2: ये आपके जो उस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें टीचर लिखती थी, ये वो है। तो पूरा मेन्यू भी हमने उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, हमने डिजाइन किया है।
1: केमिस्ट्री लैब मॉकटेल्स, क्या नाम रखे हैं आपने?
2: मॉकटेल्स केमिस्ट्री में, क्योंकि आप देखते हो काफी सॉल्यूशन लिक्विड्स मिलते हैं, तो उसे हमने मॉकटेल को केमिस्ट्री लैब से जोड़ा है।
1: और गॉसिप पीरियड मोमोज,
2: जी बिल्कुल। तो ये सारा मेन्यू उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अपने स्कूल डेज की याद आ सके।
0: कैफे में विजिट करने वाले ग्राहकों के लिए खाने की गुणवत्ता, सर्विस और माहौल जानने के लिए नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जहां वो अपनी राय बिना लाग लपेट के चिपका देते हैं, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की शिकायत होने पर उसे तुरंत दूर करने के लिए कदम उठाया जा सके। साफ है कि नोएडा का ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि बचपन और स्कूल से जुड़ी यादों को फिर से जीने का एक मौका देता है।
1: स्कूल छूट गया है, लेकिन एक बार आप यहाँ जरूर आइए, हो सकता है आपके स्कूल के छूटे हुए दोस्त शायद यहाँ मिल जाए, जैसे आशीष को मिले। ये वॉल आप देखिए कितने अच्छे से बनाई गई है, और इसमें लिखा हुआ है वो लास्ट बेंच, वो लास्ट बेल, वो लास्ट बाइट, सब कुछ। रोल नंबर बदल गया, दोस्ती नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ज़रूर आप उन दिनों में लौट जाएंगे जिन दिनों में आप बहुत छोटे थे, और शायद आप यही सोचते थे कि कितनी जल्दी हम स्कूल से निकल पाए, लेकिन वो स्कूल हमसे कभी निकल नहीं पाया। अगर आप फिर से उन्हीं स्कूल के दिनों को जीना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
3: और अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल ट्रेनिंग की। गुरुग्राम में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर युवा न सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं। बदलाव के दौर में तकनीक पर कमांड जरूरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट में जापानी तकनीक का खासतौर से इस्तेमाल किया जाता है।

0: ये तस्वीर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलाव को दिखा रही है, जहां मशीनों के साथ साथ उन्हें चलाने वाले भी स्मार्ट हो रहे हैं। तकनीक के इस दौर में इस इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो। इसी के चलते भारत और जापान के सहयोग और युवाओं को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में इस जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकों पर खास फोकस किया जा रहा है।
1: टेक्नोलॉजी जिस तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है, उसका असर पढ़ाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जो है वो देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तक जो है टेक्नोलॉजी अब नहीं रही है, सिर्फ मशीनों पर ही जो लोग हैं वो काम करते हुए जो है आपको नजर आए, बल्कि उसके अलावा AI का सबसे बड़ा रोल जो है अब देखा जा रहा है। उसके साथ ऑटोमेशन की बात करें हम, रोबोटिक्स की बात करें या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी के साथ जो दायरा है टेक्नोलॉजीज़ का, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में युवाओं को भी अब इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ जो है काम करने का जो है एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। क्लासरूम जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो बच्चों को देखने को मिल रहा है, और पेड इंटर्नशिप इनके लिए खासतौर पर रखी जाती है कि 7 मंथ्स की इनको पेड इंटर्नशिप दी जाती है, 5 मंथ्स के इनका जो है थ्योरी क्लासरूम स्टडी होती है, ताकि दोनों ही जो है बच्चे पढ़ सके समझ सके।
0: इस पहल का मकसद युवाओं को ऐसी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स देना है जिनकी जरूरत मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। यहाँ स्टूडेंट्स को मिनी व्हीकल असेंबली लाइन, इंजन असेंबली लाइन, वेल्डिंग और पेंटिंग सिमुलेटर्स, रोबोटिक इनेबल सिस्टम और बॉडी रिपेयर जैसी सुविधाओं के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
2: जिन बच्चों को आप स्किल कर रहे हैं वो फिर 10, 20, 30, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे ना ट्रेन करके आज और कल की टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करें। जो इक्विपमेंट आप यहाँ पर देखेंगे इस स्किलिंग इंस्टीट्यूट में, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप मारुति सुजुकी के कार मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पाएंगे। जैसे ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, रोबोटिक आर्म हो गई, CNC मशीन्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, ये पेंट शॉप बूथ है मॉडर्न, तो ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट पे।
0: ट्रेनिंग में जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स पर जोर दिया जाता है, साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाता है।
3: सबसे पहले हमें इसी चीज के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, और हमारी ड्रेसिंग कोड वगैरह, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारी वो डेवलप करी जाती है। मैम बोला जाए तो कम्प्लीटली फ़ायदा मिल रहा है। मैम जब हम OGT के लिए गए तो मैम वहाँ भी कोई चीज़ हमें नई अनजानी नहीं लगी, क्योंकि हमें पहले से ही 5S और 3S, 3R और 3K वगैरह सभी की चीज़ों के बारे में, जापानीज़ वर्ल्ड के बारे में सभी के बारे में बता दिया गया था। और जैसे मैम एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल वगैरह के बारे में हमें यहाँ पहले से एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाती है मैडम।
0: एक खास बात यह है कि अब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लड़कियां भी दिलचस्पी दिखा रही है, यही वजह है कि वो भी यहां पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग लेती नजर आ रही है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रही है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
4: सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
1: कितना अच्छा लग रहा है कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं जापानी टेक्नोलॉजी जो है वो सीख पा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की हो के और ये सब सब बहुत आसानी से सीख रही हूँ, और सब लोग सपोर्ट से मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है।
0: साफ है कि टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। गुरुग्राम के पटौदी से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात करते हैं शहादत की याद में पूर्व सैनिक के एक अभियान की, जिसका मकसद 26/11 के शहीदों के सम्मान में 26 पर्वत की चोटियों पर चढ़ाई करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। गाजियाबाद के रहने वाले पूर्व सैनिक दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ 11 दिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराया। मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हर शहीद की फोटो भी लगाई। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पर्वतारोहण अभियान के जरिए श्रद्धांजलि देना था।

0: आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण का मकसद नए और मुश्किल पर्वत शिखरों को फतह करना होता है। इस दौरान पर्वतारोही की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परख भी हो जाती है, साथ ही प्रकृति की सुंदरता देखने समझने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन पर्वतारोहण के पीछे भारतीय सेना में रहे इस पूर्व सैनिक का मकसद कुछ और है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर सैनिक का सर्वोपरि और बुनियादी कर्तव्य है। देश की रक्षा के संकल्प के दौरान कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, जिसकी कद्र करना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना यानी सर्वोच्च कुर्बानी की अहमियत एक सैनिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में पूर्व सैनिक और पर्वतारोही दीपक कुमार की तरफ से अलग अलग पर्वत के शिखरों तक पहुंचने का मकसद बेहद नेक है।
1: किसी शहीद के बलिदान के मायने एक सैनिक से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी। मिलवाते हैं आपको आज उसी सैनिक से।
0: 26/11 मुंबई हमला भारत के इतिहास का काला अध्याय है, जिसे देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता है। तब सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी। ऐसे शहीदों के प्रति मन में सम्मान की वजह से पर्वतारोही दीपक कुमार ने श्रद्धांजलि देने की अपनी भावना को खास अभियान से जोड़ दिया। सेना मेडल तक पा चुके दीपक कुमार 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, जहां तापमान -5 डिग्री से -20 डिग्री तक होता है, जहां हर कदम बढ़ाना पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर होता है, वहां दीपक कुमार अपनी टीम के साथ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा लहराते हैं। खास बात यह है कि शहादत के सम्मान से जुड़े इस अभियान के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख नहीं चुनी, बल्कि 11 दिनों में 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराने का फैसला किया।
2: मैंने सोचा एज आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो उसी के ब्याह पे हम जो है 11 दिन में 26 पीक क्लाइम करेंगे, जो सारी 6000 मीटर से अबव होंगी, और इसके जरिए जो शहीद हुए हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट करेंगे।
0: दीपक कुमार की टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें भारतीय सेना के 3 सर्विंग सोल्जर के अलावा 2 सिविलियन भी शामिल है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रॉन्च पर्वत से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई मशहूर पर्वत चोटियों पर शहीदों की फोटो लगाई और तिरंगा लहराया, वो भी अल्पाइन स्टाइल में, जो पर्वतारोहण की एक ऐसी शैली है जिसमें पर्वतारोही बिना किसी बाहरी मदद, भारी साजो सामान, फिक्स्ड रस्सियों और खाने पीने के चीजों के साथ तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं।
2: हमने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, और इसमें जो टीम थी हमारी 6 बंदों की टीम थी, और 6 बंदों की टीम थी। तो हमने जो ये मिशन था ये हमने स्टार्ट किया था कारजोक से। हमने फर्स्ट में ग्यामा रेंज को, मेंटोक रेंज को कंप्लीट किया था एक दिन में। उसके बाद दूसरा दिन हमारा था यालुंगनांग की तरफ हम गए। तीसरा फेज था हमारा ग्यामा मैसिफ की जो पीक्स हैं उसका था, और चौथा फेज था हमारा पोलोगोंका की जो रेंज थी, और पांचवें फेज में हमने खत्म किया था ये अपना थोकजे रेंज को।
0: दीपक के इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि 26/11 के शहीदों को पहाड़ों के जरिए श्रद्धांजलि देना है। हालांकि पर्वतारोहण का शौक उन्हें सेना में रहते लगा। 2006 में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद पर्वतारोही के तौर पर दीपक कुमार का सफर लगातार ऊंचाइयां छूता गया। 2013 से 2025 के बीच दीपक 65 चोटियों को फतह कर चुके हैं। इनमें नेपाल की 8,685 मीटर ऊंची माउंट मकालू से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियां तक शामिल हैं। 2019 में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के अभियान के तहत उन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पर्वतारोहण की दुनिया में दीपक कुमार ने सिर्फ चोटियां फतेह नहीं की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में कजाकिस्तान में 9 दिनों के भीतर 15 चोटियों को छू लिया था। इसके बाद दीपक ने साल 2021 में 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का आरोहण किया। दीपक रूस की 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटियों पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दीपक 3 बार जगह बना चुके हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दीपक की उपलब्धियां दर्ज है। -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफानों और खतरनाक ग्लेशियर पर लगातार चढ़ाई के पीछे एक और मकसद है, त्याग, बलिदान और शहादत के सम्मान के जरिए पूर्व सैनिक दीपक कुमार आने वाली पीढ़ियों और युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है? किस ग्रह की वजह से कान, नाक और गले की तकलीफ होती है? और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं? 9 ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

सास बहु और बेटियां में आज होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड समेत 27 मेडल्स। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद। मुंबई में आज नम आंखों से लालबाग चौराहा को दी गई विदाई, गिरगांव चौपाटी पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ अगले बरस फिर आने की प्रार्थना। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन, अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बटाया हाथ। तूतुकुड़ी में पूरा तासी के दूसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चल।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि कोलकाता में 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुरुग्राम हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला के समर्थन में एक कार रैली निकाली गई। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: क्या कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को तोड़ दिया गया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इसे राम मंदिर बनाने के लिए इस मस्जिद को गिराया गया है। वायरल वीडियो को हमने भी देखा और उसकी पड़ताल शुरू की, क्या पाया दिखाएंगे आपको।
3: दीवार पर लगातार हथौड़े से एक के बाद एक वार किया जा रहा है। हथौड़े की चोट से एक एक ईंट टूटकर नीचे गिर रही है। सामने कुछ लोग इस लम्हे को अपने मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं। भीड़ आवाजें भी लगा रही है। इस दौरान बिल्डिंग पर अरबी और बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद मस्जिद को तोड़ दिया गया है। फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, कोलकाता एयरपोर्ट के पास लगभग 136 वर्ष पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को कथित रूप से ध्वस्त किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ने भी इसी तरह के दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया। कई लोग वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए सही और गलत का फर्क नहीं कर पाए, लिहाजा वो भी इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
2: बता दें, लगभग 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे के भीतर स्थित है। ये मस्जिद हवाई अड्डे के दो रनवे में से दूसरे यानी छोटे रनवे के बेहद करीब है। हर साल जुलाई में सुरक्षा और रनवे विस्तार के कारण यहां नमाज बंद कर दी गई थी और अब इस वीडियो को इसी गौरीपुर जामा मस्जिद का बताकर ये दावा किया जा रहा है कि इस पुराने मस्जिद को तोड़ दिया गया है। वीडियो में कुछ लोग एक दीवार को हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से सर्कुलेट हुआ। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स भी इसे धार्मिक रंग देकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काने में जुट गए हैं। ऐसे में हम उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए पड़ताल में जुटे। हमने वीडियो की जांच की है। वीडियो का पहला फ्रेम ही देखते ही हमें इस दावे के ऊपर शक हुआ। ये किसी रिहायशी इलाके का वीडियो लग रहा है जहां पर कुछ लोग एक इमारत को तोड़ रहे हैं। 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद दमदम हवाई अड्डे के भीतर स्थित है, लेकिन ये जगह कॉलोनी की लग रही है जो वीडियो में है। वीडियो में एक और चीज गौर करने वाली है, यहां जिस इमारत को तोड़ा जा रहा है उसके ठीक नीचे शटर भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब ऊपर मकान है और नीचे दुकानें हो सकती हैं। कुछ लोग इस पूरी घटना को मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी अवैध या फिर किसी मामले में आरोपी शख्स के घर को तोड़ा जा रहा है और फिर उसे देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ भी मौजूद है।

0: सुनाई दे रही थी और इससे लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये कोलकाता की गौरीपुर मस्जिद का ही वीडियो है और इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं। लेकिन बांग्ला भाषा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी बोली जाती है, इसलिए हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, कोलकाता में गौरीपुर जामा मस्जिद को तोड़ दिया गया लेकिन इसकी खबरें कहीं क्यों नहीं आई, सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर होने लगी और लोग इसके चेक किए बिना धड़ाधड़ वायरल भी इसे करने लगे। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये है कि अगर दावा सच्चा है तो इसको लेकर किसी भी आधिकारिक स्रोतों से पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। अगर किसी बड़ी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है तो यहाँ पर बुलडोजर की गाड़ियाँ क्यों नहीं है, सिर्फ हथौड़े के बल पर किसी बड़ी मस्जिद को ध्वस्त कैसे किया जा सकता है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया संस्थान और पाकिस्तानी हैंडलर्स ने वीडियो धार्मिक रंग देकर लगातार वायरल किया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये है कि अगर ये सही था तो फिर भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को क्यों नहीं दिखाया। हमने जांच पड़ताल की तो क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
1: कोलकाता में 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को तोड़ दिया गया और इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई, ये कैसे संभव है? ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें एक बांग्लादेशी न्यूज पोर्टल के फेसबुक अकाउंट पर 19 सितंबर 2026 को अपलोड किया गया वीडियो मिला। फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और कैप्शन में इसे बांग्लादेश के पाबना में एक बच्चे की हत्या के आरोप में एक शख्स के गिरफ्तार होने के बाद उसके घर को तोड़े जाने का बताया गया था। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद हमें कई बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट्स पर इससे जुड़ी रिपोर्ट्स मिली। इन सभी रिपोर्ट्स में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बांग्लादेश के पाबना उपजिला के कुलुनिया गांव में 10 साल की एक बच्ची 9 सितंबर की शाम को घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस घटना के 7 दिन बाद 16 सितंबर की सुबह उसके घर के पास स्थित एक तालाब से बच्ची का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के पड़ोसी और किराना दुकानदार 55 साल के मुस्तफा प्रामाणिक और उसके किराएदार यासीन अली को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स में पबाना की पुलिस अधीक्षक के हवाले से ये जानकारी भी दी गई थी कि मुस्तफा की किराना दुकान के पीछे बने कमरे में ले जाकर बच्ची की गला घूंट कर हत्या कर दी गई थी। यह दावा भी किया गया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की और हत्या के बाद वे बच्ची की तलाश में भी शामिल हुए थे। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था और शुक्रवार दोपहर 18 सितंबर को भीड़ ने मुस्तफा प्रमाणिक के घर पर हमला कर घर में तोड़फोड़ की थी। इस घटना से जुड़ी कई वीडियो रिपोर्ट्स हमें बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स के यूट्यूब अकाउंट्स पर भी मिली। इन रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया था कि बांग्लादेश के राजशाही जिले के पाबना में एक 10 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक संदिग्ध आरोपी के घर को भीड़ ने तोड़ दिया था। हमारी जांच में मिले सबूतों से ये स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद मस्जिद को तोड़े जाने के फर्जी दावे से वायरल ये वीडियो बांग्लादेश के पाबना की एक घटना का है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: गुरुग्राम हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला इस वक्त जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उसे उसके चचेरे भाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी कल्याण बैंसला को लेकर एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और दावा यह है कि बैंसला के समर्थन में एक कार रैली निकाली गई। हिट एंड रन केस में एक आरोपी जेल में है और उसके गुनाहों की भर्त्सना करने की बजाय उसके समर्थन में कार रैली की जा रही है, ये हमें चौंका गया। ऐसे में हमने इसका फैक्ट चेक किया।
2: गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में कल्याण बैंसला मुख्य आरोपी है। 13 सितंबर को कल्याण बैंसला ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर सिया चौहान को अपनी कार से जानबूझकर टक्कर मार दी थी। घटना के बाद फरार हुए कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था।

0: अब सोशल मीडिया पर आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन के नाम पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन में गुर्जर समुदाय ने कार रैली निकाली है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि गुरुग्राम हिट एंड रन केस आरोपी के समर्थन में लोगों का जमावड़ा। गुरुग्राम में कुछ लोगों ने कार रैली निकाली। ये रैली महिला बाइकर के साथ हुए हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन में थी। सोशल मीडिया पर इस जमावड़े को गुर्जर एकता का प्रदर्शन बताया गया। इस वीडियो को जातीय रंग देकर सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाया जा रहा है। झूठ सच का फर्क किए बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: बता दें, गुरुग्राम हिट एंड रन केस मामले पर सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। गोल्फ कोर्स रोड पर कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश ने एक महिला बाइकर को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से दोनों इस वक्त जेल में हैं। और इन सब के बीच ये वीडियो चर्चा में बना हुआ है। दावा है कि कल्याण बैंसला के समर्थन में कार रैली निकाली गई। सोशल मीडिया पर ये दावा आग की तरह फैल रहा है। मामला एक आरोपी के समर्थन का था। अदालत का फैसला आने से पहले गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपी कल्याण बैंसला को हीरो की तरह पेश किया जा रहा था। ऐसे में हमने वीडियो की जांच पड़ताल की तो वहीं चार्जशीट में कल्याण बैसला पर गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, ये सामने आया। मामले में हत्या के प्रयास, लापरवाही से गाड़ी चलाने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और ऐसे में इस वीडियो को सामने आना, ये दावा कि बैसला के समर्थन में लोगों ने कार रैली निकाली, ये समझ से परे था। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वीडियो को ध्यान से देखा। ये किसी हाईवे का वीडियो लग रहा है। इसमें गाड़ियों को आड़ा तिरछा करके खड़ा किया गया था। कुछ आदमी सड़क पर खड़े हैं तो कुछ गाड़ियों पर, तो कुछ गाड़ियों के अंदर से झांक रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमें ना तो कोई गाड़ियों पर ही और ना ही लोगों के हाथ में ऐसा कोई बैनर पोस्टर नजर आया जिससे तस्दीक की जा सके कि कार रैली कल्याण बैसला के समर्थन में ही निकाली गई थी। लेकिन यहां पर बैसला के समर्थन में बैनर पोस्टर नहीं देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि गाड़ियों को सड़क के बीचों बीच इस तरह खड़ा किया गया था जैसे कुछ सड़क पर खड़े हो गए हों तो कुछ गाड़ी के ऊपर। व्यस्त सड़क पर इस तरह खुलेआम होता रहा, किसी ने विरोध भी नहीं किया। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि कल्याण बैंसला के समर्थन में रैली हुई तो फिर इसे रोकने के लिए पुलिस के जवान सामने क्यों नहीं आए। वीडियो में कई गाड़ियों पर यूपी का नंबर प्लेट दिख रहा है। अगर ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है तो इसके बारे में किसी मेन स्ट्रीम में खबर क्यों नहीं आई, ये सवाल भी बनता है।
0: जो खबर दिखाई जाती है वो सही ही हो, ऐसा होता नहीं है। फैक्ट चेक टीम सच और झूठ का पता लगाने के लिए इसकी जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान एक पुराना वीडियो हमें एक इंस्टाग्राम हैंडल पर मिला। इस वीडियो को 8 मई 2025 को अपलोड किया गया था। सर्च के दौरान हमें यही वीडियो एक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मिला। इसे 20 अप्रैल 2025 को अपलोड किया गया था। हमारी अब तक की जांच से ये तो स्पष्ट हो गया कि गुरुग्राम हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन के दावे से वायरल हो रहा वीडियो घटना से काफी पहले का है। हाँ, ये बात सच है कि बैसला को समर्थन भी मिल रहा है। उनके समर्थन में एक महापंचायत भी बुलाई गई थी और गुर्जर समुदाय के कई लोग कल्याण बैसला के समर्थन में आए थे। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। गुरुग्राम हिट एंड रन केस के आरोपी कल्याण बैसला के समर्थन में कार रैली निकालने के दावे से वायरल किया जा रहा वीडियो साल 2025 का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: मासूमियत और भक्ति के इस अद्भुत संगम ने लोगों का दिल जीत लिया है। एक फैंसी ड्रेस या सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लाल रंग के कारपेट पर ये नन्हा बालक चलकर आ रहा है। बच्चे का हुलिया हूबहू वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसा बनाया गया है। उसने पीली चादर सफेद धोती धारण की है और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ के साथ साथ माथे पर सुंदर तिलक लगा रखा है। मधुर भजन के बीच बच्चा बड़ी ही सादगी और मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाकर उपस्थित जनसमूह का अभिवादन कर रहा है। जिस तरह बच्चे ने गेटअप किया है और देखने में बिल्कुल प्रेमानंद महाराज की तरह लग रहा है। जैसे ही ये छोटा बालक रेड कार्पेट पर आगे बढ़ता है, आसपास बैठे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उसकी इस मासूमियत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। इस दौरान बच्चे के चेहरे की शांति और खुशी देखने लायक है।
3: ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन मेरे घर के तरफ जाती है, ये ट्रेन दानापुर जाती है। दिल करता है कि यार इस ट्रेन में बैठ जाऊं और सीधा घर पहुंच जाऊं, लेकिन चाहकर भी बैठ नहीं सकता।
2: बड़े शहरों में कमाने के लिए घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए अपने शहर लौटने की चाह शायद सबसे गहरी भावनाओं में से एक होती है। कई बार बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर अपने घर की तरफ जाने वाली ट्रेन दिख जाए तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर उसी में बैठ जाए, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जिम्मेदारियां इंसान को चाहकर भी अपने घर वापस जाने नहीं देती। इस शख्स की भी यही कहानी है और जब जुबान से शब्द निकले तो ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा में आ गया।
3: ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन मेरे घर के तरफ जाती है, ये ट्रेन दानापुर जाती है। दिल करता है कि यार इस ट्रेन में बैठ जाऊं और सीधा घर पहुंच जाऊं, लेकिन चाहकर भी बैठ नहीं सकता। बैठने के लिए आगे बढ़ता हूं तो सामने माँ बाप के चेहरे, जिम्मेदारियां, कर्ज रोक लेती हैं। क्या करें, दिल पूरा धक धक कर रहा है इस ट्रेन को देख कर कि यार ये ट्रेन मेरे घर के तरफ जाती है, लेकिन चाहकर भी मैं बैठ नहीं सकता। अब सब कुछ मेहनत के ऊपर है, जितना जल्दी मेहनत करूंगा उतना जल्दी ही घर पहुंचूंगा।
2: अपने घर से दूर बाहर कमा रहे लोग इस वीडियो को अपनी मजबूरियों से जोड़कर जमकर शेयर करने लगे।
3: घर पहुंच पाएंगे।
2: तीस साल तक किराए के मकान में रहने वाले एक पिता के लिए बेटी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारियों में पिता अपना घर खरीदने का सपना पीछे छोड़ चुके थे। बेटी ने नौकरी शुरू करने के बाद चुपचाप एक खास मकसद के लिए पैसे बचाने शुरू किए। फिर फादर्स डे पर पिता को लेकर वो बाहर गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही उन्हें सरप्राइज के बारे में पता चला वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल बेटी ने अपने पिता को नया घर गिफ्ट किया। सबसे खास बात ये कि उनके पिता को इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें घर की चाबी मिली और उन्होंने जाना कि ये घर उन्हीं के लिए खरीदा गया है तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया उसने हजारों लोगों के दिल छू लिए। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिखती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते और मुस्कुराते रहते हैं जब तक बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला गया। अद्भुत भक्ति और अनूठा बैलेंस। सड़क से गुजर रहे शख्स को देखकर लोग दंग हैं। सिर पर मां काली की मूर्ति और आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ साइकिल के हैंडल को संभालते हुए ये शख्स जब सड़क पर निकला तो इस दृश्य को देखकर लोग हैरान हो गए। साइकिल की रफ्तार और सड़क के घुमाव के बावजूद मूर्ति अपनी जगह से जरा भी हिलते डुलते नहीं है। इस व्यक्ति के हुनर और नियंत्रण की तारीफ हर कोई कर रहा है। ये ऑटो रिक्शा बड़ी बड़ी लग्जरी कारों को भी मात दे रहा है। ऑटो ड्राइवर ने ग्राहकों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। ऑटो के अंदर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों के मुंह का स्वाद मीठा करने के लिए खास चॉकलेट ट्री बनाई गई है। साथ ही पीने का साफ पानी, टिश्यू बॉक्स, सैनिटाइजर और कचरे के लिए डस्टबिन की पूरी व्यवस्था है। वहीं छत पर सुंदर झूमर, रंग बिरंगे लाइट, सुंदर पर्दे और हरियाली के लिए एक प्यारा सा पौधा भी ऑटो के अंदर लगाया गया है। अगर सफर के दौरान कोई बच्चा रोने लगे या बोर हो जाए तो ड्राइवर के पास एक मजेदार बबल गन भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो में बुजुर्गों और भारतीय सैनिकों के लिए विशेष निःशुल्क सेवा का बोर्ड और हरे कृष्ण और भगवान की सुंदर तस्वीरें भी लगी हैं। पहली नजर में तो ऐसा ही लगेगा कि ये स्कूटर है, लेकिन वीडियो जैसे ही आगे बढ़ेगा पूरा खेल सामने आ जाएगा। दरअसल साइकिल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। इस साइकिल की खास बात इसका फ्रंट लुक है। शख्स ने साइकिल के आगे का हैंडल और पहिया हटाकर उसमें स्कूटर का पूरा फ्रंट हिस्सा फिट कर दिया है, जिसमें क्लासिक हेडलाइट, हॉर्न वाली जगह और लेग गार्ड शामिल है। इस जुगाड़ को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। महंगे पेट्रोल और ट्रैफिक चालान के इस दौर में लोग इस इनोवेशन को पर्यावरण अनुकूल और किफायती बता रहे हैं। बचपन में आपने रंग भरने के लिए रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। छोटी सी पेंसिल से बच्चे कागज पर खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रंगीन पेंसिल इतनी लंबी हो सकती है कि उसके सामने 3 मंजिला बिल्डिंग भी छोटी पड़ जाए? अगर नहीं तो अब सोच लीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रंगीन पेंसिल बनाकर एक कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी इस कलर्ड पेंसिल के वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी रंगीन पेंसिल की लंबाई 10.53 मीटर यानी 34 फीट 6 इंच है। इसकी चौड़ाई लगभग 0.50 मीटर यानी 19 इंच है। इस विशाल पेंसिल को थाईलैंड की कंपनी DHA सियामवाला लिमिटेड ने बनाया है। ये रिकॉर्ड 28 मई को थाईलैंड के अयोध्या में बनाया गया था।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है? किस ग्रह की वजह से कान, नाक और गले की तकलीफ होती है? और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं? 9 ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: सास बहु और बेटियां में आज होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।

0: हाँ हाँ आवाज आ रही है। एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड मेडल समेत 27 पदक। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, यूपी के 26 जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, केजिया लिज मिजो प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। बापा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अजय देवगन अमृता फडणवीस सहित कई हस्तियों ने बटाया हाथ। थूथुकुड़ी में पुरातासी के दूसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किए। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया द वन की बम्पर ओपनिंग, बरसी छठी मैया की कृपा, पहले ही दिन किया 9.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, मानव का जीवन है तो बीमारियां लगी रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर हम चिकित्सा ज्योतिष की बात करें, तो हर ग्रह से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होती है जो व्यक्ति को लगती है, परेशान करती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह की बीमारियां देता है या दे सकता है, और उन बीमारियों को दूर करने के ज्योतिष में क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, शरीर की हो, मन की हो, धन की हो, आध्यात्मिक दिक्कत हो, किसी भी तरह की बाधा को दूर करने का महाशक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह और शाम भगवान कृष्ण का स्मरण करके तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र को जपना चाहिए। ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय ये मंत्र पढ़ते रहिए, मन भी पवित्र होगा और जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। मंत्र मैं फिर से दोहरा देता हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 9 ग्रहों की बीमारियों के बारे में और उन बीमारियों से बचने और दूर करने के छोटे छोटे उपायों के बारे में। आपको जो बीमारियां होती हैं उनका ग्रहों से और भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और तीन धातुएं होती हैं कफ, वात और पित्त। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं नव ग्रहों से और 12 राशियों से कंट्रोल होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है तब शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, और जब कोई एलिमेंट बिगड़ जाता है तो बीमारियां लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती हैं। छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से, कुंडली के भाव से और राशियों से संबंध रखती है। अगर आप ग्रहों को बेहतर करें तो उनसे कनेक्टेड राशियां बेहतर होंगी, और अगर ग्रह और राशियां बेहतर हो जाएंगी तो आप अपने शरीर की बीमारियों को बड़ी आसानी से दूर कर पाएंगे। तो आपको आज के कार्यक्रम से ये समझना होगा कि किस ग्रह की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य से संबंधित बीमारियां कौन सी हैं? देखिए, सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, हर ग्रह की शक्ति के पीछे जो ग्रह होता है वो दरअसल होता है सूर्य। आपके ओवरऑल कुल मिला जुला के स्वास्थ्य का जो मालिक है वो सूर्य है। इसीलिए अगर कुंडली में सूर्य प्रबल होता है तो सामान्यतः जीवन में बीमारियां नहीं होती। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है तो आपको बीमारियां देगा। सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या होती है। हृदय रोग, ट्यूबरक्लोसिस टीबी और पाचन तंत्र, पेट के रोग के पीछे सूर्य की बड़ी भूमिका होती है। सूर्य शरीर के फायर को कंट्रोल करता है और शरीर को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए अगर सूर्य बिगड़ेगा तो फायर बिगड़ेगा, और फायर अगर बिगड़ेगा तो सबसे बुरा असर आपकी आंखों, आपके हृदय पर पड़ेगा, और पेट में, शरीर में पित्त की मात्रा, गर्मी की मात्रा बढ़ेगी, डाइजेशन चौपट हो जाएगा। तो अगर सूर्य गड़बड़ है तो आप मान के चलिए कि 3 चीजों से आप सतर्क रहिए, हृदय का रोग, हड्डियों का रोग और आंखों का रोग। ये 3 होने की पॉसिबिलिटी आपके लिए ज्यादा है। क्या उपाय किया जाए? अगर सूर्य का रोग हो गया हो या होने की संभावना हो तो क्या उपाय करेंगे? सुबह जल्दी सोकर उठने का प्रयास करिए। सुबह जितना जल्दी सोकर उठेंगे उतना बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाएं, और तांबे का एक गिलास या तांबे का एक लोटा अपने पास रख लें। तांबे के पात्र से आपको जल जरूर पीना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद कम से कम 2 से लेकर 5 मिनट तक सूर्य की रोशनी में बैठिए अपनी पीठ करके। ये बड़ा अचूक तरीका है, पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी, पूरे शरीर में शक्ति आएगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या बीमारियां देता है या दे सकता है? देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। जैसे सूर्य आपके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे चंद्रमा आपके मन को, आपके मेंटल लेवल को कंट्रोल करता है। व्यक्ति के मन और सोच को नियंत्रित करता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है व्यक्ति का, तो मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सब होने की संभावना बनती है। और चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, आपका दिमाग हमेशा सोचता रहेगा और चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी, आप हमेशा तनाव में बने रहेंगे। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप टेंशन पाले रखेंगे। चंद्रमा के गड़बड़ होने से नींद की समस्या, घबराहट बेचैनी की समस्या, एपिलेप्सी की समस्या, ये समस्या होने की संभावना बन जाती है। यानी चंद्रमा आपके मन की खुशियों पर, आपके सोच पर और आपके तनाव पर असर डालता है। जिन लोगों को मानसिक रोग है या जिन लोगों की मानसिक बीमारी की दवा चल रही है, 80% मामले में मान लीजिएगा कि उनका चंद्रमा गड़बड़ है। क्या उपाय करें अगर चंद्रमा की समस्या हो या होने की संभावना हो? देर रात तक मत जगिए। लेट नाइट तक जगना, रात में जगे रहना, रात में टहलते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, ये चंद्रमा को खराब करेगा। महीने में 1 पूर्णिमा आती है और 2 एकादशी आती है, तो पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए अगर आप चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं। नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अपने गले में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चंद्रमा अगर आपको बीमार कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाने में मत शर्माइए कि मैं कैसे किसी मनोचिकित्सक के पास चला जाऊं। मनोचिकित्सक के पास जाइए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी मानसिक बीमारी हो सकती है। तो मनोचिकित्सक के पास जाइए, उनसे दवाई और सलाह लीजिए और जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको ठीक से करिए, आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल की, बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है बीमारियों के मामले में, क्योंकि मंगल जो है ना वो आपकी सुरक्षा है, आपका डिफेंस सिस्टम है। मंगल को सेनापति कहा जाता है क्योंकि ये आपके जीवन को, आपको रोग बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, आपकी सुरक्षा करता है। मंगल मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। मंगल को ज्योतिष की पुस्तकों में कहा गया है कि ये मसल्स का स्वामी है। आपके शरीर की जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनका स्वामी है मंगल। और जो बोन मैरो है, जो शरीर का केंद्रीय प्राण है, जो शरीर के साइकिल को बदल सकता है, आपका बोन मैरो, उसका स्वामी है मंगल। मंगल रक्त की समस्या देता है, बोन मैरो की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, दुर्घटना की समस्या और ऑपरेशन जैसी नौबत, सर्जरी जैसी नौबत मंगल जीवन में ले आता है। वैसे तो देखिए ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा की, लेकिन मंगल भी कभी कभी हाई बीपी के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार होता है। जिन लोगों को जल्दी जल्दी बुखार होता है उसके पीछे भी आम तौर पर मंगल की गड़बड़ी होती है। मंगल त्वचा में इन्फेक्शन पैदा करता है, चेहरे पर, शरीर पर चोट के या कटे फटे के निशान देता है। या बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि दवाई खाए और रिएक्शन हो गया, उसके पीछे होता है मंगल। लेकिन एक लाइन में आप समझिए, आपकी बीमारियों से जो ग्रह सुरक्षा करता है, आपको बीमारियों से बचाता है और आपको स्वस्थ बनाए रखने में सपोर्ट करता है, वो है मंगल। तो अगर मंगल की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं, आपको मसल्स की प्रॉब्लम है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है, या रक्त की दिक्कत है, या बार बार सर्जरी होती है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो क्या करेंगे? मंगलवार का उपवास रखिएगा। मंगलवार का उपवास रखें, हनुमान जी और कुमार कार्तिकेय की पूजा करें और इस दिन नमक का सेवन मत करें। मंगल अगर गड़बड़ है तो चीनी खाने की बजाय आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से जमीन पर सोइए, दरी डालकर या बिस्तर डालकर, या लो फ्लोर के पलंग पर सोना भी अच्छा रहेगा। एक मिट्टी का मटका मंगवा लीजिए, घड़ा, और उसमें जल भर करके रखिए। मिट्टी के मटके का जल, घड़े का जल पीने से मंगल बड़ा बैलेंस हो जाता है। जल माने चंद्रमा और मिट्टी माने मंगल, तो तो मंगल का जो अप्रोच है वो सॉफ्ट हो जाता है, जीवन की दुर्घटनाएं उठा पटक उतार चढ़ाव से आप बच जाते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध जो है ना वो कम्युनिकेशन का मालिक है। सेंसरी ऑर्गन्स जिसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं आप, कान, नाक, जिह्वा, जबान, आंखें और त्वचा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, ये होते हैं बुध के। और बुध भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। मंगल जितना तो नहीं डालता, लेकिन मंगल के बाद अगर देखें तो बुध आपको थोड़ा स्वस्थ बनाता है, क्योंकि अगर बुध गड़बड़ हुआ ना तो आपको फ्रीक्वेंट बीमारी होगी, फ्रीक्वेंटली एलर्जी हो जाएगी या इन्फेक्शन वाली बीमारियां आपको परेशान करेंगी। जैसा बताया कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का मालिक है। शरीर में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो होता है कान, नाक और गले से। बोलना, सुनना, ये सब कहाँ से होता है? ईएनटी से। और ईएनटी का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो है बुध। बुध जो है वो आपकी त्वचा का भी मालिक है। इसीलिए त्वचा के जो रोग हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बुध की वजह से पैदा होती है। और बुध एलर्जी भी देता है। एलर्जी की शिकायत मौसम बदलने पे आपको छींके आने लगती हैं, बुध है उसके पीछे। और बुध की एक और बड़ी मुश्किल है भाई, बुध जो है ना अगर कमजोर होगा तो आपको सूंघने में दिक्कत होगी। आपकी जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की जो ताकत है, वो कमजोर होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ सुंघाई नहीं देता या मुझे कुछ अनुभव नहीं होता सुगंध का। बुध खराब है। जिनको ऊंचा सुनाई देता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, बुध गड़बड़ है। कान, नाक, गला और आपकी त्वचा के अलावा जो एलर्जी की समस्या है उसके पीछे है बुध। क्या उपाय करना चाहिए? भोजन में सलाद का और हरी सब्जियों का प्रयोग आपको करना चाहिए। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग करने से बुध बेहतर होगा। रोज सुबह जल चढ़ाएं सूर्य को तो बहुत अच्छा, और न चढ़ा पाए तो सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में कुछ देर पीठ करके अगर आप बैठें तो अच्छा रहेगा। प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गायत्री मंत्र का जप करने से, या ऐसा देखा गया है कि किसी मंत्र का नियमित जप करने से भी बुध अनुकूल हो जाता है। बुध को नियंत्रित करने के लिए, अगर बुध आपका खराब है, आपको बहुत बीमारियां दे रहा है, तो भगवान विष्णु की उपासना करने से बुध को कंट्रोल कर पाना, बुध को शांत कर पाना आसान होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति कौन सी बीमारियां देता है? देखिए, बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा जाता है, बचाने वाला, आदमी को मौत के मुंह से निकाल कर लाने वाला जो ग्रह है ना, वो बृहस्पति है। अगर बृहस्पति शुभ में हो गया, अनुकूल हो गया, तो जीवन में कितनी भी बीमारियां हों, कितनी भी मुश्किलें हों, हर बार आप बच के निकल आएंगे। तो बृहस्पति व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। और अगर बृहस्पति खराब हो गया ना, तो भयंकर बीमारियां भी आपको जीवन में देता है। कैंसर की बीमारी, लीवर की, हेपेटाइटिस की बीमारी और पेट की गंभीर बीमारी बृहस्पति जीवन में प्रदान करता है। बृहस्पति लीवर का स्वामी है, मोटापे का स्वामी है, इसीलिए अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो लीवर में दिक्कत आएगी, मोटापा बढ़ेगा। अगर आपका लीवर फैटी है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बृहस्पति जरूर गड़बड़ होगा। बिना बृहस्पति के गड़बड़ हुए पेट की या लीवर की गंभीर बीमारी नहीं होती है। बृहस्पति छोटी बीमारी नहीं देता, जैसा इसका नाम है गुरु, गुरु माने बड़ा, तो बृहस्पति अगर बीमारी देगा तो वो बड़ी बीमारी देगा और उसका इलाज लंबे समय तक चलेगा, उसका कष्ट लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। तो अगर बृहस्पति से संबंधित बीमारी आपको हो रही है या बृहस्पति से संबंधित बीमारी होने की संभावना है तो क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। शुद्ध सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पति वार को पहनिए, और अगर छल्ला नहीं पहन पाते, महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनिएगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद जरा सा हल्दी का तिलक लगाइएगा अपने माथे पर और अपने कंठ पर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। रोज सुबह पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो काफी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारियां या तो बृहस्पति दे रहे हैं या शुक्र दे रहे हैं। देखिए, जिन बीमारियों में प्यास लगे या जिन बीमारियों में डॉक्टर कह दे कि पानी एक ही लीटर पीना है दिन भर में, पानी से संबंधित, प्यास से संबंधित जो बीमारी हो उसके पीछे होगा शुक्र। शुक्र शरीर के रसायन को नियंत्रित करता है, शरीर के केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करता है। शुक्र की वजह से हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज में देखिए प्यास बहुत लगती है, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या होती है, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मूत्र विकार की समस्या, ये सब शुक्र देता है। और शुक्र यौन रोग, सेक्सुअल डिजीज भी देता है। हालांकि एसटीडी में, सेक्सुअल डिजीज में चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यूरिन, किडनी, प्रोस्टेट, इससे संबंधित बीमारी, डायबिटीज, एक आंख को प्रभावित कर देना, इन सब के पीछे शुक्र है। और शुक्र ज्यादा निगेटिव होगा ना तो आंखों की लेंस पे असर डाल देगा, लेंस डिटैच हो जाएगा, रेटिना में प्रॉब्लम आ जाएगी। और शुक्र जब आंखों पे असर डालता है तो एक आंख की रोशनी कम होती चली जाती है। तो अगर आपको शुक्र की बीमारी हो गई है या शुक्र की बीमारी होने की संभावना है तो क्या करना चाहिए? दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। दही खाने से लाभ होगा, लेकिन दोपहर के भोजन में खाएंगे तो ही अच्छा होगा। चावल, चीनी और मैदा, ये आपको कम से कम खाना चाहिए। भोर में उठ करके सुबह के समय अगर आप टहलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण कर लें तो इससे भी शुक्र बैलेंस होगा, शुक्र की बीमारियां कम हो जाएंगी। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर जीवन में कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी कष्ट आ गया तो उसके पीछे शनि है, शनि को दोष देना शुरू कर देते हैं। देखिए, शनि ही हर बार बीमारी नहीं देता, शनि आयु बढ़ाता भी है, आयु को बैलेंस भी करता है। शनि बड़ा फेवरेबल प्लैनेट होता है और अगर अनुकूल हो जाए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप हर तरीके से जीवन में सफल भी होंगे। शनि और बीमारियों का क्या मामला है? देखिए, शनि के कारण अगर बीमारी होती है तो लंबे समय तक चलती है, आर्थराइटिस होना, बेड रिडन हो जाना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, स्पाइन या लोअर बैक की दिक्कत होना, इन सब के पीछे शनि है। शनि आपके नर्वस सिस्टम को, आपके स्नायु तंत्र को कंट्रोल करता है और शरीर में पेन की समस्या, दर्द की शिकायत देता है। शनि अगर गड़बड़ हो गया तो आपका चलना फिरना रुक जाएगा, चलना फिरना रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बेड रिडन हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो गया पैर में, पलंग पे पड़े हुए हैं, उसके पीछे शनि होगा, क्योंकि ये चलना फिरना रोक देता है और आम तौर पर शरीर को विकृत या टेढ़ा मेढ़ा बना देता है। देखिए, बृहस्पति की बीमारी का मतलब ज्यादा खा खा के बीमार हो गए, अति पोषण से बीमार हुए, और शनि का मतलब कुछ खाते ही नहीं है, यानी पोषण, न्यूट्रिशन कम है इसलिए बीमार हो गए। दोनों में बड़ा फर्क है, समझिएगा। तो अगर शनि की बीमारी है आपको या होने की पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे? सात्विक और सादा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग आपको करना चाहिए। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा और दिन में, खासतौर से सुबह के समय जब मौका मिले, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिए, भगवान के नाम का जप करिए या ध्यान लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की बीमारियों से अगर बचना है, एक लाइन में जानिए, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु कैसी बीमारियां देता है? राहु जो बीमारियां देता है वो रहस्यमयी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कोई ऐसी बीमारी है जो लाखों में किसी एक को होती है। अजीब टाइप की बीमारी जो होती है वो देता है राहु। इसकी बीमारियां शुरू में तो छोटी होती हैं, शुरू में पता भी नहीं चलती, आदमी को लगता है कुछ रिपोर्ट आ नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाद में बीमारियां बड़ी और गंभीर हो जाती हैं, और राहु अगर बीमारी देगा ना तो आपको कारण पता ही नहीं चलेगा, इसका कारण अज्ञात रहेगा, इसका कारण आप नहीं जान पाएंगे। और ज्यादातर राहु वालों में देखा गया है कि राहु अगर बीमारी देता है तो बीमारी अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। जितना दिन आदमी को कष्ट भोगना है वो भोगता है, डॉक्टर भी क्या करे, क्योंकि बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं होता, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती, आपकी बीमारी चलती रहती है, आप कष्ट पाते रहते हैं। जब राहु का प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको राहु की बीमारी हो गई है, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा और आप बीमारी झेल रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? चंदन की सुगंध का जरूर प्रयोग करिए, चंदन की फ्रेग्रेंस का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होगा। गले में एक तुलसी की माला पहन लें और आहार बिल्कुल सात्विक रखें, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। चमकदार नीले रंग का, ब्राइट ब्लू कलर का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु किस तरह की बीमारियां देता है? देखिए, राहु और केतु का जो नेचर है वो बड़ा मिलता जुलता है, हालांकि कुछ मामलों में अंतर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो राहु से मिलती जुलती हैं केतु की। जैसे केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है। आम तौर पर केतु त्वचा की दिक्कत, रक्त की अजीब बीमारियां और केतु यूरिन, किडनी और खास तौर से गाल ब्लेडर में स्टोन आ जाए, किडनी स्टोन आ जाए, यूरिन में प्रॉब्लम आने लगे या त्वचा में गंभीर दिक्कतें आने लगे, तो इसके पीछे केतु होता है। जैसे राहु की बीमारियां पकड़ में नहीं आती, वैसे केतु की बीमारियां भी जल्दी पकड़ में नहीं आती। हालांकि केतु की बीमारियों में ये है कि अगर आप थोड़ा पवित्रता से रहने लगिए तो छुटकारा जल्दी मिलता है, राहु वाले में छुटकारा पाने में वक्त लगता है। केतु जो है ये कल्पना की बीमारियां भी देता है, इमेजिनेटरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है लेकिन आपको बीमारियों का, समस्याओं का अनुभव होता रहता है, बीमारियों को लेकर के आप लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि सर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, बस अब आपको टेंशन हो गई कि मेरी किडनी खराब होने वाली है। ये जो काल्पनिक चिंताएं हैं इसके पीछे भी ज्यादातर केतु होता है। तो अगर केतु की बीमारियां हैं आपको या होने की पॉसिबिलिटी है तो क्या करें? भैया, रोज सुबह नहाना बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठ के पवित्र तरीके से, साफ सुथरे तरीके से नहाइएगा। धर्म स्थान पर या धर्म सभाओं में जरूर जाइए, पवित्र नदियों में डुबकी लगाइए, बड़ा फायदा होगा केतु की समस्या को दूर करने में। और मंदिरों में जाके दर्शन जरूर करिए, खास तौर से शिव मंदिर में और गणपति के मंदिर में। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार निर्धनों को भोजन कराइए, बहुत अच्छा होगा। और महीने में एक बार कुछ ना कुछ गुप्त दान करिए, गौशाला में कर दें, किसी अनाथालय में कर दें, आश्रम में कर दें। और प्रचार मत करिए, बताइए मत कि आपने दान किया है, गोपनीय दान करिए। ऐसा करने से केतु की बड़ी शुभता मिलेगी और केतु से संबंधित बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, अलग अलग जो ग्रह हैं वो अलग अलग बीमारियां आपको देते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, तो तीन काम आपको जरूर करने चाहिए। पहला काम, रोज सुबह जितना जल्दी संभव हो उठ करके सूर्य

में एक बार या महीने में एक बार खाने पीने की वस्तुओं का, अन्न का किसी निर्धन को दान करें। अगर ऐसा निरंतर आप करते जाएं, अगर ऐसा लगातार आप करें और थोड़ा सा अपना खान पान संभालें तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपका शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

सास बहु और बेटियां में आज होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है, और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं चमोली में बीती रात से बारिश का दौर जारी है, जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाकों और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ उच्च हिमालय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है, तो वहीं हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, और इसके बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय हेमकुंड साहिब समेत पूरे चमोली जनपद में मौसम ने ठंड बढ़ा दी है, और इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलने वाली है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
8: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और शानदार खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर मिले उपहारों को अपने घर ले जाने का मौका अब आपको भी मिल सकता है। असल में इन दिनों पीएम मोदी को मिले खास उपहारों की नीलामी चल रही है। आपको बता दें कुल 1498 से ज्यादा ऐसे खूबसूरत सामानों को ई नीलामी के लिए पेश किया गया है। इनमें देश के अलग अलग हिस्सों की कला, संस्कृति और परंपरा को अपने में समेटे हुए कलाकृतियां हैं। कई तस्वीरें और अनूठी मूर्तियां भी शामिल हैं।
7: एक से बढ़कर एक भव्य प्रतिमाएं, शानदार पेंटिंग्स, शोपीस और ऐसी तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं, जिनको न केवल आप देखना चाहेंगे बल्कि अपने पास सहेज कर रखना भी चाहेंगे। इन दिनों दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही प्रदर्शनी में पीएम मोदी को मिले 70 उपहारों और स्मृति चिन्हों को डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जबकि कुल 1498 से ज्यादा ऐसे खूबसूरत सामानों को ई नीलामी के लिए पेश किया गया है। इनमें देश के अलग अलग हिस्सों की कला, संस्कृति और परंपरा को अपने में समेटे हुए कलाकृतियां हैं, तो साथ ही कई तस्वीरें और अनूठी मूर्तियां भी हैं।
8: यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है बालाजी की जो है तस्वीर नजर आ जाएगी, वेंकटेश्वर बालाजी के स्टैचू है जो वो नजर आ जाएगा, और इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर राम दरबार जो है वो नजर आएगा, जिसमें आपको राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी जो है वो नजर आ जाएंगे, और इनका जो बेस प्राइस है वो भी नजर आ जाएगा। चीजें कहाँ से, मतलब पूरी की पूरी जो गिफ्ट्स जो यहाँ पर लाए गए हैं उसके बारे में हर एक बारीक डिटेल जो है वो आपको ऑनलाइन जो है उसकी जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो हर तरफ आपको किसी ना किसी तरीके की जो कला है, खूबसूरत प्रतिमाएं हैं, वो देखने को मिलेगी।
7: इस कलेक्शन में मिथिला का पारंपरिक पाग है, तो साथ ही असम की लोकप्रिय टोपी भी है। नहीं नहीं, कई अनूठी पेंटिंग्स भी इस कलेक्शन में मौजूद हैं।
8: फ्री ऑफ लाइफ है ये, आप देख ही सकते हैं। और ये जो गोंद आर्ट होती है एमपी की जो खास कला है वो यहाँ पर जो है लगाई गई है और ये टॉप 10 में आती है। और अगर इसके बेस प्राइस की हम बात करें तो ये 7 लाख के करीब जो है इसका बेस प्राइस है। हालांकि बेस प्राइस है, इस पर बिड भी जो है वो लगातार लगेगी। 2 अक्टूबर तक बिड का लास्ट डेट है, तो तब तक जो भी इसकी हाईएस्ट बिड होगी ये उसी को ही सोल्ड आउट जो है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बेस प्राइस के साथ हर एक जानकारी जो है यहाँ पर दी जाती है। इनमें जो है प्रोडक्ट कोड है जो कि आप इनके पोर्टल में जाकर जो है वो देख सकते हैं।
9: लाखों रुपए कीमत वाले इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी पीएम मोमेंटोज ई ऑक्शन पोर्टल के जरिए की जाती है। इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इन सामग्रियों की नीलामी शुरू की गई।
8: आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी की जो पेंटिंग है वो नजर आ जाएगी और 5,40,000 इसकी कीमत है। आप देख सकते हैं फाइन गोल्ड प्लेटेड राधा कृष्ण जी की जो ये मूर्ति है ये यहाँ पर लगाई गई और ये टॉप 10 में आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। आपको ये एक आपको यहाँ पे टेनिस रैकेट जो है वो मिल जाएगा। हालांकि ये एक प्लेयर का रैकेट है जो कि पीएम जी को जो है पीएम को गिफ्ट किया गया है। 2 लाख जो है इसकी बेस प्राइस जो है कीमत जो है वो यहाँ पर दी गई है।
9: प्रधानमंत्री को मिले ये गिफ्ट और स्मृति चिन्ह सिर्फ प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है बल्कि इन्हें आम लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया भी बनाया गया है। हर वस्तु की एक बेस प्राइस तय की जाती है और इसके बाद ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। नीलामी से मिली रकम का इस्तेमाल गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में किया जाता है। अगले महीने की 2 तारीख तक इन शानदार गिफ्ट्स पर बोलियां लगेंगी। अगर आप भी इन सामग्रियों को अपने घर में यादगार के रूप में रखना और अपने कलेक्शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया मौका है।
8: किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं अपने घर ले जाने हैं तो ये सबसे बेस्ट मौका है। हर साल 7 सालों से इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके का ऑक्शन जो है वो किया जाता है। उनके जन्मदिन के समय जो है इस तरीके के ऑक्शन को जो है वो लगाया जाता है और उसमें हर एक गिफ्ट को यहाँ पर रखा जाता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सास बहु और बेटियां में आज होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: बंद हो जाए इंजन, फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले। सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
4: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड समेत 27 मेडल्स। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। तूतुकुड़ी में पुरातासी की दूसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास का आगाज, लगभग 40 देशों की वायुसेनाएं मिलकर करेंगी एयर एक्सरसाइज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन की बम्पर ओपनिंग, बरसी छठी मैया की कृपा, पहले ही दिन किया 9.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
4: महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हराकर अपने नाम किया मुकाबला। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में भारत का यह 4th मेडल, इस एशियन गेम्स में देश की झोली में आया 3rd गोल्ड मेडल। मिक्स डबल्स स्क्वाश में भी देश को मिला मेडल, तो वहीं चुनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने जुताया ब्रॉन्ज मेडल। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर मेडल, विमेन्स सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में आज भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर पर सबकी नजर टिकी हुई है, गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे तूर, एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड। एशियन गेम्स में आज सिल्वर मेडल से हुई थी भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाल ने जीता मेडल। उन्होंने 2:11:37 का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है, बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा, इस इवेंट में 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में भारत को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल, महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिकड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत, 1763 पॉइंट्स अपने नाम किए। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई हुई, जुहू चौपाटी पर गणपति प्रतिमा विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति का विसर्जन हुआ, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बापा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी इस मुहिम में शामिल हुए, दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के एजिया लिज मिजो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवान राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन, इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन, 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु दारा सिंह नजर आएंगे, अवतार गिल, मेघनाद और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखी थी ये रामलीला, इस साल भी सुंदर सेट और नई तकनीक के जरिए नए रूप में दिखाया जाएगा त्रेता युग। आज से पितृपक्ष, पितरों के तर्पण का पर्व है, 10 अक्टूबर तक चलेगा महालेपक्ष, सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज हुआ, दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध, इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा, तर्पण पिंड दान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का किया जाता है श्राद्ध, पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: सास बहू और बेटिया में आज होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है। ये इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले। सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड मेडल समेत 27 मेडल्स। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के एजियल इज मेजो, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। थुतुकुड़ी में पुरातासी के दूसरे शनिवार पर श्री वैकुंठ पति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, लगभग 40 देशों की वायु सेनाएं मिलकर एयर एक्सरसाइज करेंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया द वन की बम्पर ओपनिंग, बरसी छठी मैया की कृपा, पहले ही दिन किया 9.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
6: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, अनुपमा संग होगा हादसा, आरवी बनेगा रक्षक। घर से भागेगी मायरा। दमानीज और पोदार्स के बीच होगी झड़प। अपराजिता के सर चढ़कर बोलेगी प्यार की दीवानगी, रक्षित को होगी हिचक।

0: भरपूर पावे।
1: और साथ ही करेंगे मुलाकात गुम हुई यादें की आई साहिब यानी कि उषा बचानी से, जो योग से रखती हैं अपने आप को सेहतमंद और बताएंगी कई सारे टिप्स भी सिर्फ सांस बहू और बिटिया में।

देशभर में गणपति उत्सव की धूम के बाद आखिरकार अब बाप्पा की विदाई हो चुकी है। ऐसे में कई सीरियल के सेट पर हुई 11 दिन के बाप्पा की विदाई, जहां पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से पहले बप्पा की आरती हुई और फिर भारी मन से हुई उनकी विदाई। तो चलिए हमारे साथ और शामिल हो जाते हैं इस गणपति विदाई में।

0: बाप्पा आए तो रौनक छाई। दर्शन हर चेहरे पर मुस्कान आई। भक्ति में बीते 11 दिन।
1: भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे।
0: विदाई की घड़ी में हुई आंखें नम।
1: गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव।
0: आस्था में जुड़े हाथ, आंखों ने लगाई आस।
1: तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव।
0: और दिल से निकली बस यही आवाज, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। 11 दिन रही गणेशोत्सव की धूम। हर जगह पर सुनाई दिए मंजीरे, बजे ढोल, बजी घंटियां और सुर से सुर मिलाकर हुई बाप्पा की आरती। लेकिन अब बारी है बाप्पा के घर जाने की। ऐसे में सीरियल अनुपमा का सेट हो या फिर हो ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, आज दोनों ही सेट पर सभी के दिलों में भक्ति छाई हुई है। सीरियल से जुड़े कलाकार हो या फिर वो क्रू मेंबर्स, हर कोई नजर आ रहा है साथ में बाप्पा की आखिरी आरती में शामिल होने के लिए। इतना ही नहीं, सेट पर तो नजर आ रहे हैं सीरियल के प्रोड्यूसर राजन शाही भी, जो पापा की विदाई में पूरे भक्ति भाव से पहुंचे हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहां पर विराजे हैं एक नहीं बल्कि दो दो बप्पा। एक है अनुपमा के परिवार के और दूसरे है राही के परिवार के। ऐसे में दोनों को एक ही जगह पर बिठाया है और देखिए कैसे दोनों परिवार पूरे क्रू मेंबर और प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ मिलकर पहुंच गए हैं बप्पा की आरती उतारने के लिए। एक एक कर सभी ने बप्पा की आरती उतारी। किसी के चेहरे पर भक्ति है तो किसी के दिल में बस एक ही कामना, बप्पा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।

0: एक एक कर सभी ने पापा की आरती तो उतारी, लेकिन सबसे ज्यादा जोश में नजर आई है अनुपमा। जरा देखिए, उन्होंने तो पापा का जयकारा लगाना शुरू कर दिया, वो भी पूरे जोरों शोरों से पूरी टीम के साथ। जयकारा लगाने के बाद जिस आसन पर बप्पा को बिठाया है, उस आसन पर सभी ने मिलकर फूल बरसाए और बप्पा का आसन हिलाया ताकि बप्पा उनके साथ चल पड़े अपने घर जाने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे दोनों बप्पा तैयार हो गए हैं। एक तरफ अनुपमा प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ मिलकर अपने बप्पा को विदा करने के लिए चल पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम भी अपनी कास्टिंग क्रू के साथ अपने बप्पा को अपने साथ में लिए जा रहे हैं। फिर बारी आई बप्पा के विसर्जन की। ऐसे में विसर्जन से पहले पूरी टीम ने मिलकर बप्पा की आरती फिर से उतारी और आखिरी बार आरती उतारने के लिए अनुपमा ने थाम लिया माइक और देखिए कैसे पूरे श्रद्धा भाव से उन्होंने अपने सुर छेड़े और पूरी टीम शामिल हो गई बप्पा की आरती में।
1: Yeah.

0: Dan Pati Bapa.
1: Goya.
0: Dan Murti.
1: Goya.
0: Dan Pati Bapa.
2: Mobile.
1: Goya.
0: Bangal Murti.
1: Goya.
0: Ganpati Bappa.
1: Goya.
0: Bangal Murti.
1: Goya.
3: भैया ये पीछे पकड़ लो.
4: नहीं यार, एक तो 10 दिन जो पापा रहे.
5: नहीं
4: नहीं, 10 डेज रहे तो एक इतना खूबसूरत माहौल, पॉजिटिविटी और जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है हमेशा हमारे यूनिट का और हमारे बेजुबान बेबीज को. तो मैं अपनी माँ जी दीपा शाही जी की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही पापा
2: घूमने के लिए
4: और इमोशन तो होते हैं बट अंदर फीलिंग है एंड जानते हैं, यकीन है कि पापा मतलब बाय बाय नहीं कर रहे थे, बस अगले साल वो आने वाले. तो इमोशनल है कि अभी कैसे नेक्स्ट क्या क्या और सबको तैयारी करनी है.
5: इंडिया रही पूरा
6: अपर्णा है, शी इज़ एचओडी ऑफ हेल्थ एंड अमर है प्रोडक्शन में. मैं कभी कभी होती हूँ तो भजन मंडली हमारी बहुत इंजॉय करती है और सभी लोग पूरी यूनिट आके मतलब ये सीरियसली
5: सबको
6: सारे लोग यहाँ पर भजन करते
5: हैं
6: अगले साल वापस हमारे पास आए अनुपमा में, रिश्ता में, शादी के फिल्म में, फिर से वापस. लेकिन जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर का बीबी चल
7: रहा. ऐसे जब भी फेस्टिवल्स होते हैं एक परिवार का प्यार दिखता है, सिर्फ कहने के लिए डीकेपी परिवार नहीं है. जब ऐसे साथ में फेस्टिवल मनाते हैं तो वो दिखता है कि कितना सब में प्यार और सब में जुटता है. और पापा तो हमेशा हम सबके साथ ही हैं. वो तो सिर्फ ये कहने की बात है कि 12 दिन के लिए आए और चले गए, वो फिर से आते ही रहेंगे और

भाई बप्पा की आरती तो उतारी जा रही है, लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे सभी में भक्ति का जोश बढ़ता चला गया और देखिए कैसे सभी एक साथ सुर से सुर मिलाने लग गए।

भाई आरती उतारने के बाद सभी ने आरती ली और फिर यहाँ पर भी प्रोड्यूसर राजन शाही ने अपने क्रू मेंबर के साथ बप्पा के आसन को हिलाया ताकि बप्पा इनके साथ जाने के लिए मान जाएं। और देखिए कैसे ना सिर्फ राजन शाही ने माथा टेक कर बप्पा का आशीर्वाद लिया बल्कि बप्पा को उठा लिया, साथ दिया। अरमान और अभीरा ने भी और तीनों चल दिए बप्पा को लेकर उनके घर की ओर विसर्जित करने के लिए।

वैसे 11 दिन के पापा तो नील नितिन मुकेश के घर पर भी पधारे हैं। ऐसे में आज उनका विसर्जन है, इसीलिए पूरा परिवार शामिल हो गया है पापा की आरती में। नील के पापा नितिन मुकेश अपनी बीवी के साथ मिलकर पापा की आरती उतार रहे हैं, उन्हें भोग चढ़ा रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और तो और इसी धन्यवाद में पूरा परिवार भी पापा का शुक्रगुजार है।

0: रुपई बापा के जाने से पहले सभी लोगों ने हाथ जोड़कर बापा का धन्यवाद तो किया ही, साथ ही आस लगाई है कि अगले साल बापा फिर से आ जाएं।
1: मैंने 33 साल एक ही बात कही है कि बापा आते हैं तो मुझे एक तो हमारे घर में नील की मम्मी और मैं बापा को देखते हैं अपने भगवान तो हैं ही, मगर हमारे परिवार के सदस्य हमारे बच्चे जैसे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नील का भाई, कोई नील का छोटा भाई विदेश पढ़ रहा हो और साल में सिर्फ 10 दिन के लिए वापस आया है हमारे साथ, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उत्सुकता होती है और कितनी खुशी होती है एक बच्चे के वापस आने से। और फिर मन चाहता है कि इनको छोड़ो ही ना, जाने ही ना दो, मगर जाते हैं सिर्फ वापस आने के लिए। और जाते हैं तो हम सबको आशीर्वाद और बहुत बहुत अपना स्नेह देकर जाते हैं।
2: किस्म का स्नेह है उनके लिए, इतना प्यार है, इतनी इज्जत है, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली, मैं तो कभी पापा को ये भी नहीं कहता कि ये इनकी मूर्ति है या कुछ। हमारे लिए जैसे पापा ने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, और तो जब भी पापा आते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवार का एक कोई सदस्य आया है। इनफैक्ट जब भी हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो भी हमेशा कहते हैं कि आपके गणपति पापा जो हैं, वो इट्स नॉट, ही इज़ नॉट गिमिकी, यू नो, ही इज़ लाइक अ ह्यूमन ओनली, ही लुक्स लाइक एज इफ ही इज़ वन ऑफ द मुकेश फैमिली मेम्बर्स। एंड आई थिंक वो, जैसे आप जानते हैं कि 33 साल हो गए, बट ऑफ कोर्स बड़े छोटे से रूप से आए थे और हर साल छोटे छोटे रूप से बड़े बड़े होते गए, और अब 4 फीट के हो गए हैं। अब हमने कहा कि कुछ सालों से कि अब यही मूर्ति हर साल यहाँ पे आएगी।

भाई बप्पा की विदाई की इस घड़ी में सबकी आंखें भले ही नम थी, लेकिन दिल में विश्वास था कि बप्पा भले ही आज विदा हो रहे हो, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ छोड़कर जा रहे हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

सीरियल मन अति सुंदर में दादी के षड्यंत्र के चलते राध्या आश्रम में फंस चुकी है और वो चाहकर भी उस आश्रम से बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसे में गणपति कैसे करते हैं राध्या की मदद और वो कैसे दादी के चक्रव्यूह से बाहर आती है, देखना दिलचस्प होगा।

0: अब कैसे होगा राध्या और प्रथम का मिलन? दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में जिस आश्रम में राध्या गई है गुरु मंत्र लेने के लिए, उस आश्रम में राध्या बुरी तरह फंस गई है क्योंकि एक औरत उस पर लगातार निगरानी रखे हुए है। ऐसे में गुरुजी आश्रम में पहुंचते हैं क्योंकि आश्रम में गणपति बप्पा पधारे हैं। इसलिए गुरुजी अपने सभी भक्तों के साथ बप्पा की आरती उतार रहे हैं और राध्या आगे आने की कोशिश कर रही है ताकि गुरुजी से मिल सके, लेकिन कुछ लोग उसे रोकने की फिराक में हैं। ऐसे में जैसे ही गणपति बप्पा की आरती खत्म होती है तो राध्या जैसे तैसे कर आगे बढ़ती तो है गुरुजी से बात करने के लिए, लेकिन आश्रम की एक औरत उसे आकर रोक लेती है।
1: महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे।
2: धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
3: राध्या पहली बार बेचारी बिना मकसद आई है। उनको दरअसल दादी ने भेजा था कि एक आश्रम में वहाँ चले जाओ, गुरु जी की सेवा कर लो और उनसे गुरु मंत्र ले आओ तो घर पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर राध्या यहाँ पे आके फंस गई है। दादी चाह रही है कि राध्या जितना टाइम हो सके आश्रम में ही रुके ताकि अंतरा और प्रथम की नज़दीकियाँ बढ़ सकें, उनको वो साथ में करते। तो बस राध्या कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके आश्रम से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसके भी घर पे गणपति आया हुआ है, उसे वहाँ जाना है। फैमिली में किसी को एग्जैक्टली बता कर नहीं आई है, उसके पास उसका फ़ोन नहीं है और आश्रम उसे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कितने टाइम रुकना है, कितनी सेवा करनी पड़ती है। इनका कहना है कि जब तक गुरुजी तुम्हें बोल नहीं देंगे, जब तक तुम पूरी तरह से खुद को समर्पित नहीं कर दोगी, तुम आश्रम छोड़ के नहीं जा सकते। तो राध्या थोड़ी सी परेशान है कि उसे तो अपने घर जाना है, तो उसको अभी पड़ी नहीं है ना गुरुजी की पड़ी है ना आश्रम की पड़ी है। तो बस वो अलग अलग रूप ले रही हैं, कचरे वाली बन गई हैं, कभी सेवक बन के कुर्ता पजामा पहन के घूम रही हैं कि जस्ट सम हाउ आश्रम से बाहर निकल लें और अपने प्रथम जी के पास वापस जा सकें।
0: भाई उस औरत ने तो राध्या को इस तरह से काम दे दिए कि राध्या उस औरत पर शक ही नहीं कर पाई कि उसे जानबूझकर आश्रम से बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ही उस औरत को राध्या के बाहर जाने की खबर मिली, वैसे ही उस औरत ने अगले ही दिन राध्या को खरी खोटी सुनानी चाही और फिर से भक्ति में डूब जाने को कहा, क्योंकि गुरु मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और राध्या उसे तो गुरु मंत्र चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसे अपने घर में शांति जो लानी है।

लेकिन फिर भी राधे अपने प्रथम से मिलने की पूरी जोर कोशिश कर रही है। तभी तो अगले ही दिन जब आश्रम के गणपति बप्पा का विसर्जन होने चला तो राधिया भी प्रसाद लेकर सभी भक्तों के साथ जाने की कोशिश कर रही है कि उसी बीच वो औरत फिर से आ जाती है और राधिया को रोक लेती है।

0: दरअसल है ये नॉर्मली आश्रम, पर यहाँ पे दादी ने किसी को तो पैसे दे के रखे कि कैसे भी करके राध्या को बाहर मत निकलने दो, उसे रोक के रखो ताकि वो ज़्यादा टाइम तक अंदर ही रहे। तो राध्या तो कैसे कैसे करके विसर्जन के ड्यूरिंग यहाँ से भाग जाएगी, तो फिर राध्या को तो पता नहीं चल पाएगा कि ये सब प्लानिंग दादी की है। बट गुड पॉइंट ये है कि अपने घर के विसर्जन से पहले राध्या गणपति में पहुँच जाएंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है।
1: बेचारी राधिया आश्रम में बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि उस औरत ने दो गार्ड भी रख दिए हैं और उनको आदेश दे दिया है कि राधिया आश्रम से बाहर जा ना पाए। ऐसे में राधिया दूर खड़ी बप्पा को जाते हुए देख रही है, लेकिन परेशान भी हो रही है। इसी बीच कहानी में आएगा ऐसा ट्विस्ट कि राधिया को जाने का मौका भी मिल जाएगा, और इस मौके पर दादी उस औरत को फोन लगा कर खरी खोटी सुनाएगी।
2: मेरे पोते ने अभी तुम्हारे आश्रम में फोन किया था और उसको किसी ने बताया कि वो 6 बजे आकर अपनी पत्नी से मिल सकता है।
3: जी मैंने ही कहा था उसे।
2: अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब है हा? अरे मैं तुम्हारे आश्रम में इतना सारा दान इसलिए दे रही हूँ ताकि वो राधा से हमारे परिवार का कुछ संपर्क न हो पाए।
3: आपके पोते ने पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। देखिए अगर आश्रम में पुलिस आएगी तो हमारे गुरु जी का नाम खराब होगा। राध्या को रोकने की जिम्मेदारी मेरी है, पर अपने पोते को रोकने की कोशिश तो आप खुद करनी होगी ना।
1: अब देखना होगा कि यहाँ ये औरत राध्या को कैसे रोकेगी और वहाँ दादी प्रथम को राध्या से मिलने के लिए क्या प्लानिंग करेगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: चलते हैं सीरियल गुम हुई यादें में। आई साहिब का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उषा बचानी के घर। उषा को आप कई सीरियल्स और फिल्मों में देख चुके हैं, तो चलिए करते हैं उषा संग एक घर वाला डे आउट।

0: जो
1: ये है उषा बचानी, जिन्हें आप कुंडली भाग्य, चंद्रकांता और कई सीरियल्स में देख चुके हैं। इसके अलावा ये नजर आ चुकी हैं कई फिल्मों में, जिसमें से खास है दुल्हन हम ले जाएंगे। और फिलहाल उषा नजर आ रही हैं सोनी सब के सीरियल हुई गुम यादें में। और आज हम उषा संग पूरा एक दिन बिताएंगे, पर आज है छुट्टी वाला दिन जो वो घर पर बिता रही हैं, और साथ है सास बहू और बेटियां। आज हम उषा के बारे में जानेंगे कई सारी बातें, देखेंगे उनका आर्टिस्टिक टैलेंट, करेंगे उनके घर की सैर, उषा बनाएंगी स्पेशल वाली चाय। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं उषा के घर करने इस फन डे आउट की शुरुआत।
2: हाय, आई एम उषा बचानी। आज आप लोग मेरे घर आए हैं तो मैं आप लोगों को मेरे घर का एक टूर देना चाहती हूँ। एक एक चीज मैंने बहुत प्यार से लाई हुई है और बनाई हुई है।
1: तो भाई उषा सबसे पहले करवा रही हैं अपने होम स्वीट होम की सैर। उषा ने अपने घर को बड़े ही प्यार से सजाया है और इसमें है कई सारी उषा की पसंदीदा चीजें जिससे उन्होंने घर की सजावट की है। तो चलिए कर लेते हैं उषा संग इनके इस आशियाने की सैर।
2: So we can start here. This is my Guruji. And my Shivji. मैंने बहुत सारे उल्लू रखे हुए हैं घर पे, मुझे बहुत पसंद है उन्हें रखना। एंड दे से इट्स सपोज्ड टू बी वेरी लकी उल्लू रखना, तो मैंने टर्की से बहुत सारे उल्लू लाए हुए हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी का वाहन है ना, तो आई कीप इट। दैट्स माय सिस्टर एंड मी, वी वर इन कैपेडोकिया लास्ट ईयर। ये मेरे फैमिली है, या दैट्स माय यंगेस्ट सिस्टर, दिस इज माय अदर सिस्टर, दीज आर आवर डॉग फैमिली डॉग्स, दिस इज माय डैड, माय ब्रदर, एंड दिस इज द ओनली चाइल्ड इन आवर फैमिली, माय ब्रदर्स डॉटर। रेजिन का मैं बहुत सारा काम करती हूँ, मुझे है ना एक जगह बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लाइक आई ट्राई टू रीडेकोरेट द हाउस और मूव समथिंग फ्रॉम हियर देयर। आई एम नॉट द काइंड, मैं वो है ना एक जगह बैठ के पूरा दिन टीवी देखो वाली टाइप्स नहीं हूँ, तो मैं, और मुझे ओसीडी प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ। दिस इज माई फिश टैंक, और ये मेरा डॉगी और मैं, हाँ छोटा बेबी उल्लू। ये मेरा मंदिर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोज प्रे करती हूँ एंड दिया जलाती हूँ। एंड दिस इज माय स्मॉल अगेन कॉर्नर, अगेन यू सी आउल फैमिली। मनी प्लांट, दैट्स अ रबर प्लांट। आपने घर तो देख लिया, आप मेरे प्लांट्स को मुझे देखना होता है, तो मैं उन्हें थोड़ा पानी दे दूं।

प्लांट्स की तो देखभाल हो गई, अब थोड़ी सी पूजा कर लें। शिव जी तो मैं प्यार करती हूँ उनसे, हनुमान जी मेरे भाई है, मैंने राखी भी बांधी हुई है उनको।

0: तो भाई उषा ने अपना घर भी दिखाया, प्लांट्स को पानी भी दिया और भगवान की पूजा भी कर ली। अब बारी मेडिटेशन की, जिससे रहता है उषा का माइंड एकदम शांत और वो रहती है सॉर्टेड।
1: पूजा तो हो गई, अब थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। मेरी आदत है, मैं हर चीज के लिए ना भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। यू शुड ऑलवेज थैंक फॉर व्हाट एवर गॉड हैज गिवन यू। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, ये सोचिए आपके पास क्या क्या है। हाँ जी, 2017 से मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए हैं। मैं एक्चुअली, जब मुझे मेरी फ्रेंड ले गई थी, माय फ्रेंड नीलू कोहली, वो ले गई थी मुझे गुरुजी के मंदिर। मैं बड़े ओपन माइंड के साथ गई थी कि चलो, यू नो, इतना बोल रही है, लेट्स जस्ट गो। बट मेरे साथ जो जो हुआ है, इट इज़ अमेजिंग। आई मीन, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। गुरुजी इज माय लाइफ, मेरे भाई, मेरे डैड, सब कुछ हैं गुरुजी। अभी 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर।

0: एक्टिंग के साथ साथ एक और उषा का हिडन टैलेंट है, वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेस वुमन भी है। अपने हाथों से वो बनाती हैं ये खूबसूरत चीजें जो बनी है रेजिन से। तो आइए इस बारे में कुछ और जानते हैं खुद उषा से कि कैसे वो ये आर्टिस्टिक चीजें बनाती है।
1: मेरी एक्टिंग के लिए तो आप लोग मुझे जानते हैं, बट आज मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ जिसके लिए शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, रेजिन प्रोडक्ट्स। लास्ट 1.5 ईयर बैक मैंने ये शुरू किया था बिजनेस, और मैं ऑर्डर्स पे चीज़ें बनाती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं फ्री नहीं बैठ सकती, तो ये सब मैं बनाती रहती हूँ ऑर्डर्स। दिस इज अ कार डैशबोर्ड गणपति जी, नॉर्मली है ना छत्र नहीं होता, मैंने छत्र भी दिया हुआ है ताकि उनको धूप ना लगे ना। अल्फाबेट की चेन्स है, कैंडल स्टैंड है, लगेज टैग्स बनाए हैं। दिस इज जस्ट टू कीप योर स्मॉल थिंग्स। ये जो बेड साइड पे लेडीज अपनी ज्वेलरी उतार के रखती हैं उसके लिए। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं यहाँ पे चीजें बनाती रहती हूँ, ऑर्डर्स हो या ना हो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, बिकॉज मैं एग्जीबिशंस भी होल्ड करती हूँ। सो मुझे है ना ऐसे पड़े रह के टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, मैं पूरे दिन फुर्तीली रहती हूँ। दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन। सी वॉट हैड हैपेंड कि मैं थोड़ा सोच रही थी बहुत टाइम से कि एक्टिंग के सिवा कुछ और करूं, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं एक्टिंग में। जब हम लोग मैंने शुरू किया था तब बहुत लिमिटेड लोग थे और कोई भी नेगेटिव नहीं करना चाहता था। आई वॉज द ओनली वन यूज टू डू नेगेटिव दैट टाइम। तो मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी, तो मैं टर्की से आई मेरी बहन के साथ, हम लोग हॉलीडे के लिए गए थे कुंडली भाग्य। साढ़े सात साल बाद कुंडली भाग्य बंद हुआ, तो हमने मैंने बहुत सारी छुट्टियां मना ली। मैं अयोध्या गई, प्रयागराज गई, काशी गई, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। फिर टर्की गई विथ माई सिस्टर फॉर अ मंथ। जब वापस आई तो मैंने सोचा कुछ साइड में शुरू करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो पहले मैंने टैरो स्टार्ट किया लर्निंग करना, सारा एडवांस कोर्सेज एन ऑल हो गए, बट मुझे टैरो समझ में आ रहा था बट इतना नहीं आ रहा था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब मुझे बहुत लोगों ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम कार्ड्स निकाल के चैट जीपीटी पे देख के बता देना। मैंने कहा ऐसा काम मैं नहीं कर सकती, आई विल नेवर चीट एनी पार्टी। फिर मैंने वास्तु सीखा, तो वास्तु में वो सारे जो इतने सारे डायरेक्शंस हैं जो आजकल मॉडर्न वास्तु हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वैदिक वास्तु सीखा विच इज़ वेरी गुड, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो बट मैंने वास्तु एज अ प्रोफेशनल मैं आगे नहीं ले गई उसे, मैं फ्रेंड्स के घर पे या फैमिली के वहाँ पे कर लेती हूँ वास्तु। मुझे एक नेम प्लेट बहुत अच्छी लगी इंस्टा पे, तब मुझे पता नहीं था रेजिन क्या होता है, बिकॉज मैं टर्की से भी कीचेन्स लाई थी, मुझे पता नहीं था ये रेजिन है। तो मैंने वो लेडी को कांटेक्ट किया कि भाई ये नेम प्लेट कितने की, तो उसने बहुत ज़्यादा प्राइस बोली। तो मैं शॉक में आ गई कि ये इतनी प्राइस का क्या है। तो आई आस्क्ड हर कि क्या है मटेरियल, शी सेड रेजिन। मैंने गूगल सर्च करना शुरू किया कि व्हाट इज़ रेजिन, देन आई रियलाइज कि रेजिन एक लिक्विड होता है विथ हार्डनर एंड रेजिन, उसके साथ आप कुछ भी बना सकते हो। और मैं पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, मेरे सारे लुक्स इन टेलीविजन मैंने खुद क्रिएटिव्स के साथ डिसाइड किया है, आई एम वेरी फिनिकी अबाउट माई लुक। तो मैंने कहा चलो ये स्टार्ट करते हैं, तो मैं रेजिन सीखने लग गई एंड वहाँ से फिर मैंने अपना बिजनेस खोला। रेजिन को है ना एक्चुअली मिक्स करना पड़ता है, वे करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, तो उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव मेड। मुझे है ना बहुत सारे DMs आते हैं इंस्टा पे कि चीज़ें इतनी महंगी क्यों हैं, बिकॉज मैं रेजिन जो यूज़ करती हूँ ना सबसे महंगा रेजिन यूज़ करती हूँ, जिसमें येलो ही नहीं होता, जिसमें बबल्स नहीं आते, और एक एक आर्टिकल को बनाने में, एक एक प्रोडक्ट को बनाने में 5-6 5 से 7 दिन लगते हैं। सो समटाइम्स रेजिन 24 घंटे में ड्राई होता है, समटाइम्स 72 आवर्स में. नाउ दिस थिंग इट्स इन अ मोल्ड, बट पहले आपको एक रेजिन का पो करना पड़ता है, उसके बाद उसमें फ्लास्क डालने पड़ते हैं, उसके बाद आपको नाम लगाने पड़ते हैं, उसके बाद रेजिन पो करना पड़ता है, फिर सैंडिंग करनी पड़ती है, फिर से रेजिन पो करना पड़ता है. तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसीजर एंड बहुत मेहनत लगती है, और डिज़ाइंस भी आपको बहुत एक्सक्लूसिव सोचने होते हैं बिकॉज इतनी सारी कॉम्पिटिशन है. सो ये मुझे 5 दिन लगे थे बनाने में. ऑल दीज लगेज टैग्स, ये मेरा है, यूबी उषा बच्चानी. नॉर्मली लोगों के क्या होता है, रिमोट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आप एक ही जगह पे रख सकते हो. एंड दिस इज माई फेवरेट शिव जी, एंड दीज आर ग्लो इन द डार्क स्टोन्स.
2: ये भी रहते
1: हैं? हाँ. एंड ये टेबल, ये भी मेरे एग्जिबिशन पे बहुत एक मैंने सेल किया हुआ है. ये पूरा मैंने अंडर वाटर थीम दिया हुआ है. Like it has mermaids, it has shells, it has turtles, there are turtles there. इसको बनाने में मुझे 15 दिन लगे थे. आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी कॉम्पिटिशन हो गई है एंड लोग हैं ना, आई मीन आई ऑलवेज से जिसकी जितनी भूख, बट कम पैसों में भी काम कर लेते हैं. देर आर पीपल हु डोंट नो एक्टिंग, दे कांट स्पीक हिंदी, वो भी काम कर रहे हैं. तो आजकल आई थिंक यही ट्रेंड है कि भाई जो काम पैसे लेता है उसे ले लो. तो आपको डेफिनेटली एक साइड में कुछ ऑप्शन रखना चाहिए, नहीं तो आप पागल हो जाओगे घर पे पड़े पड़े.
0: तो देखा आपने कितनी टैलेंटेड है उषा. वैसे उषा ने अपने बाकी के घर की चीजें भी दिखाई, और खासकर अपना कमरा जिसे उन्होंने बड़े प्यार से सजाया है.
1: अच्छा, मुझे है ना चीजें कलेक्ट करने का इतना ज्यादा शौक है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. मेरे फ्रेंड्स मुझसे नफरत करते, मैं उनके लिए नहीं लाई. ये मैं टर्की से हाथ में उड़ा के लाई थी, 3. There's one in the bedroom, एक मैंने अपनी बहन को प्रेजेंट किया, एक थे. ये आपने मेरा लिविंग रूम तो देख लिया, अब अंदर चलते हैं. कम ऑन. ये है मेरा बेडरूम और ये है दूसरी लाइट. मुझे OTT देखना बहुत अच्छा लगता है, तो शाम का वक्त इज माई टाइम. आफ्टर 8 o'clock आई डोंट डू एनी वर्क. मैं खाना खा लेती हूँ, आई एम ऑन इंटरमिटेंट, सो मैं 7:30-8 तक खाना खा लेती हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई सीरीज देखती हूँ. ये है आई थिंक 2010 की. मुझे बहुत शौक था अलग अलग यू नो टाइप्स के पिक्चर्स निकालवाने का. तो एक दिन मैं शूटिंग पे ही थी, तो मैंने किसी को कहा, उसने काइंड ऑफ छोटा सा पोर्टफोलियो शूट कर दिया मेरा. ये टर्की है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन दिस इंटायर वर्ल्ड, आई वुड लव टू मूव देयर. ये भी उसी दिन का है जिस दिन मैंने वो पिक्चर शूट किया था. एंड दिस इज टर्की अगेन. मैं तो कोई मुझे रिश्ता मिल जाए, मैं तो शादी करके शिफ्ट हो जाऊँ टर्की. आई लव इट सो मच. एंड या आई हैव टू शो यू दिस. दिस इज अनदर थिंग आई बॉट फ्रॉम टर्की. ये सारी चीज़ें है ना ब्रेकेबल थी, तो मैं सब कुछ फ्लाइट में अपने हाथों में ले आई थी, सो दैट इट डजंट ब्रेक. ये भी मैंने रेजिन का क्लॉक बनाया हुआ है मेरे बेडरूम के लिए, मैचिंग द कलर्स. मैं जब लोखंड वाला में रहती थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम था कि यू नो सारी बिल्डिंग्स ओवरलुक करती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट डैम स्ट्रेस्ड आउट कि आप कंफर्टेबली अपने घर में भी नहीं बैठ सकते हो. तो जब मैं ये घर ढूंढ रही थी, घर खरीदने का ढूंढ रही थी, तो आई बॉट दिस हाउस बिकॉज इसका व्यू कमाल का है. यू कैन, देर आर नो ओवरलुकिंग बिल्डिंग्स, आप शॉर्ट्स में भी घूम सकते हो घर में. तो एंड यहाँ से मेट्रो दिखता है, सो दैट इज़ वन वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस हाउस, that no overlooking buildings. ये भी मैंने रेजिन का बनाया है. ये बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि उन्हें भी चाहिए, बट मैं बनाती नहीं हूँ बिकॉज इट टुक मी नियरली अ मंथ टू मेक दिस.
0: तो जैसे कि उषा कई फिल्मों और सीरियल्स में नजर आ चुकी है। तो आइए उषा से ही जानते हैं कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आई, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वो यहाँ तक पहुँची है, यानी कि उषा के करियर की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था, मैंने वहाँ पे स्कूलिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद हम लोग बॉम्बे आ गए थे बिकॉज मेरे डैड NRI थे, ही हैड हिज बिजनेस इन द US एंड हांगकांग। तो जब हम यहाँ शिफ्ट किया, मैं कॉलेज कर रही थी MMK बांद्रा। मुझे है ना हमेशा से एयर होस्टेस बनना था। पहले तो मेरा एम्बिशन था जब मैं 14-15 साल की थी कि मैं 20 साल में शादी करूंगी, मम्मी की तरह 21 साल में बच्चे पैदा करना शुरू कर दूंगी, 4 बच्चे पैदा करूंगी मॉम की तरह, एंड रेखा की तरह रेडी होके रुकूंगी, मेरे पति घर आएंगे ऐसे गजरे वजरे लगा के, सिंदूर लगा के। तो ये मेरा एम्बिशन था, नॉट माई ड्रीम, इट वॉज माई एम्बिशन टू डू दिस। उसके बाद आई थॉट कि आई विल बिकम एन एयर होस्टेस। फिर मैंने सोचा डैड अलाउ नहीं करेंगे, माई फैमिली वॉज वेरी कंजर्वेटिव, माई डैड was very conservative and my grandparents. तो then I thought chartered accountancy करती हूँ, I'll become a CA. Dad के साथ abroad चली जाऊँगी, बहुत पैसे कमाऊँगी। Dad ने अलाव नहीं किया because सिंधी लड़के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए मेरा तो मैं पैदा हुई थी टू मैरी, सो इसीलिए ही didn't let me study further. Anyway, मैं कॉलेज में थी, मैंने एक दिन एक लेक्चर मिस किया। मैं बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ एंड डिस्टिंक्शन एंड फर्स्ट क्लास में हमेशा पास होती थी। पहली बार मैंने लेक्चर मिस किया, हम लिंकिंग रोड पे वॉक कर रहे थे तो किसी ने मुझे रोका और बोला आपको एड की ऑडिशन करनी है, आप आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग? तो मैंने कहा आई सेड नो नो माई फादर वोंट अलाउ। तो मेरी फ्रेंड जो साथ में थी उसने बोला कोशिश कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, अंकल इज़ नॉट इन टाउन। माई डैड यूज़ टू कम हियर 9 to 10 मंथ्स इन अ ईयर, यूज़ टू स्टे अब्रॉड, 2 महीने के लिए वो इंडिया आते थे हर साल। तो मम्मी वॉज ओके, तो मैं गई ऑडिशन करने। नेक्स्ट डे मुझे वो मफतलाल का एड मिल गया, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर, मुझे 60,000 रुपये मिले थे। नासिर अब्दुल्ला के साथ मैंने वो ऐड किया था एज द मेन मॉडल। मैं पहले काम किया, मैं गाड़ी जाके खरीदा, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मैंने, थोड़े पैसों का पोर्टफोलियो कराया, मैंने कहा लेट्स गिव इट अ शॉट। बट वो फोटोग्राफ्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज द गाय हु वाज शूटिंग द प्रेस ऑफ मफतलाल, वो मुझे रेगुलरली राहुल पटेल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर वर्क। तो डिम्पल कपाडिया की तरह आपको क्लेफ्ट भी है, आपके बाल भी वैसे हैं, आप चिजल्ड, तभी बहुत पतली भी थी ना, चिजल्ड हो, तो यू लुक सो मच लाइक डिम्पल। तो आई सेड मुझे हिंदी नहीं आती बोलनी बिकॉज हम हिंदी बोलते ही नहीं थे इन कलकत्ता, वी यूज़ टू ईदर स्पीक बंगाली और इंग्लिश, घर पे इट वॉज सिंधी और इंग्लिश। तो हिंदी बोलने का ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं आती थी, बट वो जैसे बंगालीज बोलते हैं वैसी वाली हिंदी आती थी, एंड ऊपर से सिंधी हूँ तो नुकते नहीं आते थे। तो शी सेड नो प्रॉब्लम, मैंने कहा मुझे नहीं आता हिंदी, शी सेड नो प्रॉब्लम, आई विल कीप एन असिस्टेंट, ही विल कम एंड ट्रेन यू। तब तो वीकलीज होते थे, तो प्रोची का एक असिस्टेंट रोज घर आता था, वो मुझे डायलॉग सिखाता था, एंड आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर। देन वाइल आई वॉज डूइंग जाने कहा, आई वॉज फ्लडेड विथ ऑफर्स, मीन्स मुझे विश्वास नहीं होता था कि जैसे मना करो कि नहीं कर सकती, नहीं एडजस्ट करेंगे, नहीं ये करेंगे, बिकॉज तब सारी जितनी एक्ट्रेसेस बहुत कम थे हम लोग, तो एवरीबॉडी वांटेड टू डू लीड्स, यू नो, पॉजिटिव। आई वाज द ओनली वन हु वांटेड टू डू नेगेटिव लीड्स, सो आई वाज द मोस्ट बिजीएस्ट एक्टर। आई हैड डन सी हॉक्स, आई डिड सफर अपना अपना, आई डिड चैलेंज, आई डिड चंद्रकांत था, आई हैव नो वर्ड्स द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव डन। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, प्रोची ने जो मुझे शूट किया था, एंड आई शू लुक ऑल्सो वेरी नाइस, मैं बहुत पतली दुबली थी, मैं बहुत वर्कआउट करती थी। बट मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी जाने कहा में, तो मेरा आवाज़ बहुत हस्की है, तो मेरा साउंड रिकॉर्डिस्ट जो था वो मेरे को एक्टर को कहता रहता था, अमित बहल को, मैडम को बोलो आवाज़ कितना आदमी की तरह है, इतना अजीब साउंड करता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, फेमिनाइन कुछ सुनाई नहीं देता है। तो वो मुझे अमित आके बताता था, मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहता है वो वोकल एक्सरसाइज करो ये, आई हैव नेवर लर्नड एक्टिंग बाय द वे, मैंने अपने आप ही सब कुछ किया, तो ये एक्सरसाइज करो वो, मैं कुछ ध्यान नहीं देती थी, ऐसे डैम इट यार, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। देन आई बिकेम फेमस, देन सबको मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी लगने लगी कि वाह का कमाल की आवाज़ है। तो जब आप पॉपुलर हो जाते हो ना, तो आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी सडनली पॉजिटिव हो जाते हैं, सडनली आपकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं उनको। सो नाउ डेज, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई हैव ऑल्सो बीन कास्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ माई वॉइस. दीपक ने मुझे सडनली फोन किया एंड बोला कि तू करेगी क्या. मैंने कहा करूंगी, अगर डिसेंट होगा तो करूंगी. मैं चंद्रकांता की शूट कर रही थी, मैं वहां पे विश कन्या बनी हुई थी. तो मेरा गेटअप ऐसा था कि इधर स्नेक टैटूड, पेट में स्नेक टैटूड, हाथ पे टैटूड, बड़े नकली नाखून. तो मुझे कॉल आ गया कि आपको मीटिंग के लिए बुलाया जुहू. मैंने कहा मैं इतना सारा ये डायमंड्स लगा डायमंड्स, मैंने कहा इसको हटाने में 4 घंटे लगते थे रेडी होने में. मैंने कहा इसको हटा के कोई मीटिंग पे जाऊंगी तो नीरजा गुलेरी विल मर्डर मी. आई सर आई कांट कम फॉर अ मीटिंग, आई कैन पैक अप एंड कम. दे सर जस्ट सेंड अस योर पासपोर्ट कॉपी एंड आपके कुछ फोटोग्राफ्स. तो मैंने भेज दिए. शाम को मुझे कॉल आ गया कि आप अप्रूव सिलेक्ट हो गई. तो मैं सोचने लगी ये कैसा रद्दी रोल है यार. मीन्स ना कोई डायरेक्टर मिला ना प्रोड्यूसर मिला, ऐसी फोटो देख के मेरा वीजा भी आ गया, मैं अप्रूव भी हो गई. आई सर ये कुछ बकवास सा रोल होगा. तो मैंने गोवर्धन जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं मिलना चाहती हूँ डेविड जी से, मैं ऐसे ही कोई काम, मेरी पहली फिल्म है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं उठाना चाहती, पता चला बड़ी बेइज्जती हो जाए सीरियल में. आई वाज लाइक मेघा स्टार. तो मैं मुझे याद है मेरा पैकअप की बात, आई वेंट टू डेविड जीज हाउस, दे कॉल ही कॉल मी एट 10. अच्छा मैं ना बहुत डरती थी तो मैं अपने भाई को, मेरे बुआ के बेटे को, किसको ना किसको साथ में ले जाती थी कि पता नहीं क्या है. तो मैं गई तो डेविड जी बैठे थे. तो मैंने कहा, बोला हाँ सो यू वॉन्टेड टू मीट मी. उनकी वाइफ लाली भी थी, देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग शूट इन स्विट्जरलैंड. तो मैं बड़ी नर्वस थी तो मैंने कहा हाँ. कहता है व्हाट डू यू वॉन्ट टू नो. मैंने कहा सर मुझे पूछना था डायलॉग्स है फिल्म में. कहता है जितना तुम लोग टीवी में बोलते हो ना उतना बिल्कुल नहीं है. बट एक बात प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा शूट करूँगा ना कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, दुल्हन हम ले जाएंगे इसे.
0: तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी गर्मा गर्म चाय पीने की. वैसे आपको बता दे कि उषा अपने हाथों से चाय बनाती है और इनकी ये चाय स्पेशल वाली है. तो आइए देखते हैं इनकी वाली चाय की रेसिपी.
1: अच्छा लोग है ना नॉर्मल चाय बनाते हैं, मैं ये सारे मसाले डाल के बनाती हूँ और मुझे मेरे हाथों की चाय सबसे ज्यादा पसंद है. तो पहले मैंने डाला है सिनेमन पाउडर, दालचीनी, ये लौंग और इलायची का मिक्स है और मेरे सारे मसाले मेरी फ्रेंड लाती है कुर्ग से. एंड ये है ब्लैक पेपर. पुदीना के फ्रेश पत्ते एंड जिंजर पीस. हम डालेंगे चाय पत्ती. सुबह सुबह की चाय है और मैं मुझे ये बहुत पसंद है. जब भी मैं आउटडोर जाती हूँ ऐसी चाय नहीं मिलती है, बड़ा मिस करती हूँ अपनी चाय की.

0: अच्छा मैं चाय में ना शक्कर नहीं लेती हूँ, बट कलकत्ता की पैदाइश हूँ तो मिठाइयाँ बहुत सारी खाती हूँ, तो अवॉइड जहाँ कर सकती हूँ वहाँ करके।
1: तो भाई चाय भी पी ली, अब बारी इनके डांसिंग टैलेंट देखने की, और साथ ही वक्त हो गया है उषा को बाय बाय कहने का।

0: तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि यूं ही अलग अलग किरदारों से उषा अपने फैंस को हमेशा एंटरटेन करती रहे।
1: चलिए अब टाइम हो गया बाय बोलने का, लेकिन ये बाय हमेशा के लिए नहीं है, फिर जल्दी मिलेंगे किसी नए शो में किसी नए किरदार में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा जैसे इतने सालों तक आपने बना के रखा है। गॉड ब्लेस यू।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा कबीर के साथ घर से भाग चुकी है और कबीर की दमानी फैमिली मायरा के घर आकर हंगामा कर रही है। ऐसे में अभिरा अरमान संग घर वाले इस मुश्किल घड़ी से कैसे निपटते हैं, चलिए देखते हैं।
0: दमानी इस पर भड़का संजय। कबीर संग हुआ हादसा।

0: घर से भागी मायरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कबीर संग हादसा हो गया है और कबीर की माँ परेशान है। खैर कबीर की माँ तो कबीर को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएगी, लेकिन पोदार हाउस में कबीर संग हुए हादसे को लेकर बवाल मच गया है, क्योंकि कबीर को बचाते हुए अरमान घायल हुआ है। लेकिन घर आते ही उसने अभिरा को बताया कि मायरा उसकी एक नहीं सुन रही और वो जिद कर रही है कबीर से मिलने की। ऐसे में अभिरा अपनी ही बेटी पर नाराज है। भाई अरमान तो अभिरा को हिदायत देता है कि इसके बारे में मायरा से कोई बात ना करे, लेकिन अभिरा ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विद्या भी अभिरा को समझाने के लिए आती है, क्योंकि मायरा अब बड़ी हो चुकी है। ऐसे में उसे जितना रोका जाएगा वो उतना ही वही काम करेगी। और तो और इस पर दारिसा भी हामी भरती है।
1: वेल, नाराजगी इस बात पे है कि मायरू जो है वो टच से मस नहीं हो रही है। उसका जो इरादा है कबीर से शादी करने का, उस पर वो एकदम अटल है, और ये हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे समझाने की, लेकिन वही होता है ना कि 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े घर के जो भी कुछ बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, और वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर विद्या जो है, जो मायरू की दादी है, मेरा एक अलग सा बॉन्ड है उसके साथ। मैं पूरे परिवार को बोलती हूँ, हम सब अगर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसे कोसने लग जाएंगे, उसे ये बोलने लग जाएंगे तुम गलत कदम उठा रही हो और तुम ठीक नहीं कर रही हो, तो वो बागी भी बन सकती है और कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो मैं सबको समझाती हूँ कि हमें उसका साथ देना चाहिए, और साथ ये नहीं कि वो कभी से शादी कर ले, साथ इन द सेंस कि हमें उसे समझना चाहिए और उसे ऐसा लगना चाहिए कि कोई ना कोई तो है घर में जो मेरे साथ है।
0: खैर विद्या जो कहना चाहती है उसे कहीं ना कहीं अरमान अभिरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है मायरा ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो वो घर से भाग गई है और उसकी ये खबर सुनकर सभी घर वाले बेहद परेशान हो रहे हैं और उन्हें चिंता हो रही है कि आखिर मायरा कहाँ गई है। इसी बीच पोदार हाउस में हो जाती है दमानीस की एंट्री भी, क्योंकि कबीर भी मायरा के साथ भाग चुका है और दमानीस को लगता है कि कबीर पोदार हाउस में रहने के लिए आया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कबीर कमरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ जाए। लेकिन कबीर का तो पता नहीं, घर वाले दमानीस के खिलाफ सामने खड़े हो जाते हैं और शुरू हो जाता है दमानीस वर्सेस पोदार।
2: प्लीज लीव, वरना मुझे पुलिस को बुलाना।
3: पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा और तुम सबको जेल कर दूंगा।
2: अच्छा, किस जुर्म में? कि हमारी लड़की आपके कबीर को भगा के ले गई। कोई विश्वास नहीं करेगा आपकी इस बात।
3: कबीर कल मरते मरते बचा था, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, ऐसा प्लान बनाने की हालत में नहीं था वो। आपकी मायरा उसे लेके भागी।
4: भाई साहब, आप रियलाइज करते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो कितना फनी साउंड कर रहा है? अब तो कबीर के दूध पीता बच्चा है, उसे खुद का दिमाग नहीं है जो मायरा उसे भगा के ले गई है।
3: दिमाग है उसमें, लेकिन जब से आपकी बेटी से मिला अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया उसने। आपकी बेटी की हर बात मानता है वो।
5: आपके कहने का मतलब ये है कि आपका बेटा अस्पताल से भाग गया? आप लोग भी तो वही होंगे ना, आप लोगों को पता कैसे नहीं चला?
3: जब मायरा भागी थी आपको पता नहीं चला था या आप सबको बता के भागी थी?
6: अरे ये कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग।
3: मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपके घर में बेहूदगी को बढ़ावा दिया जाता होगा, हमारे घर में नहीं। खानदानी लोग हैं हम।
6: खानदानी तो हम है, इतनी देर से आपकी बकवास सुन रहे हैं। हाँ, भरत, भरत हमारा सब खत्म हो गया।
1: वहाँ पर कबीर जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, मायरू से बिकॉज मायरू थोड़ा सा लड़ी उससे, तो अभी मायरू को ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेदार है उसकी, और उसके लड़ने की वजह से कबीर के साथ ऐसा हो गया। और यहाँ पर माँ बाप जो है वो निर्णय लेते हैं कि हम उसे बाहर विदेश भेज देंगे, और ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे तुम लोग, मत करो, और ये तुम ऐसा करने से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। बट उनका डिसीजन फाइनल है और सोच समझ के उन्होंने कुछ लिया है और मुझे बड़ा दुख होता है, माधव जी को भी थोड़ा दुख होता है, कुछ कुछ लोग हैं दुख होता है। फिर यहाँ पर काजल बोलती है कि देखो ना अब दो बेटियाँ थी मायरू और मुक्ति, उसमें से मुक्ति देखो कहाँ कितनी आगे बढ़ गई है और दोनों सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम पालन पोषण हुआ है, लेकिन वो आगे हो गई है और हमारी मायरा है वो वहीं की वहीं है। और ये बात मुझे खटकती है और मैं बोलती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के दिल और धड़कन होते हैं और हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें।
0: भाई यहाँ बहस इस हद तक बढ़ गई कि बात हाथापाई पे पहुँच गई, क्योंकि ये सारे कड़वे बोल संजय बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहुँच गया दमानीस को मारने के लिए। वो तो शुक्र है कि घर के बाकी लोग संजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय ने तो ठान ली है कि आज वो दमानीस का डी एंड ही कर देगा। फिलहाल तो दादी सा ने दमानीस को अपना गुस्सा दिखाया और दमानीस को घर के बाहर का रास्ता भी दिखाया, लेकिन यहाँ घर में सभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर मायरा को कैसे ढूंढा जाए। इसी बीच घर वाले ट्रैकिंग की बात करने लगते हैं, क्योंकि अरमान ने मायरा के मोबाइल में ट्रैकर लगाया था। बस फिर क्या, ये सुनकर दमानीस को आइडिया आ जाता है और वो फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं दोनों का पता लगाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अरमान के हाथों लग गया है मायरा का लेटर भी, जिसमें दिया गया है पूरे परिवार को अल्टीमेटम मायरा और कबीर की तरफ से। और तो और अभीरा और अरमान दोनों का हाल बेहाल है। अब देखना होगा कि मायरा की धमकी पोदार और दमानीस का रिश्ता जोड़ेंगी या फिर पूरी तरह से दोनों परिवार को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: सीरियल अनुपमा में हो गई है न्यू एंट्री और ये एंट्री है दिग्विजय के बेटे आर वी की, जिसने अनुपमा को हादसे से बचा लिया। खास बात ये है कि अनुपमा इस बात से अनजान है कि आरवी दिग्विजय का बेटा है। अब आरवी कहानी में आगे क्या ट्विस्ट लाता है देखना दिलचस्प होगा।
0: अनुपमा संग हादसा, आरवी बना रक्षक, नई एंट्री, नया ट्विस्ट।

0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा निकली तो थी भाजी तरकारी खरीदने के लिए, लेकिन खरीद कर जब वापस घर लौट रही थी कि अचानक उसके साथ रास्ते में हो गया हादसा, जिसके चलते अनुपमा होने वाली थी एक्सीडेंट का शिकार। लेकिन शुक्र है कि वहां पर आरवी बनकर पहुंच गया रक्षक, जिसने न सिर्फ अनुपमा को बचा लिया बल्कि अंधाधुन गाड़ी चलाने वाले को भी सबक सिखा दिया। ऐसे में उसे देखकर अनुपमा बहुत खुश है, क्योंकि एक अजनबी ने अपना समझकर उसे बचाया जो है।
1: थैंक यू। गणपति पापा ने आपको सही समय पर भेज दिया, वरना मैं तो उनसे मिलने निकली पड़ी थी। थैंक यू बेटा।
2: थैंक यू और बेटा एक साथ नहीं बोलते मैम। बेटा बोल के अपना मत बनाइए या फिर थैंक यू कह के पराया मत कीजिए। देखिए आप इतना सारा सामान लेके जाएंगी तो सड़क नहीं देख पाएंगी। भाई मुझे दीजिए, मैं उठा लेता
1: हूँ।
2: अरे आप जिद मत कीजिए। मैंने
1: अरे मेरे रोज का है। अरे क्या कर रहे हैं आप?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड। बातें कुछ अनकही सी, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड नाउ अनुपमा। एंड मेरे फैंस, सब लोग सोशल मीडिया पे, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब विश कर रहे हैं। दे आर सेंडिंग देयर बेस्ट विशेस एंड सबका फेवरेट शो है टचवुड। एंड माय मदर यूज्ड टू लव द शो अ लॉट। मेरे मॉम का यू नो नेम इज अनु, सो यू नो इट्स अ वेरी हाईली इमोशनल मोमेंट फॉर मी। ये कि कोई नहीं जानता, ये आपको पहली बार मैं बता रहा हूँ। खाली ऑब्वियसली हमारे घर पे एवरीबडी नोज, फैमिली, रिलेटिव्स, सो दे ऑल रिलेट टू दिस। एंड आई मस्ट से दैट माय मदर was a very very big fan of Anupama and ye rishta kya kehlata hai, and you know she's no more, but I think it's her blessings ki you know back to back I'm getting shows to work with the greatest and the bestest producer in the television industry, Rajan sir. You know he's the bestest producer and director and an amazing human being. जब ये रिश्ता का जो ट्रैक है जब खत्म हुआ, मुझे कहा गया था 3 महीने का है, वो 9 महीने तक चला। आई वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन इन माई यू नो लाइक ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो लंबा चला, बट आई वॉज लाइक यू नो ईद का दिन था, ईद की पार्टी थी आई रिमेंबर, एंड मुझे सिर्फ पता था, बाकी टीम को नहीं पता था। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग दैट आई गेट अनुपमा शो, यू नो आई वॉज मैनिफेस्टिंग इट। तो मैं 1.5 साल तक मैंने कोई शो पिकअप नहीं किया, कुछ साइन नहीं किया। आई वॉज जस्ट वर्किंग हार्ड, गोइंग टू द जिम, यू नो ट्राइंग टू चेंज माई यू नो कम्प्लीट पर्सनैलिटी। एक कम्प्लीट मेक ओवर कर देना चाहता था कि ताकि मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर सकूँ। एंड येस आई मस्ट से दैट यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग विद DKP इज दैट दे शूट देयर टेलीविजन शो लाइक अ फिल्म। आई लव देयर प्लानिंग, दे आर सो प्रिसाइज, एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट इज सो गुड, यू नो। तो इट्स एंड इट्स फैमिली। तो आई विल वॉन्ट टू डू, यू नो I would love to do this, you know, I would love to work with DKP and I would love to do Anupama show. मतलब मैं कब से वेट कर रहा था, so I'm really happy, I'm really really happy.
0: भाई आरवी की जिद के आगे अनुपमा की एक ना चली, क्योंकि अनुपमा को आरवी में प्रेम की झलक जो दिखाई दे रही है। खैर आरवी की जिद है अनुपमा को घर छोड़ने की, ऐसे में अनुपमा ने उसका कहा मान लिया और वो उसकी कार में बैठ गई। इतना ही नहीं, कार में बैठने के बाद वो आरवी से उसके घर परिवार के बारे में पूछने लग गई, जिसके चलते आरवी ने अपनी माँ के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही उसके पापा के बारे में बात आई तो आरवी का चेहरा गुस्से से भर गया। ऐसे में अनुपमा को समझ आ गया कि उसके और उसके पापा की टर्म्स अच्छे नहीं है। बस फिर क्या, जगत सुधारने और रिश्ते संवारने वाली

0: ढोकला इन सब से कहती हूँ मना मत करना।
1: पागल हूँ पर इतना भी पागल नहीं हूँ कि ऐसे ऑफर को मना कर दूँ।
0: बस पास ही है मेरा कैफे, आजकल बहुत फेमस है हम, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मेरा लव यू जिंदगी कैफे।
2: लव यू जिंदगी। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि जिंदगी से प्यार कर सके।
0: बस यहीं पर रुक दीजिए।

भाई बातों ही बातों में अनुपमा अपने मोहल्ले में पहुंच गई। ऐसे में आरवी ने अनुपमा को उतार तो दिया और अनुपमा चाहती है आरवी उसके कैफे में आकर चाय नाश्ता करे, लेकिन आरवी को काम है इसीलिए उसे जाना है। ऐसे में आरवी अनुपमा को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर आ जाता है दिग्विजय, जो अनुपमा की मदद करने लगता है सामान उठाने में। लेकिन आरवी जो कार से आगे निकल चुका है उसकी नजर अचानक अनुपमा और दिग्विजय पर पड़ जाती है। बस फिर क्या, ये देख आरवी की आंखों में कहीं न कहीं गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि आरवी किसी और का नहीं बल्कि दिग्विजय का ही बेटा है।

0: आज जो हमने सीक्वेंस शूट किया वो मेरी आरबी, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो इस सीरियल में मुझे आरवी कहते हैं, और आरवी की एंट्री जो होती है घर में वो हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, और अनुपमा जी के साथ एक सीक्वेंस मैंने शूट किया, मेरा फर्स्ट सीन जहां पर मैं उनकी जान बचाता हूं, और फिर बहुत ही प्यारा सीन एक है, एंड तो उसके बाद मतलब आप सीन देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, सो डोंट मिस आरवी इज एंट्री. आरवी इज अ वेरी पॉजिटिव गाय, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ बहुत सारे लेयर्स हैं एंड कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा है, नाराज़ है अपने फादर दिग्विजय जी के साथ, एंड आई मस्ट से ही इज़ एन एंग्री यंग मैन. तो आगे आपको देखने को मिलेगा उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स.
1: भाई जिस तरह से आरवी और उसके पापा की टर्म्स हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब आरवी अनुपमा का दुश्मन बनेगा. तभी तो आरवी बराबर अनुपमा पर नजर रखे हुए है, और अनुपमा इस बात से अनजान कि आरवी और दिग्विजय का रिश्ता है, वो तो अपने भविष्य की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे नई उड़ान जो भरनी है. ऐसे में उस उड़ान को लेकर वो दिग्विजय से बातें कर रही है, और दिग्विजय उसकी उड़ान पर बहुत खुश है.
2: रास्ते में जितनी बात भी गणपति बापा नजर आए तो उनसे मन ही मन यही कहा कि बापा इस बार सब संभाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा. वैसे सर ये डाउन पेमेंट करके मैंने बस पहले डर को हराया है. दौड़ तो अभी शुरू ही है, अभी तो लंबी दौड़ दौड़ ली है सर, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, सब जगह लोन की एप्लीकेशन देने के लिए सब क्या, फिर जोड़ने के लोन दे दो लोन दे दो, और फिर अगर लोन मिल गया तो फिर किश्तें चुकानी है. और सर सबसे ज्यादा तो उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए लड़ना है जो मेरे साथ साथ वो पिछले प्रोजेक्ट में ना होंगे, सर सबके सपने पूरे करने करने की है. पापा ध्यान रखो, हम सबका सपना पूरा कीजिए.
1: खैर सफलता पाने की अनुपमा ने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन इसी सफलता में फिर से आरवी और अनुपमा की मुलाकात होगी, लेकिन इस बार आरवी बनकर आएगा प्रेम का को पार्टनर. देखना होगा कि अब आरवी अनुपमा और अनुपमा से जुड़े रिश्ते सभी बिगाड़ेगा या फिर सुधारेगा.
3: तूने कहा था ना तुझे एक अच्छा बच्चा मिला था.
4: हाँ,
3: तो वो कैफे में आए तो मुझसे मिलवाना.
4: किस्मत से मिला था तो अब जाने कब किस्मत फिर से उससे मिला.
5: गणपति बाप्पा
4: देर से क्यों आए, कहा था ना टाइम से आ जाना.
6: सॉरी मम्मी हम लेट से आए लेकिन

0: अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट को भी लाए हैं।
1: स्पेशल गेस्ट को?
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल तुम देना साथ मेरा में देखने को मिले अपराजिता और रक्षित के रोमांटिक पल, लेकिन इस रोमांस पर ब्रेक तब लगा जब रक्षित हुए अपराजिता की परेशानी से वाकिफ। अब ऐसे में रक्षित कैसे करेगा अपनी बीवी की मदद, चलिए देखते हैं।
4: कच्ची डोरियां डोरियां,
2: रक्षित की दीवानी हुई अपराजिता।
4: बांध ले पक्की यारियों यारियों,
2: प्यार में डूबे मियां और बीवी।

सिस्टर्स के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में जब से रक्षित को अपराजिता के बारे में पता चला है तब से रक्षित परेशान रहने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि अपराजिता सिर्फ और सिर्फ रक्षित को खुश करने के लिए उसके करीब आती है। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहा है उसे समझने की कि तभी वहाँ पर आ जाती है अपराजिता और देखिए कैसे आते के साथ ही वो अपने पति को रिझाने की कोशिश में लग जाती है। और रक्षित वो सब समझ रहा है लेकिन अपराजिता वो कहीं ना कहीं रक्षित से प्यार करती है। ऐसे में वो नहीं चाहती कि उसका और उसके पति के रिश्ते में कुछ भी दूरियां आए। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रही है रक्षित को अपने करीब लाने की और रक्षित वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है।

0: गया।
1: हाँ
0: मतलब प्रेशर।
1: ओह सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी।
0: नो नो तुम्हारा प्रेशर नहीं है, देयर इज नो प्रेशर। पेट
1: पेट
0: पेट प्रेशर
1: प्रेशर
0: पेट दुखा है।
1: पेट दुखा,
0: पेट खराब हो है।
1: खराब
0: पेट।
2: भाई मानना पड़ेगा रक्षित को, अपराजिता से प्यार तो करते हैं लेकिन उसे ठीक करने के लिए उसे दूरियां भी बना रहे हैं, वो भी बहाना करके। ऐसे में आज उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया और तो और बहाना कर दिया पेट खराब होने का। इतना ही नहीं, रक्षित ने तो अपराजिता को आराम करने तक को कह दिया।
1: अरे लेकिन हुआ क्या?
0: मेरा मतलब नहीं,
3: चुरा लूं तेरे
2: लेकिन अपराजिता उसने हार नहीं मानी। वो तो बाथरूम के बाहर ही चुपचाप बैठ गई और करने लगी रक्षित का इंतजार। और देखिए कैसे इंतजार करते करते उसकी आंख भी लग गई। और तभी रक्षित को एहसास हुआ कि अपराजिता जाके सो चुकी है। ऐसे में वो दबे पांव बाथरूम से बाहर निकलते तो है लेकिन नीचे बैठी अपराजिता को देखकर हो जाते हैं हैरान। बस फिर क्या, उसी हैरानी में वो अपनी अपराजिता को गोद में उठाते हैं और लेकर आ जाते हैं बिस्तर पर उसे सुलाने के लिए। इतना ही नहीं, सोते हुए अपराजिता को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं।

अपराजिता, कभी ना हार मानने वाली, दूसरों को खुद से आगे रखने वाली, दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने वाली। आज भी तो तुम यही कर रही हो ना, ये सब तुम मेरी खुशी के लिए कर रही हो ना। मेरा प्यार तुम्हारे दर्द को कम करने के बजाय बढ़ा नहीं सकता, इसलिए जब तक तुम तैयार नहीं हो, जब तक तुम अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए मेरे पास ना होना, तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा।

0: जाना,
1: दो गज की दूरी है जरूरी।
2: अब रक्षित को क्या पता कि अपराजिता को ये प्यार मिला है तो वो अपना ये प्यार खोना नहीं चाहती और वो सच में रक्षित के करीब आना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि रक्षित का ये फैसला जो उसने खुद से लिया है वो अपराजिता को और कितना दूर करेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: बहुत ही गलत किया, अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम थी तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना।
1: जब तक तुम अपने दिल से अपनी मर्जी से पूरी तरह तैयार ना हो जाना, मैं तुम्हारी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। 3-4 दिन के लिए तुम्हें अपने घर जाना चाहिए।
4: चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
5: प्रीति, इट वाज द वर्स्ट दिस एवर।
2: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए रॉकिंग प्रोमो कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 20 का, जहां पर सलमान खान रिति की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं और तो और सभी पर अपना गुस्सा भी उतार रहे हैं।
5: रिति, इट वाज द वर्स्ट दिस एवर। एक लिमिट में डिसरिस्पेक्ट करना होता है। ये जो लैंग्वेज जो आपकी है ये कहीं और जा रही है, और सबके सब हंस रहे थे। कहाँ गई आपकी अक्ल? आप लोग चढ़ा रहे थे और ये चढ़ रही थी। वो आपका कर्तव्य नहीं था कि स्टॉप इट राइट देयर? अगर आपके बहन के ऊपर ये डिस होता, ये डिस करने देते आप?
6: मैं जिंदा तो थी।
2: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर राधिका जल्द ही वीर से अपने प्यार का इजहार करने वाली है, लेकिन उसके बीच आएगा नया ट्विस्ट जहां वीर करेगा अपनी गलती का खुलासा।
6: मैं जिंदा तो थी, पर सीने की वजह तुमने दी है वीर।
7: आपका जिंदगी बर्बाद करने का वजह भी हम ही है।
6: मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगाई।
7: आपकी उम्मीदों का गला भी हम ही ने घोटा है।
6: मेरे और निया के लिए बहुत कुछ किया,
7: यहाँ तक की निया के पिता आदित्य का खून भी हमें नहीं किया। आदित्य का खून भी हमें नहीं किया।
6: अब आप छोड़िए मां का हाथ, अब इसे क्यों पकड़ के?
8: मां कहलाने के लायक नहीं है ये औरत।
6: ये क्या बदतमीजी है नंदिनी के साथ?
8: आप प्लीज कुछ मत बोलिए मां।
2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही रिश्ते दाव पर लगने वाले हैं, और इस बार रिश्ता है करण और नंदिनी का।
9: तुमने मुझे मेरी माँ से दूर किया है, मैं तुम्हें हमारे बच्चों से दूर नहीं कर सकता। मेरी बदकिस्मती है कि तुम इनकी माँ हो,
7: लेकिन अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकता।

विवेक ओबराय की बेटी सहारा शाह जल्द ही एक्टिंग में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। खबर की माने तो नेपाली फिल्म में वो मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।

सीरियल ये है चाहते में नजर आ चुकी गौरी चौरसिया जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगी। खबरों की माने तो जी टीवी पर जल्द ही एक नया शो आने वाला है जिसे लेकर आएंगे आतिफ खान। हालांकि अब तक इस सीरियल का नाम सामने नहीं आया है।

सीरियल जाने अनजाने हम मिले में नजर आ चुके विशाल मल्होत्रा जल्द ही नजर आएंगे। कलर्स टीवी पर जल्द ही आने वाले नए सीरियल शायद यही है प्यार में। हालांकि अब तक उनके किरदार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इनका किरदार कहानी में नया ट्विस्ट जरूर लाएगा।

0: लगे सर?
1: हाँ माँ।
0: जब आपकी पहली पिक्चर आई थी तो आपने जो बांसुरी बजाई ना मम्मी, उसकी बहुत तारीफ करते थे।
2: हीरो फिल्म में जो मीनाक्षी जी आपके साथ है, उसके वो बांसुरी वाला डांस हमें बहुत ज्यादा पसंद है आपका। दिल तो हमारा था हमें आपके साथ डांस करे, पर आप मेरी गीतांजलि के साथ डांस करके दिखाओ।
3: सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में जल्द होने वाला है ग्रैंड फिनाले, जिसमें जैकी श्रॉफ बनकर आएंगे खास मेहमान और चलाएंगे अपनी बांसुरी का जादू।

सास बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड समेत 27 पदक। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, केजीएल इज मेजो, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं करेंगी एयर एक्सरसाइज, 32 देश ऑब्जर्वर के रूप में होंगे शामिल। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, द वन की बम्पर ओपनिंग, बरसी छठी मैया की कृपा, पहले ही दिन किया 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हराकर अपने नाम किया मुकाबला। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में भारत का 4th मेडल, वहीं इस एशियन गेम्स में देश की झोली में आया 3rd गोल्ड मेडल। मिक्स डबल्स स्क्वाश में भी देश को मिला मेडल, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने जुताया ब्रॉन्ज। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर, वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में आज भारत के तजिंदर पाल सिंह टूर पर सबकी नजर, स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने उतरेगी टूर, एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं। एशियन गेम में आज सिल्वर मेडल से हुई थी भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों के मैराथन में सावन बरवाल ने जीता मेडल, उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है। बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा, इस इवेंट में 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में भारत को मिला था ब्रॉन्ज। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल, महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिगड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत, 1763 पॉइंट किए हासिल। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई, गिरगांव चौपाटी पर गणपति प्रतिमा का हुआ विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहिब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयं सेवक और स्थानीय नागरिक इस मुहिम में शामिल हुए, दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजरीवाल लेज मेजो।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवान राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन। 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा इसका आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु, दारा सिंह आएंगे नजर, अवतार गिल मेघनाथ और पुनीत इस्कर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। पिछले वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखी थी रामलीला। इस साल भी सुंदर सेट और नई तकनीक के जरिए नए रूप में दिखेगा जाएगा त्रेता युग। आज से पितृपक्ष पितरों के तर्पण का पर्व 10 अक्टूबर तक चलेगा। ये महापर्व सर्वप्रथम अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज, दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध। इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा, तर्पण पिंडदान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का किया जाता है श्राद्ध। पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का काल सर्वश्रेष्ठ। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत। इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। गुजरात के अंबाजी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा संघ। 25 साल से ट्रेडिशनल ड्रेस कोड के अंबाजी आ रहा राजकोट का संघ। 15 दिन 15 पारंपरिक पोशाकों के साथ लंबी पदयात्रा। राजकोट के संघ के सदस्य हर दिन अलग पारंपरिक पहनावा पहनते हैं। राजपूत, अहीर और भरवाड़ समाज की पोशाकें भी यात्रा का हिस्सा। अंबाजी के चाचा चौक में गरबा और तलवारबाजी की शानदार प्रस्तुति। पदयात्री ने मां अंबा के दरबार में किया गरबा। महिलाओं और बच्चों ने भी हैरतअंगेज तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। मां अंबा के दरबार में रंग बिरंगी पोशाकों का नजारा दिखा। राजकोट का संघ हर साल अनोखे ड्रेस कोड के साथ करता है ये पदयात्रा। 130 से 150 सदस्य एक जैसे पारंपरिक अंदाज में पदयात्रा करते हैं। बोल मारी अंबे, जय जय अंबे से गूंजा पूरा मार्ग। गुरुजी माड़ी के नेतृत्व में हर साल आयोजित होती है अंबाजी की पदयात्रा। अंबाजी में 5 दिन में 35 लाख भक्तों ने किए दर्शन। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव। रोशनी, सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। 22 से ज्यादा झांकियों से सजा शहर। इंदौर के सड़कों पर दिखा आस्था और कला का संगम। देवी देवताओं के भव्य झांकियों ने श्रद्धालु को मोहा। कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। खजुराना गणेश मंदिर की झांकी से हुए उत्सव की भव्य शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D तकनीक से सजी इंदौर की झांकियां। झांकियों में आधुनिक तकनीक का खास इस्तेमाल। रोशनी से जगमगाया इंदौर, निकला झांकियों का कारवां। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आकर्षक विद्युत सजावट ने बढ़ाई भव्यता। पुरुषों के साथ महिला कलाकारों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। नृत्य और करतबों ने बटोरे दर्शकों की खूब तालियां। झांकियों में दिखी बॉडी बिल्डिंग की झलक। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा। आर्या तारा शाक्य ने इंद्र यात्रा में किया नगर भ्रमण। सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालु में दिखा खासा उत्साह। नई जीवित देवी ने धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। आर्या तारा शाक्य की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कुमारी के रथ के साथ उमड़ा आस्था का सैलाब। इंद्र यात्रा में कुमारी का रथ काठमांडू के सड़कों से गुजरा। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। उत्सव में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम नजर आया। ढोल नगाड़ों से गूंजा काठमांडू, निकली भव्य रथ यात्रा। इंद्र यात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इंद्र यात्रा में दिखी सदियों पुरानी नेवारी संस्कृति। कुमारी गणेश और भैरव के रथ रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। हनुमान ढोका से शुरू हुआ रंगीन इंद्र यात्रा उत्सव। 8 दिनों तक काठमांडू में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुडनी चुडी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 3 गोल्ड समेत 27 पदक। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, केजरीवाल इज में जो प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं करेंगे एयर एक्सरसाइज, 32 देश ऑब्जर्वर के रूप में होंगे शामिल। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया दुबान की बम्पर ओपनिंग, बरसी छठी मैया की कृपा, पहले ही दिन किया 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थनाओं स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में अशांति लाते हैं। पितृ पक्ष में कैसे सुधारें इन ग्रहों की चाल, आज हम आपको ग्रहों की शांति के जरिए पितरों की मुक्ति के उपाय बताने वाले हैं। शनि, राहु और केतु, ये कुंडली के तीन ऐसे ग्रह हैं जिनकी स्थिति से पितरों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है और फिर पितरों की समस्या का उचित समाधान करना आसान हो जाता है। तो देखिए शनि, राहु और केतु से पितरों का संबंध क्या है।

0: पक्ष में शांत होंगे कष्ट देने वाले ग्रह। शांत हो जाएंगे शनिदेव। शुभ फल देंगे राहु और केतु। पितरों के आशीर्वाद से चमकेगा भाग्य। पितृ पक्ष में करें शनि राहु और केतु की शांति का उपाय। ब्रह्मांड में एक देव ऐसे हैं जिनको न्याय का देवता कहा जाता है और वो है शनि देव। वही ज्योतिष में राहु केतु को पाप ग्रह कहा गया है क्योंकि ये ग्रह सामान्य तौर पर कष्टकारी ही होते हैं।
1: श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से तो ब्रह्म हत्या का पाप तक नष्ट हो जाता है। भगवान ने स्वयं जाके शिव जी ने ब्रह्म कपाली के ऊपर जब गए तो भगवान के हाथ से ब्रह्मा का चतुर्थ सिर कटके पंचम सिर कटके छूट गया था। तो पितृ दोष से तो ब्राह्मण दोष से इन सब दोषों से पितृ दोष की पूजा कराते ही मुक्त हो जाते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं।
0: आपकी कुंडली के इन ग्रहों का है पितरों से गहरा संबंध। क्या आप जानते हैं पितृ पक्ष में इन ग्रहों की शांति के उपाय करके आप अपने पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिलवा सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद पाने के इन अति पावन दिनों में आप इन ग्रहों को शांत कर उनसे शुभ फल पा सकते हैं।
2: पितृपक्ष में ग्रह शांति का उपाय यह है कि अगर हम शनि की पूजा करें, अगर हम राहु की पूजा करें या केतु की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे पितरों की भी शांति होती है, जिसका जुड़ाव हमारे पूर्व जन्म से है, हमारे कर्म से है और हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने से भी है, जिसके कारण से व्यक्ति को इन सभी ग्रहों का पूजन करना चाहिए।
0: पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं पितृगण और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और संपन्नता का आगमन होता है। लेकिन पितृ पक्ष में पितरों की तृप्ति के उपाय करने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके पितरों की स्थिति कैसी है।
1: देखिए, पितृ पक्ष के अंदर सबसे सुंदर उपाय ये है कि प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को जल दें। आपके किसी पितृ का श्राद्ध न भी हो तो पितरों का ध्यान करके जल अवश्य दें। जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई है, पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, घर में सुख संपत्ति की कमी है, रोग ग्रस्त है, कोई पितृ ऐसा है जिसको जैसे ही गाय को भोजन कराया, देवते को भोजन कराया, आपके जीवन का कोई ऐसी कमी नहीं जो इस उपाय को करने से पूर्ण ना हो जाए।
0: और इसका पता लगाने के लिए आपकी कुंडली के शनि राहु और केतु का हाल जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं शनि राहु और केतु से क्या है पितरों का संबंध।
2: पितृपक्ष में राहु जो कि मोक्ष का कारक माना गया है और केतु भी हमारे मुक्ति का कारक माना गया है, तो दोनों ही देखे जाए तो एक दूसरे के साथ ही है। तो हम अगर चाहें तो राहु की शांति के लिए 18,000 जप एवं केतु की शांति के लिए 17,000 जप ओम किं केतवे नमः से कराएं तो निश्चित ही लाभ होता है।
0: शनि राहु और केतु का पितरों से संबंध। पितरों का संबंध हमारे जन्मों, संस्कारों और भावनाओं से होता है। शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है। राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है। केतु का संबंध हमारे पितरों और उनकी मुक्ति व मोक्ष से होता है। इस प्रकार शनि राहु और केतु से हम अपने दायित्व और अपने पितरों की स्थिति जान सकते हैं। कहते हैं इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। कर्मों का हिसाब बराबर किए बगैर शनिदेव किसी को मुक्त नहीं होने देते। यही कारण है कि इंसान पितृदोष जैसे योगों से पीड़ित रहता है।
1: शनि की शांति नवग्रह पूजन

0: कि शांति का उपाय जानने से पहले देखिए कुंडली के शनि, राहु और केतु हमारे और हमारे पितरों के बारे में क्या बताते हैं। शनि का अच्छा होना ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उत्तम रहे हैं। राहु और केतु का अच्छा होना बताता है कि हमारे पितर संतुष्ट हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु से हो तो पितरों का दायित्व बाकी रहता है, यानी उनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं हो पाती। इस दशा को पितृदोष कहा जाता है। बृहस्पति अच्छा होने पर पितृ संबंधी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है।
1: जब राहु सूर्य के साथ आएगा तो अर्थात पितृ दोष है पिता या चाचा ताऊ, यानी कि पिता की आयु के किसी पुरुष का पितृ दोष बताता है। ऐसे ही राहु गुरु के साथ चला जाएगा या चंद्रमा के साथ चला जाएगा तो माता माता मही अर्थात दादा या दादी की उम्र का कोई पितृ ऐसा है जो नाराज चल रहा है। शनि सूर्य के साथ बैठेगा तो अगेन वही पितृ से संबंधित पिता चाचा ताऊ आदि के क्षेत्र में बताएगा, क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य, बाबा का और पड़ बाबा का कारक ग्रह बृहस्पति, माता का कारक चंद्रमा और स्त्री से संबंधित जो ग्रह है शुक्र, स्त्री दोष भी बताता है। जब राहु शुक्र के साथ आ जाएगा तो यकीनन एक स्त्री दोष बताता है जिसमें स्त्री के द्वारा तंत्र प्रयोग अथवा स्त्री अपमृत्यु को प्राप्त हुई हो परिवार के अंदर, यह ग्रह उसके साथ संयोग से आपको लक्षण बताते हैं कि पितृदोष है।
0: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है और कहते हैं ये भी है कि पितृ पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर पितरों के पूर्व जन्म के कर्म अशुभ हैं तो शनि और राहु केतु उन्हें मुक्त नहीं होने देते, क्योंकि शनि देव के पास सभी जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है। शनि देव कष्ट कारक हैं, विपत्ति कष्ट निर्धनता देने के साथ साथ गुरु तथा शिक्षक भी हैं। जिनकी कृपा हासिल हो जाए तो फिर किसी अन्य चाहत की कोई जरूरत नहीं रहती। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव कभी आपको सजा नहीं देंगे। तो शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए पितृपक्ष में इन सभी पाप ग्रहों की शांति के उपाय आप कर सकते हैं। आगे हम आपको इन्हीं ग्रहों की शांति के उत्तम उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देखिए ज्योतिष में ग्रहों के अलग अलग लक्षणों को समझकर पितरों की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। पितृ संतुष्ट है या अशांत है या आप पितृ दोष के साथ पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। तो देखिए पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए कैसे करें शनि और राहु केतु की शांति के उपाय।

0: पक्ष में यजमान का करें सम्मान। भोज और दान से प्रसन्न होंगे भगवान। धर्म कर्म से पितृ होंगे शांत। ब्राह्मण सत्कार से नवग्रह नहीं होंगे अशांत। शनि और पितरों की शांति में दान और ब्राह्मण भोज का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि पितृ पक्ष के दिनों में ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे पितरों को तृप्त करता है, लेकिन केवल इस कर्म से शनि ग्रह की शांति नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ खास उपाय, गौर से देखिए।
1: पितरों एवं शनि आदि की शांति के लिए व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। उसके साथ ही आपको कौवे का, गाय का और उसके साथ ही कुत्ते का भी भोज पदार्थ निकाल देना चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर तिल आदि का प्रयोग इन पूजन पे किया जाता है तो निश्चित ही हमारे ग्रहों की भी शांति हो जाती है।
0: कैसे करें पितरों और शनि की शांति? पितृ पक्ष में पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। निर्धनों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि भोजन में

0: उड़द की दाल के बने पकवान जरूर हो। पितृ पक्ष में जितना संभव हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। रोजाना दोपहर में ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का 108 बार जप करें। पूरे पितृ पक्ष में सात्विक ढंग से रहें। पितृ पक्ष में शनि की शांति के उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन राहु केतु भी कम पीड़ादायक ग्रह नहीं है। इनकी बुरी दशा आपके पितरों की मुक्ति की राह की सबसे बड़ी बाधा है।
1: पितृ दोष की शांति जैसे ही करेंगे, तर्पण पिंडदान पितरों का करेंगे, काला तिल विशेष तौर पर ध्यान रखिए, लक्ष्मी का द्योतक है जिस व्यक्ति को शनि परेशान कर रहा हो, जहां आप तिल युक्त पिंड देते हैं और गंगा जी में उसको छोड़ते हैं, मछली जैसे ही खाते व्यक्ति के राहु और शनि दोनों शांत हो जाते हैं।
0: तो इस पितृ पक्ष तर्पण और श्राद्ध के साथ राहु और केतु के निवारण के उपाय भी जरूर करें। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। पितृ पक्ष में राहु केतु के निवारण के उपाय। पितृ पक्ष में किसी भी दिन दोपहर के समय से ये प्रयोग करें। सफेद वस्त्र धारण करें, फिर हाथ में कच्चा सूत और सफेद मिठाई लें। हाथ में मिठाई लेकर पीपल की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को पेड़ पर 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपकी कुंडली के राहु केतु शांत हो। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और फिर जल अर्पित करें।
1: पितृ का कारक ग्रह या आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य, उसके साथ यदि राहु आ जाए तो वो व्यक्ति को प्रेत बाधा का निर्माण करता है। वो प्रेत बाधा परिवार में गुजरा हुआ कोई कुंवारा बालक भी हो सकता है, तो वो पितृ दोष का निर्माण हो गया। ऐसे ही केतु अगर सूर्य के साथ आ जाए या पिता के पिता यानी कि बाबा के कारक ग्रह गुरु के साथ में आ जाए राहु या केतु, तो चांडाल योग बनाएगा, तब भी ये पितृ दोष का निर्माण करता है। माता का कारक चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए या सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो अगेन ये पितृ दोष का ही निर्माण करता है और पितृ दोष की शांति अनिवार्य हो जाती है। और अनिवार्य शांति करते ही यह ग्रह अपने आप शांत होकर शुभ फल देना शुरू कर देते हैं।
0: मान्यता है कि अगर पितरों की कृपा मिल जाए तो जीवन सुखमय बन जाता है। पितृ पक्ष में एक उपाय से आप सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ में आपके पितरों को भी मिल जाएगी अपार संतुष्टि। कैसे, देखिए। पितृ पक्ष के महा उपाय। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्य ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृ पक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है।
2: पाप ग्रहों की शांति से बाधाएं हमारी इस प्रकार से दूर हो सकती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शनिवार के दिन ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम उसके बाद राहवे नमः एवं ओम केम केतवे नमः आदि का जाप व्यक्ति करता है तो निश्चित ही पाप ग्रहों की शांति।
0: तो आप देव स्वरूप पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के उपाय कीजिए। आगे हम आपको पितृ पक्ष का वो चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आप और आपके पितृगण सभी तृप्त हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
3: पितृ पक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, इसीलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व भी रहता है। श्राद्ध कर्म के साथ साथ पितृ पक्ष में पंच बलि का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इसके जरिए आप पितरों से आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन पंच बलि है क्या और किस प्रकार पंच बलि दी जाती है, चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

0: पितृ पक्ष में दान पुण्य करने से कुंडली के अशुभ ग्रह तो शांत होते ही हैं, साथ ही आपको मिलती है पितरों की महाकृपा। लेकिन पितृ पक्ष में पंच बलि भी विशेष महत्व रखती है। पंच बलि क्या है और किस प्रकार देते हैं पंच बलि, पहले ये जानिए।
1: पंचबलि अर्थात पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि पितृपक्ष मास में अथवा पितरों के तिथि के समय जब आप करते हैं तो उस समय पितरों अनेक चीजों की कामना करते हैं। तो पितृ स्वरूप ही पांच चीजों को बताया गया, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, यम अथवा पितृ एवं चीटी। तो घर में जिस दिन पितरों का आप दिन आचरण कर रहे हो उस तिथि के दिन, तो उस दिन जो पकवान घर में भोजन बनते हैं उनसे पांच दोने अथवा कटोरी में निकाल करके पांच स्थलों में गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए इत्यादि के लिए रखने का विधान है। उसे संकल्पित करके पंचबलि का संकल्प करके वो पांच जगह उसे बलि निर्धारित निकालना, उसे पंचबलि कहा जाए।
0: किस प्रकार पंचबलि दी जाती है? सबसे पहले भोजन की तीन आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व पांच जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। अब सवाल ये भी है कि पंच बलि में इन्हीं पांच जीवों का चुनाव क्यों किया जाता है? आखिर पंच बलि के लिए इन पांच जीवों का ही महत्व क्यों है? इसकी वजह भी ज्योतिष में बताई गई है।
1: अनेक पशु जैसे गाय को ही या कौवा को या कुत्ता को इत्यादियों को पितरों की संज्ञा दी गई है शास्त्र नियम के आधार पर। यह पितृ स्वरूप होते हैं। जैसे कौवा वो प्राचीन काल से ही पितरों का स्वरूप शास्त्र पुराणों के विधान से बतलाया गया। ऐसा ही गौ को भी, चींटियों को भी, इन सभी को एक संज्ञा दी गई कि ये पितृ स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों में पितृ हमारे पास आ सकते हैं, इसके निमित्तिक जो है ये पितृ संबंधित पशु पक्षियों का इन दोनों का संबंध है जोड़कर देखा गया।
0: पंच बलि के लिए है पांच जीवों का चुनाव। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ पांच तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही आपकी कुंडली के शनि, राहु, केतु भी शांत हो जाते हैं।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
3: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले, सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत, भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में बीती रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है, तो बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाकों और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसके बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच भी दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय हेमकुंड साहिब समेत पूरे चमोली जनपद में मौसम में ठंड काफी बढ़ गई है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलने वाली है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 में एक बार फिर से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत की झलक देखने को मिली है। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सफलतापूर्वक सटीक आक्रमण का नजारा पेश किया गया। अभ्यास के दौरान स्काई स्क्राइपर ने वास्तविक ऑपरेशन वाले माहौल में तय लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर कार्रवाई करने और सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई में मॉडर्न वारफेयर में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दिखाया गया है। ऐसे माहौल में जब सेनाएं ड्रोन आधारित वारफेयर और लगातार जटिल होते मल्टी डोमेन काइनेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं, तब इस तरह के हथियारों की मौजूदगी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को साबित कर रही है। तो चलिए इस वक्त की शानदार खबर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत लगातार कमाल कर रहा है। भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी इतिहास रच दिया है। एशिया खेल में भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी ईरान की टीम को हराकर भारत का मान बढ़ाया है। एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत के खाते में अब कुल 4 स्वर्ण पदक सहित 28 पदक हो गए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो आपको बता दें कि जापान में एशियन गेम्स जो है लगातार जारी है, जिसमें भारत जो है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और बेहतरीन प्रदर्शन के इस कड़ी में आपको बता दें कि 28 पदक भारत अब तक जीत चुका है, जिसमें 4 गोल्ड हो गए हैं, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, जो कि वाकई भारत के लिए गर्व की बात है।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड मेडल, महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराया। अब तक भारत के हिस्से में 4 स्वर्ण के साथ कुल 28 मेडल। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, केजीएल मेजो प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल, ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीते की सफलता की। भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में चीतों की वापसी होगी, लेकिन 1922 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई और महज 4 साल में 8 चीतों का शुरू हुआ। ये सफर आज 56 तक पहुंच गया है। हालांकि ज्यादातर जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, लेकिन भविष्य की अगर योजना की बात करें तो भविष्य की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार की योजना चीतों की संख्या गांधी सागर, अभयारण्य और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बढ़ाने की है, ताकि उनका स्थायी और सुरक्षित विस्तार हो सके। 7 दशक बाद भारत के जंगलों में एक बार फिर से चीते की जो रफ्तार है वो लौट रही है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की कोशिश है।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है, जब 8 विदेशी चीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवा बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे कोनो नेशनल पार्क में, तब शुरुआत में पहले एक साल में लगा था कि प्रोजेक्ट असफलता की ओर जा रहा है, जब चीतों की मौतें हुई थी, 7-8 चीते एक साथ मरे थे। लेकिन अब जब लगातार प्रजनन हो रहे हैं, अभी तक 11 प्रजनन हो चुके हैं और 36 शावक वर्तमान में जीवित हैं, तो एक तरह से चीता प्रोजेक्ट फिलहाल सफलता की ओर नजर आ रहा है।
0: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
2: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिम पूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था, वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई, उसके बाद चीतों को लाया गया। और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रोजेक्ट चीता के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक और खुशी का पल। भारत के चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने कोनो में 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल, 4 नई जिंदगियां, ये उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर से चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में 20 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को बाड़ी से रिलीज किया तो एक नया इतिहास बन गया। ये CCB2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को दो नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
3: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जीव और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
0: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
3: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
0: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, जो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट यह सफलता की ओर है।
0: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्ने इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
3: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के रीइंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे हैं।
0: बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहां उन्हें करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया, लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे हैं।

0: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है। भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान हैं। उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कुनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक 1 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कुनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कुनो में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को लाए गए 8 चीतों में से 3 अभी भी जीवित हैं। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। इनमें 8 अभी भी जीवित हैं। भारत में पैदा हुए 10 शावकों को जोड़ने पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के चीतों और उनकी संतानों की संख्या 18 हो गई है। इनमें 15 पुनो और 3 गांधी सागर में हैं। अगर साल दर साल चीतों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली जाए तो 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे। साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे तो साल 2025 में ये संख्या 30 पहुंच गई, जबकि अब देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है। भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है। इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर से भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल प्रोजेक्ट चीता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को भी बयां कर रहा है। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को और लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्य जीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन्य जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन्य जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
0: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवाकर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर भी चीते के शौकीन थे। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौर से ही शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी। चूंकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं, इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे 3 मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
6: अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 में एक बार फिर से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत की झलक देखने को मिली है। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सफलतापूर्वक सटीक आक्रमण का नजारा पेश किया गया। अभ्यास के दौरान स्काई स्नाइपर ने वास्तविक ऑपरेशन वाले माहौल में तय लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर कार्रवाई करने और सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई में मॉडर्न वारफेयर में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दिखाया गया है। ऐसे माहौल में जब सेनाएं ड्रोन आधारित वारफेयर और लगातार जटिल होते मल्टी डोमेन काइनेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं, तब इस तरह के हथियारों की मौजूदगी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को साबित कर रही है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: एशियन गेम्स के 7वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड मेडल, महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराया। अब तक भारत के हिस्से में 4 स्वर्ण के साथ कुल 28 मेडल। हेमकुंड साहिब में फिर से जोरदार हिमपात, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, केजिया लिज में जो प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल, ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
6: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी रच दिया इतिहास, ईरान को हरा के जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता, अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया एक नया रिकॉर्ड, 10वीं बार एशियाड मेडल किया अपने नाम। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में रहा शानदार प्रदर्शन, भारत के कुल अब तक 28 मेडल। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हरा के अपने नाम किया मुकाबला। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में भारत का ही 4वां मेडल, वहीं इस एशियन गेम्स में देश की झोली में आया 3रा गोल्ड मेडल। मिक्स डबल स्क्वाश में भी देश को मिला मेडल, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने जिताया ब्रॉन्ज। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर, वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हरा के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में आज भारत के तजेंद्र पाल सिंह तूर पर सबकी नजर, स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने उतरेंगे तूर, एशियन गेम्स से 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड। एशियन गेम्स में आज सिल्वर मेडल से हुई भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों के मैराथन में सावन बरवाल ने जीता मेडल, उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है। बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा, इस इवेंट में 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स से भारत को मिला था ब्रॉन्ज। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल, महिलाओं के 50 मीटर राइफल फ्रीबी इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिगड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत, 1763 पॉइंट्स के हासिल। मुंबई में लालबाग शराज की भव्य विदाई, गिरगांव चौपाटी पर गणपति प्रतिमा का हुआ विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान जारी, अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी इस मुहिम में शामिल हुए, दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मासी तब बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ज्वेलर्स में जो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवानंद राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन, इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन, 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा इसका आयोजन। रावण की भूमिका में नजर आएंगे अरुण भक्षी, कुंभकर्ण भी निभाएंगे बिंदुदारा से

आज से पितृपक्ष पितरों के तर्पण का पर्व 10 अक्टूबर तक चलेगा। महालय पक्ष सर्वप्रथम अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध, इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 13 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की है परंपरा। तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का किया जाता है श्राद्ध। पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत। इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव। रोशनी, सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को किया भक्तिमय। 22 से ज्यादा झांकियों से सजा शहर। इंदौर के सड़कों पर दिखा आस्था और कला का संगम। देवी देवताओं की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं का मोहमन। कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समा। खजराना गणेश मंदिर की झांकी से हुई उत्सव की भव्य शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D तकनीक से सजी इंदौर की झांकियां। झांकियों में आधुनिक तकनीक का खास इस्तेमाल। रोशनी से जगमगाया इंदौर, निकला झांकियों का कारवा। हाइड्रोलिक इफेक्ट और आकर्षक विद्युत सजावट ने बढ़ाई भव्यता। पुरुषों के साथ महिला कलाकारों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। नृत्य और कर्तव्यों ने बटोरी दर्शकों की खूब तालियां। झांकियों में दिखी बॉडी बिल्डिंग की झलक। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा। आर्या तारा शाक्य ने इंद्र यात्रा में किया नगर भ्रमण। सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। नई जीवित देवी के धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा आर्य तारा शाक्य की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कुमारी के रथ के साथ उमड़ा आस्था का सैलाब। इंद्र यात्रा में कुमारी का रथ काठमांडू की सड़कों से गुजरता है। श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उत्सव में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम नजर आया। ढोल नगाड़ों से गूंजा काठमांडू। निकाली गई भव्य रथ यात्रा। इंद्र यात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इंद्र यात्रा में दिखी सदियों पुरानी निवारी संस्कृति। कुमारी, गणेश और भैरव के रथ रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। हनुमान ढोका से शुरू हुआ रंगीन इंद्र। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग। अनंत चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गिरिराज तलहटी में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। भक्तों ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। हजारों श्रद्धालु के बीच धार्मिक आयोजन ने माहौल को भक्तिमय बना लिया। विशेष सजावट ने गिरिराज तलहटी की भव्यता बढ़ाई। मंदिर में गिरिराज महाराज का हुआ भव्य दिव्य श्रृंगार। गिरिराज महाराज का पंच रत्नम महाअभिषेक किया गया। गिरिराज महाराज के दरबार में भक्तों की आस्था का रंग देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। केदारनाथ धाम में रात से ही बारिश जारी। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए लाइनों में खड़े यात्री। बारिश के बीच बादलों से घिरी दिख रही केदार नगरी। मौसम विभाग ने जारी किया है 48 घंटों का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई यात्रा व्यवस्था की मुश्किलें। प्रशासन ने सतर्क अलर्ट पर राहत और बचाव की टीम। हेमकुंड साहिब में फिर शुरू हुई बर्फबारी। जबरदस्त ठंड के बीच सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड। तापमान में भी आई गिरावट। निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। रामनगरी अयोध्या में लगातार बारिश के बीच रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था अब भी अडिग। छतरी लेकर रामलला के दरबार पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़। 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। 525 लोग सुरक्षित स्थानों पर किए गए शिफ्ट। बाढ़ के इस भयावह माहौल के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। बीमार छात्रा की बिछाई गई छान। इंद्रावती जलाशय से पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ के कुछ हिस्सों में स्थिति और भी खराब। राहत कार्य जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी का अलर्ट। गरज चमक और तेज हवाओं की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में आज और कल तेज बारिश की संभावना। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। पिथौरागढ़ नैनीताल में बारिश की वजह से आज स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में भी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट। बंगाल से पूर्वोत्तर तक बारिश का असर।

0: सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना की नेक पहल, सेना के सर्जनों ने एलओसी पर 220 आम नागरिकों की आंखों की रोशनी लौटाई। सेना ने आयोजित किया ऑपरेशन दृष्टि का 10वां एडिशन, इसके तहत दो दिनों में की गई 220 लोगों की आंखों की सर्जरी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंच के लाभार्थियों का जाना हालचाल, लोगों ने सेना की इस नेक पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी युद्धाभ्यास 2026 में स्काई स्ट्राइकर का सटीक हमला, टारगेट का पता लगाने और सटीक हमला करने की क्षमता का किया गया प्रदर्शन। इस कार्रवाई ने आधुनिक युद्ध में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता का किया प्रदर्शन, अनमैन्ड सिस्टम्स की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाया गया। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का हुआ आयोजन, अमेरिकी समेत कई देशों की वायुसेनाएं होंगी इसमें शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान, मेजर जनरल जूलियन सवेने की अगुवाई में लेंगे हिस्सा। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026, दुनिया भर की वायुसेनाएं दिखाएंगी अपने कर्तव्य। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने विमानों के साथ हो रहे हैं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होगा अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेगा F-35 विमान। फिल्म नई नवेली का गाना भाभी तबाही हुआ रिलीज, वायु ने लिखे हैं लिरिक्स तो वहीं इस शानदार गाने के कॉम्पोजिशन जीवी प्रकाश कुमार ने किया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है, एक्ट्रेस ग्लैमरस रेट्रो और विंटेज अवतार में नजर आ रही हैं। गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया पहली बार फिल्म तुम मेरे हो में साथ नजर आएंगे, फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। नीम करोली के बाद पढ़ते हुए दिखेगी राजस्थान के बाबा रामदेव पीर की कहानी, साल 2027 में रिलीज होगी कृष्ण अवतार। सीताराम की गूंज के साथ 50 दिन से बॉक्स ऑफिस पर कायम हनुमान अंश, 381 करोड़ के पार कमाए। चीन में पांडा ने मनाया मिड ऑटम फेस्टिवल, चोंगकिंग जू में पांडा को खास मून केक की दावत, फल सब्जियां और ताजे बांस के अंकुर का लिया स्वाद। चीन में पांडा की अनोखी फेस्टिवल पार्टी, पांडा ने सेब, अंगूर, कद्दू और गाजर का भी लिया मजा, पांडा हाउस के बाहरी बाड़े में खाना परोसा गया। प्राग जू में चीते के 5 शावकों ने जन्म लिया, इसमें 4 नर और 1 मादा शावक। 8 साल बाद प्राग जू में खुशखबरी आई सामने, 5 शावक अपनी मां के साथ खेलते हुए नजर आए। जंगल में सिर्फ 7,000 चीते ही बचे हैं, चीता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। हंगरी की नई स्टडी में डॉग्स और इंसानों के दिमाग की तुलना, स्टडी में बड़ा दावा, डॉग्स का दिमाग भी बातचीत को समझता है, नतीजों में बातचीत के पैटर्न्स को प्रोसेस करने में मिली समानता। डॉग्स के दिमाग पर भाषा का असर, इंसानों जैसी बातचीत प्रोसेस करते हैं डॉग्स, बूडापेस्ट के वैज्ञानिकों ने 20 डॉग्स और 20 इंसानों पर किया इसका अध्ययन। ईईजी से बातचीत सुनते समय डॉग्स के दिमाग की गतिविधि मापी गई, डॉग्स में कॉन्सोनेंट पैटर्न पर रिदमिक एक्टिविटी ज्यादा मिली, डॉग्स से आवाज नहीं पैटर्न भी पकड़ते हैं। डॉग्स ने पहचाने बातचीत के पैटर्न, रिसर्च में डॉग्स को बिना ब्रेक वाली लगातार बातचीत सुनाई गई, डॉग्स के दिमाग के अलग अलग स्पीच पैटर्न पर अलग प्रतिक्रिया दी। डॉग्स के दिमाग ने कॉन्सोनेंट को दी अहमियत, डॉग्स को समझने की रिसर्च में नया मोड़, साइंस में प्रकाशित स्टडी ने कुत्तों की स्पीच प्रोसेसिंग पर नई रोशनी डाली। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में बच्चों की कला बनी आवाज, रोमाना आर्ट सेंटर में बच्चे अपने अनुभवों को चित्रों में उतार रहे हैं, चेक पॉइंट्स, छापों और हिंसा के बीच उम्मीद और आजादी भी रंग भर रही है। पेंटिंग्स में बच्चों ने दिखाई आजादी की उम्मीद, 10 वर्षीय तालिया सभा ने पिंजरे से उड़ते पक्षियों की तस्वीर बनाई, तालिया सभा ने इसे बताया आजादी का प्रतीक। हेब्रॉन में कलाकार सारा अबू मादी का घर बना बच्चों का आर्ट सेंटर, 2020 में रोमाना सेंटर शुरू किया था, मकसद बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने में उन्हें प्लेटफॉर्म देना था। रोमाना की कलाकृतियां विदेशों तक पहुंची, बच्चों की कला वेस्ट बैंक से बाहर भी हो रही है प्रदर्शित, पुराने स्टोर और रूम से शुरू हुआ रोमाना अब रंगीन चित्रों से सजा सेंटर। बस्तियों के विस्तार के बीच बच्चों की चित्रकारी, रोमाना की कार्यशालाओं में बच्चे अपनी कल्पनाओं को दे रहे हैं रंग, बच्चे रंगीन पेंटिंग्स के बीच बैठकर बनाते हैं कला। चार दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे पोप लियो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस एयरपोर्ट पर किया उनका भव्य स्वागत। एलिसी पैलेस में दोनों के बीच हुई बातचीत। नोट्रे डेम कैथेड्रल में प्रार्थना सभा में पोप लियो हुए शामिल। हजारों की संख्या में अनुयायी हुए शामिल। पोप लियो की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नोट्रे डेम में मैरी की मूर्ति के सामने पोप लियो ने गाया गीत। पोप लियो ने पेरिस के ऐतिहासिक कैथेड्रल में प्रार्थना की। नानो कैथोलिक श्रद्धालुओं के साथ भजन भी गाया। बैकपाइप की धुन से पोप का स्वागत हुआ। पोप को देखने घंटों सड़क पर डटे रहे लोग। छोटे बच्चे भी माता पिता और अपने परिवार के साथ पोप को देखने के लिए पहुंचे। साल 2019 के बाद पोप लियो का पहला फ्रांस का दौरा। पेरिस में कई धार्मिक और आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे पोप लियो। चीन में मिड ऑटम गाला की धूम। उत्सव में पारंपरिक चीनी संस्कृति और आधुनिक तकनीक का दिखा मेल। हुआंगुदेंग नृत्य, कठपुतली कला और टोफू बैकवेन बने आकर्षण का केंद्र। अंतरिक्ष से चीनी एस्ट्रोनॉट्स ने दी मिड ऑटम की शुभकामनाएं। जिनजो 23 के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग स्टेशन से भेजा संदेश। देशवासियों और परिवारों को दी उत्सव की बधाई। तियांगोंग स्पेस स्टेशन से घर वालों को याद कर भावुक हुए एस्ट्रोनॉट्स। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर देश की समृद्धि और परिवारों की खुशहाली की कामना की। ओलंपिक दावेदारी को लेकर म्यूनिक और ड्राइंग रूड आमने सामने। जर्मनी 2036, 2040 या 2044 ओलंपिक के लिए दावेदारी कर रहा है तैयारी। म्यूनिक की ओलंपिक दावेदारी को मामूली बढ़त। जर्मन मीडिया के मुताबिक म्यूनिक और ड्राइन रूर के बीच कड़ा मुकाबला।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: बंद हो जाए इंजन फिर भी टैंक बरसाएंगे गोले। सीक्रेट पावर हाउस से बेहिसाब ताकत। भारतीय सेना के टैंक का पावर बैकअप। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में बीती रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाकों और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसके बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच भी दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय हेमकुंड साहिब समेत पूरे चमोली जनपद में मौसम में ठंड काफी बढ़ गई है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलने वाली है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: है वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है, कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में आए 2 गोल्ड मेडल, महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराया। अब तक भारत के हिस्से में 4 स्वर्ण के साथ कुल 28 मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि कृष्ण। मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया। केजिया लिज मेजो। राजस्थान में आज फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज। 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगी युद्ध कौशल। ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है कि नहीं।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों? 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान 0 से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं।
2: जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है, जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है। वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसलिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
2: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है।
0: आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिल के युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: अनमैन ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी में सैनिक बैठे होते हैं और उनके पास होती है एक बड़ी सी वीआर स्क्रीन जो ये एहसास कराती है कि सैनिक पूरी तरह से उस टैंक में ही बैठे हैं, जबकि सैनिक इस व्हीकल में बैठकर उस टैंक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे कि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDE, पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोसिव। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक एनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी कि केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियमों के मुताबिक गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर के ही हाथ में होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
1: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारी जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या है कि इसे अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 किलोमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6-7 सेकंड का वक्त लेता है, कम गहरी नदियों को आसानी से पार भी कर सकता है। लाइटवेट टैंक की बात की जाए तो भारतीय सेना के पास T-72 अजय टैंक है और उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं और इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
1: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैक इम्प्रूव्ड अजय, जिनका इस्तेमाल भारत करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो के तहत काम शुरू किया था और इसके तहत टैंकों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी इनके अंदर हर वो अपग्रेडेड तकनीक फिट की जाएगी जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है। साथ ही साथ अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी तब्दील किया जा सकता है। दरअसल सेना का मानना है कि इन सुधारों के बाद T-72 टैंक आने वाले वर्षों में प्रभावी होंगे और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे अपने हिसाब से ही ढाला जा सकता है। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक के बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी कर चुका है। रण क्षेत्र में टैंक की कितनी अहमियत है, युद्ध के समय में टैंक कितना बड़ा योद्धा साबित हो सकता है, इसकी जरूरत कब और कैसे महसूस हुई, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रणक्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने की ही हुआ करती थी। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी जाती है उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उसमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते हैं। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइंस से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलता था। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद ही हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेनाएं जहां जहां थी वहीं वहीं खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रखी। यह हथियार था टैंक।

0: अब टैंक का नाम टैंक क्यों पड़ा, दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ब्रिटेन जिस वक्त टैंक बना रहा था, या कहें कि वो हथियार बना रहा था, उस वक्त ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं ये जानकारी लीक ना हो जाए, और इसीलिए फाइलों में इस हथियार का नाम टैंक के नाम से रजिस्टर किया गया, और इसके तहत जितनी भी जानकारियां होती थी वो टैंक के नाम से ही रजिस्टर कर दी जाती थी, ताकि किसी भी देश को या किसी बाहरी मुल्क को इस बात की जानकारी ना हो कि ब्रिटेन कौन सा हथियार बना रहा है। धीरे धीरे हथियार बन गया, तैयार हो गया, लेकिन फाइनली नाम टैंक ही रहा। पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर ही थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें कि टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल धीरे धीरे तमाम देश टैंकों की अहमियत को समझने लगे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक एक सबसे बड़ा और मजबूत और भरोसेमंद हथियार बनकर उभरा था, और यही एक बड़ी वजह थी कि तमाम मुल्कों ने इस तकनीक पर फोकस करना शुरू किया।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा करता रहा है। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया, जिसका नाम रखा गया विजयन। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाक युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ चुका है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसके डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या फिर नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है, और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य हैं, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। अब देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक आसानी से निकल जाता है, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स, या कहिए कि उसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं, लेकिन फिर भी धसते नहीं है। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है, टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इससे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये होता है कि टैंक का वजन जमीन के किसी भी हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी नहीं धंसते।
2: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी नहीं धंसते। टैंक भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
0: टैंक की ताकत को दो चीजों से समझा जा सकता है, पहली है मैन्युवरेबिलिटी और दूसरा है वेट टू पावर रेशो, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि पहली बात, टैंक कितनी स्पीड के साथ चल सकता है, कितनी फुर्ती के साथ ये टर्न कर सकता है, और दूसरी बात, उबड़ खाबड़ रास्तों में किस तरीके से टैंक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकता है, यानी चाहे रेगिस्तान हो या ऊंचाई वाले पहाड़, टैंक कितनी ताकत से दुश्मन

इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।

0: टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी कि टैंक पर लगी तोप का साइज कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव होगा। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागने में सक्षम होगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा और साथ ही उसका नुकसान भी काफी ज्यादा होगा।
1: दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका इब्राहिम M1, और भारत का जो है वो T-90 टैंक है, और हमारे पास T-72 भी है, और अब विजेंद्रता बनाया है हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए, तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दिखलाना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T-90, T-72 और विजेंद्र।

टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चलता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है, कितनी तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर कर सकते हैं।

0: अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं, टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को ट्यूरेट कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। ट्यूरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगा सकते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला आसान हो जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में

0: चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है, और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
1: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान, चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
0: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजिशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिसगाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
1: युद्ध के मैदान में टैंकों के लिए एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन ने एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइन प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रॉल्स लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रॉल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छिड़का जाता है, जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगे हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जा रहे हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है, जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रस्ते में इसे दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बस्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
1: टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, और साथ ही इस पर एक्सप्लोसिव भी लगाया जाता है जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है, इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोला बेअसर साबित हो।
0: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है, और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
1: टैंक के मेन गन से एमिनेशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है और साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना दिया जाता है जो धुएं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 में एक बार फिर से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत की झलक देखने को मिली है। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सफलतापूर्वक सटीक आक्रमण का नजारा पेश किया गया। अभ्यास के दौरान स्काई स्क्राइपर ने वास्तविक ऑपरेशन वाले माहौल में तय लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर कार्रवाई करने और सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई में मॉडर्न वारफेयर में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दिखाया गया है। ऐसे माहौल में जब सेनाएं ड्रोन आधारित वारफेयर और लगातार जटिल होते मल्टी डोमेन काइनेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं, तब इस तरह के हथियारों की मौजूदगी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को साबित कर रही है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में आए दो गोल्ड मेडल, महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराया। अब तक भारत के हिस्से में 4 स्वर्ण के साथ कुल 28 मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिटमेजो। राजस्थान में आज इनफील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगी युद्ध कौशल, ऑब्जर्वर के तौर पे 32 देश भी शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा, एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वाज रियली वाचिंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गईं और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड्स क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती हैं।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफकोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 3 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तेजिंदर पारसिंह तूल ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल, ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी रच दिया इतिहास, ईरान को हरा के जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता, अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया एक नया रिकॉर्ड, 10वीं बार एशियाड मेडल किया अपने नाम। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में रहा शानदार प्रदर्शन, भारत के कुल अब तक 29 मेडल जीते। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हरा के अपने नाम किया मुकाबला। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में भारत का 4th मेडल, वहीं इस एशियन गेम्स में देश की झोली में आया 3रा गोल्ड मेडल। मिक्स डबल्स स्क्वॉश में भी देश को मिला मेडल, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने जिताया ब्रॉन्ज। स्क्वैश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर, वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हरा के फाइनल में बनाई अपनी जगह है। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर, स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने से चूके, एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड। एशियन गेम्स में आज सिल्वर मेडल से हुई थी भारत की शानदार शुरुआत, पुरुषों के मैराथन में सावन बरवाल ने जीता मेडल, उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है। बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा, इस इवेंट में 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में भारत को मिला था ब्रॉन्ज। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल, महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिगड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत, 1763 पॉइंट्स किए हासिल। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई, गिरगांव चौपाटी पर गणपति प्रतिमा का हुआ विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। बड़े हस्तियों के साथ हजारों स्वयं सेवक और स्थानीय नागरिक भी इस मुहिम में हुए शामिल, दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवान राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन, इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन, 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा इसका आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु दारा सिंह आएंगे नजर, अवतार गिल मेघनाथ और पुनीत सर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखी थी ये रामलीला, इस साल भी सुंदर सेट और नई तकनीक के जरिए नए रूप में दिखाया जाएगा त्रेता युग। आज से पितृपक्ष पितरों के तर्पण का पर्व, 10 अक्टूबर तक चलेगा महालय पक्ष, सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज, दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध, इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा, तर्पण पिंडदान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का किया जाता है श्राद्ध, पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत, इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, रोशनी सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को किया भक्तिमय, 22 से ज्यादा झांकियों से सजा शहर। इंदौर की सड़कों पर दिखा आस्था और कला का संगम, देवी देवताओं की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं का मोहमन, कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समा। खजराना गणेश मंदिर की झांकी से हुई उत्सव की भव्य शुरुआत, AI और 3D तकनीक से सजी इंदौर की झांकियां, झांकियों में आधुनिक तकनीक का खास इस्तेमाल। रोशनी से जगमगाया इंदौर, निकला झांकियों का कारवां, हाइड्रोलिक इफेक्ट्स और आकर्षक विद्युत सजावट ने बढ़ाई भव्यता। पुरुषों के साथ महिला कलाकारों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, नृत्य और करतबों ने बटोरी दर्शकों की खूब तालियां, झांकियों में दिखी बॉडी बिल्डिंग की झलक। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा, आर्य तारा शाक्य ने इंद्र यात्रा में किया नगर भ्रमण, सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। नई जीवित देवी ने धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा, आर्य तारा शाक्य की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, कुमारी के रथ के साथ उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इंद्र यात्रा में कुमारी का रथ काठमांडू की सड़कों से गुजरा, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की, उत्सव में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम नजर आया। ढोल नगाड़ों से गूंजा काठमांडू, निकाली गई भव्य रथ यात्रा, इंद्र यात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान हुए, इंद्र यात्रा में दिखी सदियों पुरानी नेवारी संस्कृति। कुमारी गणेश और भैरव के रथ रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र, हनुमान ढोका से शुरू हुआ रंगीन इंद्र यात्रा उत्सव, 8 दिनों तक काठमांडू में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का 56 भोग, अनंत चतुर्दशी के मौके पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गिरिराज तलहटी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर उनके आशीर्वाद लिया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक आयोजन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, विशेष सजावट ने गिरिराज तलहटी की बढ़ाई भव्यता। मंदिर में गिरिराज महाराज का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार, गिरिराज महाराज का पंचरत्न महाअभिषेक भी किया गया। गिरिराज महाराज के दरबार में भक्तों की आस्था का रंग, पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। केदारनाथ धाम में रात से बारिश जारी, बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं यात्री। बारिश के बीच बादलों से घिरे दिख रही है केदार नगरी, मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई यात्रा व्यवस्था की मुश्किलें, प्रशासन सतर्क, अलर्ट पे राहत और बचाव टीम है। हेमकुंड साहिब में फिर शुरू हुई बर्फबारी, जबरदस्त ठंड के बीच सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। किन्नौर के सीमांत इलाकों में सीजन की ताजा बर्फबारी की हुई शुरुआत। कुन्नू, चारंग, छितकुल और दुमती में बर्फ के सफेद चादर से मौसम खुशनुमा हुआ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। बर्फ गिरने से पहाड़ों का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। ताजा हिमपात के बाद किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़ा सर्दी का असर, मवेशियों के लिए करने पड़ रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में हुई राहत वाली बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट, उमस और गर्मी से मिली लोगों को राहत। रामनगरी अयोध्या में लगातार बारिश के बीच रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था भी अटक, छतरी लेकर रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़, 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा, 525 लोग सुरक्षित स्थानों पर किए गए शिफ्ट। बाढ़ के इस भयावह माहौल के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, बीमार छात्रा की बचाई गई जान। इंद्रावती जलाशय से पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ के कुछ हिस्सों में स्थिति और भी खराब, राहत कार्य जारी। सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना के नेक पहल, सेना के सर्जनों ने एलओसी पर 220 आम नागरिकों की आंखों की रोशनी लौटाई। सेना ने आयोजित किया ऑपरेशन दृष्टि का 10वां एडिशन, इसके तहत 2 दिनों में की गई 220 लोगों की आंखों की सर्जरी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंच के लाभार्थियों को जाना हालचाल, लोगों ने सेना की इस नेक पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी युद्धाभ्यास 2026 में स्काई स्ट्राइकर का सटीक हमला, टारगेट का पता लगाने और सटीक हमला करने की क्षमता का किया गया प्रदर्शन। इस कार्रवाई ने आधुनिक युद्ध में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता का किया प्रदर्शन, अनमैन सिस्टम्स की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाया गया। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं होंगी इसमें शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंची फ्रांसीसी वायुसेना के विमान, मेजर जनरल जूलियन सबेने की अगुवाई में लेंगे हिस्सा।

बांग्लादेश श्रीलंका अपने विमानों के साथ हो रहे हैं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होगा अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेगा F-35 विमान। फिल्म नई नवेली का गाना भाभी तबाही हुआ रिलीज, वायु ने लिखे हैं इसके लिरिक्स, तो वहीं शानदार गाने का कॉम्पोजिशन जीवी प्रकाश को मान्य किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस ग्लैमरस रेट्रो और विंटेज अवतार में नजर आ रही है। गुरमीत चौधरी, ईशा मालविया पहली बार फिल्म तुम मेरे हो में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नीम करोली के बाबा के बाद पर्दे पे दिखेगी राजस्थान के बाबा रामदेव पीर की कहानी, साल 2027 में रिलीज होगी कृष्ण अवतार। सीताराम की गूंज के साथ 50 दिन से बॉक्स ऑफिस पर कायम है फिल्म हनुमान अंश, 381 करोड़ रुपए के पार हुई फिल्म की कमाई। चीन के हुनान प्रांत में 2026 ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। 16 देशों की 24 टीमें दिखा रही अपना दमखम। युआनलिंग में दुनिया भर की टीमें ड्रैगन बोट रेस में ले रही हैं हिस्सा। टीमें ताकत और तालमेल के साथ जीत के लिए चला रही हैं पैर। ड्रैगन बोट रेस की जड़ें चीन की 2000 साल पुरानी लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। आज यही खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ड्रैगन बोट रेस अब चीन तक सीमित नहीं रहा है, दुनिया के 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में इस खेल की टीमें मौजूद हैं। अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही ताल में नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। रेस में टीम वर्क और तालमेल सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। चोंगचिंग में मिड ऑटम फेस्टिवल पर आसमान में शानदार ड्रोन शो, ड्रोन से चांद खरगोश और मून पैलेस की तस्वीरें बनाई गई। सैकड़ों ड्रोन ने रात के आसमान को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया। नदी किनारे की रोशनी के साथ नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। शो में मशहूर चीनी कविता की पंक्तियों को भी आसमान में उकेरा गया। चांद और दूर रहे अपनों के रिश्ते का संदेश दिया गया। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में आधुनिक तकनीक का शानदार इस्तेमाल हुआ। केबल कार, लालटेन और ड्रोन शो ने लोगों को खास अनुभव दिया। मिड ऑटम फेस्टिवल चीन के प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में शामिल है। इस मौके पर परिवार साथ आते हैं, चांद देखते हैं और मून केक बांटते हैं। शंघाई में वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में पहली बार ड्रोन का हो रहा है मुकाबला। प्रतियोगी ड्रोन बनाकर उड़ाने के साथ प्रोग्रामिंग और मरम्मत भी कर रहे हैं। ड्रोन इवेंट में 11 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन की इस प्रतियोगिता का नतीजा रविवार को सामने आएगा। प्रतियोगियों को इंजीनियर, प्रोग्रामर और पायलट तीनों की भूमिका निभानी है। उन्हें ड्रोन असेंबल करने, सॉफ्टवेयर ठीक करने और मुश्किल उड़ान भरने की परीक्षा देनी होगी। चीन के जेंगचेन ने सबसे पहले ड्रोन असेंबल कर टेस्ट फ्लाइट शुरू की। पहले 3 दिनों के प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ भी हुई है। ड्रोन अब सुरक्षा, खेती, सर्वे और मैपिंग जैसे कई कामों में किए जा रहे हैं इस्तेमाल। प्रतियोगिता के अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन टेक्नीशियन के तौर पर भविष्य में मौके और भी बढ़ सकते हैं। हंगरी की नई स्टडी में डॉग्स और इंसानों के दिमाग की तुलना हुई। स्टडी में बड़ा दावा, डॉग्स का दिमाग भी बातचीत को समझता है। नतीजों में बातचीत के पैटर्न को प्रोसेस करने में मिली समानता। डॉग्स के दिमाग पर भाषा का असर, इंसानों जैसी बातचीत प्रोसेस करते हैं डॉग्स। बूडापेस्ट के वैज्ञानिकों ने 20 डॉग्स और 20 इंसानों पर किया इसका अध्ययन। ईईजी से बातचीत सुनते समय डॉग्स के दिमाग की गतिविधि को मापा गया। डॉग्स में कॉन्सोनेंट पैटर्न पर रिदमिक एक्टिविटी ज्यादा मिली। डॉग्स सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पैटर्न भी पकड़ सकते हैं। डॉग्स ने पहचाने बातचीत के पैटर्न्स। रिसर्च में डॉग्स को बिना ब्रेक वाली लगातार बातचीत सुनाई गई। डॉग्स के दिमाग के अलग अलग स्पीच पैटर्न पर अलग प्रतिक्रिया दी। डॉग्स के दिमाग ने कॉन्सोनेंट को दी अहमियत। डॉग्स को समझने की रिसर्च में नया मोड़। साइंस में प्रकाशित स्टडी ने कुत्तों की स्पीच प्रोसेसिंग पर नई रोशनी डाली। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में बच्चों की कला बनी आवाज। रोमाना आर्ट सेंटर में बच्चे अपने अनुभव को चित्रों में उतार रहे हैं। चेक पॉइंट छापों और हिंसा के पीछे उम्मीद और आजादी भी रंग भर रही है। पेंटिंग में बच्चों ने दिखाई आजादी की उम्मीद। 10 वर्षीय तालिया सबाह ने पिंजरे से उड़ते पक्षियों की तस्वीरें बनाई।
हेब्रोन में कलाकार सारा अबू मादी का घर बना बच्चों का आर्ट सेंटर, 2020 में रोमाना सेंटर शुरू किया।

0: का मकसद बच्चों को भावनाएं व्यक्त करने की सुरक्षित जगह देना। रोमाना की कलाकृतियां विदेशों तक पहुंची, बच्चों की कला वेस्ट बैंक से बाहर भी हो रही है प्रदर्शित। पुराने स्टोर रूम से शुरू हुआ रोमाना अब रंगीन चित्रों से सजा सेंटर बन गया है। बस्तियों के विस्तार के बीच बच्चों की चित्रकारी, रोमाना की कार्यशालाओं में बच्चे अपनी कल्पनाओं को दे रहे हैं उड़ान। बच्चे रंगीन पेंटिंग्स के बीच बैठकर बनाते हैं कला।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं एक और शानदार खबर। प्रधानमंत्री को समय समय पर मिले उपहारों को अपने घर ले जाने का मौका अब आपको भी मिल सकता है। असल में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले खास उपहारों की नीलामी चल रही है। कुल 1498 से ज्यादा ऐसे खूबसूरत सामानों को ई नीलामी के लिए पेश किया गया है, जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों की कला संस्कृति और परंपरा को अपने में समेटे हुए कलाकृतियां शामिल हैं। कई तस्वीरें और अनूठी मूर्तियां भी इसमें शामिल हैं।
8: एक से बढ़कर एक भव्य प्रतिमाएं, शानदार पेंटिंग्स, शोपीस और ऐसी तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं, जिनको न केवल आप देखना चाहेंगे बल्कि अपने पास सहेज कर रखना भी चाहेंगे। इन दिनों दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही प्रदर्शनी में पीएम मोदी को मिले 70 उपहारों और स्मृति चिन्हों को डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जबकि कुल 1498 से ज्यादा ऐसे खूबसूरत सामानों को ई नीलामी के लिए पेश किया गया है। इनमें देश के अलग अलग हिस्सों की कला संस्कृति और परंपरा को अपने में समेटे हुए कलाकृतियां हैं, तो साथ ही कई तस्वीरें और अनूठी मूर्तियां भी हैं।
9: यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है बालाजी की जो है तस्वीर नजर आ जाएगी, वेंकटेश्वर बालाजी के स्टैचू है जो वो नजर आ जाएगा, और इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर राम दरबार जो है वो नजर आएगा, जिसमें आपको राम लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी जो है वो नजर आ जाएंगे, और इनका जो बेस प्राइस है वो भी नजर आ जाएगा। चीजें कहाँ से, मतलब पूरी की पूरी जो गिफ्ट्स जो यहाँ पर लाए गए हैं उसके बारे में हर एक बारीक डिटेल जो है वो आपको ऑनलाइन जो है उसकी जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो हर तरफ आपको किसी ना किसी तरीके की जो कला है, खूबसूरत प्रतिमाएं हैं, वो देखने को मिलेगी।
8: इस कलेक्शन में मिथिला का पारंपरिक पाग है, तो साथ ही असम की लोकप्रिय टोपी भी है। नहीं, कई अनूठी पेंटिंग्स भी इस कलेक्शन में मौजूद हैं।
9: ट्री ऑफ लाइफ है ये, आप देख ही सकते हैं। और ये जो गोंद आर्ट होती है एमपी की जो खास कला है वो यहाँ पर जो है लगाई गई है और ये टॉप 10 में आती है। और अगर इसके बेस प्राइस की हम बात करें तो ये 7 लाख के करीब जो है इसका बेस प्राइस है। हालांकि बेस प्राइस है, इस पर बिड भी जो है वो लगातार लगेगी। 2 अक्टूबर तक बिड का लास्ट डेट है, तो तब तक जो भी इसकी हाईएस्ट बिड होगी ये उसी को ही सोल्ड आउट जो है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बेस प्राइस के साथ हर एक जानकारी जो है यहाँ पर दी जाती है। इनमें जो है प्रोडक्ट कोड है जो कि आप इनके पोर्टल में जाकर जो है वो देख सकते हैं।
10: लाखों रुपए कीमत वाले इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी पीएम मोमेंटोज ई ऑक्शन पोर्टल के जरिए की जाती है। इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इन सामग्रियों की नीलामी शुरू की गई।
9: आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी की जो पेंटिंग है वो नजर आ जाएगी और 5,40,000 इसकी कीमत है। आप देख सकते हैं फाइन गोल्ड प्लेटेड राधा कृष्ण जी की जो ये मूर्ति है ये यहाँ पर लगाई गई और ये टॉप 10 में आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। आपको ये एक आपको यहाँ पे टेनिस रैकेट जो है वो मिल जाएगा। हालांकि ये एक प्लेयर का रैकेट है जो कि पीएम जी को जो है पीएम को गिफ्ट किया गया है। 2 लाख जो है इसकी बेस प्राइस जो है कीमत जो है वो यहाँ पर दी गई है।
10: प्रधानमंत्री को मिले ये गिफ्ट और स्मृति चिन्ह सिर्फ प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है बल्कि इन्हें आम लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया भी बनाया गया है। हर वस्तु की एक बेस प्राइस तय की जाती है और इसके बाद ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। नीलामी से मिली रकम का इस्तेमाल गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में किया जाता है। अगले महीने की 2 तारीख तक इन शानदार गिफ्ट्स पर बोलियां लगेंगी। अगर आप भी इन सामग्रियों को अपने घर में यादगार के रूप में रखना और अपने कलेक्शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया मौका है।
9: किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं अपने घर ले जाने हैं तो ये सबसे बेस्ट मौका है। हर साल 7 सालों से इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके का ऑक्शन जो है वो किया जाता है। उनके जन्मदिन के समय जो है इस तरीके के ऑक्शन को जो है वो लगाया जाता है और उसमें हर एक गिफ्ट को यहाँ पर रखा जाता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
11: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 6 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया KJ लेजमेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज। 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल। ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कहा है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जेन जी के फेवरेट श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, एंड आपको कोटि कोटि प्रणाम।
1: द मैन हु इंस्पायर्स मिलियंस वर्ल्ड वाइड, मोदी जी आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम।
0: ऐसा बोलते हैं अगर राम जी को सच्चे मन से बुलाना तो भगवान जी सच में आते हैं। सो दिल्ली वालों सब लोग और मोदी जी आप भी साथ में अपने हाथ ऊपर करके सब बोलो जय श्री राम। कैन वी ऑल क्लैप टू दिस बीट, कम ऑन,
1: हाथ ऊपर कर।

जब चित पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती का, तो मैं अकेला नहीं गाऊंगा, आप लोगों के साथ गाएंगे।

Pacific's Uber Dynamics. Dynamics. चट्टा लटाना कभों सवार हैं, दीसत महाभयंकर।

इंटरनेट पर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि गाय क्यों मर रही, वो घुमर रही हैं या मर रही हैं। इस मंच से आज इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, मैंने बताया नहीं किसी बात, वो है गाय क्यों मर रही, क्यों मर रही हो। लेकिन वो मर रही नहीं है, वो मर रही है। मर रही में एक इज्जत है, जो आप में और तू में अंतर है ना, वो मर रही और मर रही में है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों

0: मित्रों की आत्मा को शांत जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 में एक बार फिर से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत की झलक देखने को मिली है। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सफलतापूर्वक सटीक आक्रमण का नजारा पेश किया गया। अभ्यास के दौरान स्काई स्क्राइपर ने वास्तविक ऑपरेशन वाले माहौल में तय लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर कार्रवाई करने और सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई में मॉडर्न वॉरफेयर में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दिखाया गया है। ऐसे माहौल में जब सेनाएं ड्रोन आधारित वॉरफेयर और लगातार जटिल होते मल्टी डोमेन काइनेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं, तब इस तरह के हथियारों की मौजूदगी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को साबित कर रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में बीती रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाकों और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसके बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच भी दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय हेमकुंड साहिब समेत पूरे चमोली जनपद में मौसम में ठंड काफी बढ़ गई है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलने वाली है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है, कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया KGL लेजमेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज, 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल, ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और सच्ची खबर अच्छी खबर में सबसे पहले बात हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुदेशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बन रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

0: आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: राजस्थान में भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 में एक बार फिर से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत की झलक देखने को मिली है। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सफलतापूर्वक सटीक आक्रमण का नजारा पेश किया गया। अभ्यास के दौरान स्काई स्ट्राइकर ने वास्तविक ऑपरेशन वाले माहौल में तय लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर कार्रवाई करने और सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई ने मॉडर्न वारफेयर में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दिखाया। ऐसे माहौल में जब सेनाएं ड्रोन आधारित वारफेयर और लगातार जटिल होते मल्टी डोमेन काइनेटिक ऑपरेशन के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं, तब इस तरह के हथियारों की मौजूदगी भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फी बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो पितृ पक्ष का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान श्राद्ध करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ में तर्पण करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने वालों की भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। मान्यता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं उन्हें सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भूमि गया जी में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज से शुरू हुए पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर लोग पूर्वजों को उनका पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। मान्यता है कि गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले की अवधि में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है और पितरों से आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी आज खराब मौसम और बारिश के बीच बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही ब्रह्म कपाल में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु अपने पितरों की आत्म शांति और मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान और तर्पण करते हुए नजर आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात एशियन गेम्स की कर लेते हैं। भारत के खिलाड़ियों ने अब तक एशियन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आपको बता दें मेडल टैली की अगर हम यहां पर बात करें तो भारत 4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 30 मेडल अब तक जीत चुका है। टीम मेडल टैली में भारत 10वें स्थान पर है। भारत ने आज एशियन गेम्स में कबड्डी के दोनों गोल्ड जीत लिए हैं। महिला टीम ने ईरान को 37-34 और पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पुरुष टीम ने भी ईरान को 40-34 से हरा के खिताब अपने नाम कर लिया। पुरुष टीम ने लगातार 10वीं बार और महिला टीम ने लगातार 5वें एशियाड में मेडल जीता है। एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में 20.64 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर जीता है। प्राची चौधरी ने 400 मीटर में 53.21 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। वहीं भारत को मैराथन और शूटिंग में भी सिल्वर मेडल्स मिले हैं। सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। एशियन गेम्स के पुरुष मैराथन में भारत को 44 साल बाद मेडल मिला है और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम इवेंट में आशी चौक से तिलोत्तम सेन और विदर्शा विनोद ने सिल्वर जीता है। वहीं बात अगर स्क्वाश की करें तो स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह फाइनल में पहुंचे। पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रेटर नोएडा में इन दिनों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। यहां उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों, स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प और आधुनिक उद्योगों को एक ही मंच पे पेश किया जा रहा है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसमें यूपी की खास मिठाइयों और मसालों से लेकर सजावटी सामानों की शानदार झलक देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं इस ट्रेड शो में और क्या कुछ खास है, आइए आप भी देखिए।
2: एक से बढ़कर एक मिठाइयां, कहीं लड्डू हैं तो कहीं पेड़े, कहीं चंद्रकला का स्टॉल लगा है तो कहीं किसी ऐसी मिठाई का जिसको देखकर ही मुंह में पानी आ सकता है और खाने के लिए जी लल जा सकता है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा में लगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जायके और खान पान के अनूठे सामान यहाँ पेश किए गए हैं। खास बात यह है कि मेले में घूमते हुए इन चीजों के बारे में और भी बड़ी दिलचस्प बातें पता चल रही हैं। अब कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू के बारे में ही जान लीजिए।
3: ठग्गू के लड्डू जो नाम है ये मेरे बाबा ने रखा था। वो गांधी जी के भक्त थे और गांधी जी की सभाओं में जाया करते थे और उस टाइम गांधी जी का कहना था शक्कर सफेद जहर है, बिना शक्कर के लड्डू बनता नहीं है। हम आपसे आपका पैसा भी ले रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। अपने अंदर झांका, ठग्गू नजर आया, इसलिए ठग्गू के लड्डू लिखकर टांग दिया।
4: क्या बात है। और उसी टैगलाइन के
3: साइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना।
2: इस बार ट्रेड शो में थीम वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन रखी गई है तो और भी कई लाजवाब मिठाइयों के दीदार यहाँ पर हो रहे हैं जिसका आपने शायद नाम भी ना सुना हो।
4: तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये स्टॉल है उन्नाव की एक लोकल मिठाई है, इसका नाम कुशली है। ये नाम भी शायद आपने पहली बार सुना हो। संदीप, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये बनती कैसे है कुशली।
5: ये
6: सर बनी किससे होती है?
5: शुद्ध खोया से होता है। इसमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम डाला जाता है, पिस्ता डाला जाता है, उसके बाद ये उस ऊपर से चीनी की लेयर कोटिंग करके तब इसको लड्डू टाइप का बनाया जाता है, गोल गोल।
4: तो ऊपर जो ये आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये चीनी की कोटिंग है, अंदर उसके मावा है, मावे में ड्राई फ्रूट्स हैं।
2: इसी तरह और भी कई शानदार मिठाइयां इस मेले में मौजूद हैं।
4: अब इस मटकी को देखिए आप, कितनी खूबसूरती से जो पुराना एक लाल कागज हुआ करता था उससे इसको पैक किया गया है रस्सी बांध के। अब आप बताइए इस मटकी में क्या है। इस मटकी में लड्डू है और ये लड्डू हैं हरदोई के, हरदोई संडीला के आसपास यूपी में इस तरह के लड्डू बहुत बनाए जाते हैं जो कि मटके में रख कर बेचे जाते हैं। कहानी इनकी क्या है, इस मटकी का साइज ठीक वही साइज है कि यह मटकी ट्रेन के किसी डब्बे में ट्रेन के बाहर से खिड़की के अंदर आसानी से पास हो जाए, मतलब अगर कोई खरीदे तो उस खिड़की से ही इस मटकी को अंदर भेजा जा सके, यही इसको मटकी में रखने का मकसद भी था और थोड़ा सा लड्डू में सौंधापन भी आ जाए।
2: लड्डुओं को मटकी में पैक करने की वजह तो आपने जान ली, अब ये भी जान लीजिए कि ये लड्डू आखिर बाकी ऐसे प्रोडक्ट से अलग कैसे हैं।
7: सर इसमें खासकर किसी भी चीज का कोई मिलावट नहीं होता है, प्योर बेसन के बूंदी का लड्डू बनता है, उसके ऊपर से हम लोग चीनी का बूरा लगाते हैं और मोस्टली चीज़ों का यूज़ होता है, बाकी कोई पेजोरेटिव चीज़ों का यूज़ नहीं होता है इसमें। इलायची दाने का स्वाद के लिए इलायची दाने का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद खिला दाना जिसको हम लोग चीनी का बूरा बोल के ऊपर से लगा के प्योर बेसन की बूंदी को एकदम मैश करके उसके बाद एक लड्डू बनता है। और सबसे खास बात यह है कि इसको मिट्टी की प्याली में हम लोग पैक करते हैं जिससे इसमें मिट्टी का जो सौंधापन है वो आए और इसमें ट्रेडिशनल पैकिंग है।
2: वहीं सुल्तानपुर के ये पेड़े भी अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि दावा किया जाता है कि इनमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं होता।
8: आजकल क्या है, मीठे को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है लोग क्या है कि मीठे की तरफ आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो उनको लगता है कि शुगर या तो कम होना चाहिए या कुछ शुगर फ्री हो, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हो। तो हम लोगों ने इसको शुगर फ्री भी बनाया है, पूरी तरह से ये खजूर से बना हुआ है। इसी तरह से हम लोग आंवला से भी बनाते हैं और उससे भी हम लोग ये करते हैं कि जैसे लोगों को हर्बल टेस्ट मिल सके और उसकी मिठास मिल सके, मिठास नेचुरल हो, इसलिए हम लोग कोई चीनी का प्रयोग नहीं करते, उसका ऑथेंटिक जो मीठापन होता है वो होता है।
2: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिर्फ खाने पीने की ही नहीं, यानी बेहतरीन जायके से मन को तृप्त करने वाली और पेट भरने वाली चीजें ही नहीं हैं, बल्कि इनके साथ साथ आपका दिल खुश कर देने वाली बेहतरीन कारीगरी का भी दीदार यहां पर हो रहा है। इस स्टॉल पर पेश किए गए ये सामान देखने में मार्बल के लगते हैं, लेकिन असल में ये लकड़ी से बनाए गए हैं।
9: YouTube से सीखा, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, मज़ा आया और आज उस मुकाम में पहुंच गया कि मुझे इंडिया में तो रिकॉग्निशन मिल रही है, वर्ल्ड में भी रिकॉग्निशन मिल रही है जी। आप ये देखिए, मैंने वर्ल्ड का बिगेस्ट ईवल आई, जिसे नजर बट्टू कहते हैं, वो बनाया है, आप इनको दिखा।
10: वर्ल्ड का बिगेस्ट है?
9: ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ईवल आई है जी।
10: क्या साइज है इसका?
9: ये 32 इंचेस का इसका डाया है और ये जो लोग लेते हैं इसको, क्योंकि वो नजर बट्टू आके काला टिक्का लगाना, तो ये बिकता है और ये अच्छा भी लगता है। और आप मेरे बाहर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वो अवार्ड मिले हुए वॉचेज हैं, इनको दिखाइए जी बाहर आके, ऊपर
10: अवार्ड मिली हुई वॉचेज हैं।
9: हाँ, ये जो तीनों वॉचेज हैं, इसको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
10: ट्रेड शो में यूँ तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब लुप्त होने की कगार पर हैं और इस मंच के जरिए उन्हें बनाए रखने की, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।
2: ट्रेड शो में आगरा से आए विकास यादव स्टोन आर्ट का काम करते हैं। मशीन और एआई के दौर में हाथों से बारीकी से की गई कारीगरी का ये अनोखा नमूना पेश कर रहे हैं।
11: कारीगर अभी कम होते जा रहे हैं, उतना नहीं था पहले, कारीगर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से प्रयास किया जा रहा है कि कारीगरों को प्रोत्साहन मिले और काम बढ़े, जिससे हम लोगों का काम बढ़ा है पहले से और चल रहा है आगे।
2: यहाँ पर डेकोरेशन और सजावटी सामान की कई स्टॉल्स लगे हैं। इसके जरिए यूपी में छोटे छोटे इलाकों में शुरू हुए स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ क्षेत्रीय कलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
12: अभी हमें 3 साल हुए हैं स्टार्ट किए हुए और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में हम अभी 1.5 साल पहले इंक्यूबेट हुए हैं और मोस्टली हमारा सारा लिपन आर्ट से ही स्टार्ट किया था, पर अब हम और भी काफ़ी सारे आर्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं। हमारा मोस्टली प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, दुबई जाता है, USA जाता है।
2: इस व्यापार मेले में हैंडीक्राफ्ट्स और खानपान के सामानों के साथ साथ और भी सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे में ये मेला कारोबार और ग्लोबल मार्केट के कनेक्शन का बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर भी सामने आया है।
10: लगभग 2400 से ज्यादा देश भर के, या फिर यूं कहें कि खासकर यूपी के एग्जीबिटर्स यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर पहुंचे हैं। 85 ऐसे देश हैं जिनके जो बायर्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, 550 से ज़्यादा उनकी संख्या है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर बार इंटरनेशनल ट्रेड शो के ज़रिए यूपी के जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको एक नई दशा मिलती है, इस बार भी कोशिश वही है कि जो नए छोटे व्यापारी हैं उनको कम से कम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर उनके प्रोडक्ट को बाहरी देशों तक पहुँचाया जाए, उनकी तरक्की का रास्ता तय किया जाए।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का ये शानदार मौका है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बात फिल्म लव एंड वॉर की कर लेते हैं, जो संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म है। इसे लेकर काफी लंबे समय से बस भी है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद विकी कौशल का पहला लुक जो है वो सामने आ गया है। दुनिया भर में ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा।
13: मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज बना हुआ है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विकी कौशल का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। लव एंड वॉर से सामने आई विकी कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का काफी धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है। वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। विकी कौशल को इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है। विकी के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में विकी कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। माथे पर चोट का निशान, मोटी मूछे और विंटेज हेयर स्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं। डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द मिलते हैं। लव एंड वॉर से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रोबीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक हाथ खून से सना हुआ दिख रहा है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, इश्क भी जंग भी। इसके बाद आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमे उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। पोस्टर में वो मरून कलर की हाई स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आग भी दिलों की जान भी। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अब ये 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लव एंड वॉर की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। सबसे पहले इसकी रिलीज की घोषणा जनवरी 2024 में हुई थी। उस समय फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी। बड़े स्तर पर हो रही शूटिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म रिलीज होने की बात सामने आई। इस बीच 14 अगस्त 2026 की रिलीज डेट की भी चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म का काम तय समय से पूरा नहीं हो सका, खासतौर पर बड़े VFX और हवाई एक्शन सीन्स के कारण समय बढ़ा। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट तय की है जो 2027 के जनवरी की है। उम्मीद की जा रही है कि 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अच्छी खबर सच्ची खबर में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
15: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें
0: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं पितृ पक्ष में अलग अलग चीजों के प्रयोग के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जल की यानी वाटर की, क्या महत्व है इसका। देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु, टेंजिबल जो आइटम है वो जल है, जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बिना जल के संभव नहीं है। जल में खड़े होकर अंजुलि में अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें जल लेकर पितरों को अगर आप जल दें तो सर्वोत्तम होगा। और पितृ पक्ष में सूर्योदय के पहले पीपल में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप पितृ पक्ष में जानबूझकर जल की बर्बादी करेंगे या करते हैं तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष में जल की बर्बादी करने से आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम में अभी विलंब होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जैसे जल बड़ा महत्वपूर्ण है आचमन के लिए, संकल्प लेने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, पूजा के लिए, प्राण के लिए, वैसे ही अगर हम परंपरागत रूप से देखें, भारतीय परंपरा में देखें, तो अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत सारे धर्मों में अग्नि की बड़ी मान्यता है और इसीलिए सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। आप किसी भी धर्म में देखिए, दीपक के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में, अलग अलग तरीकों से अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह के समय वर और कन्या अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कोई आहुति डालते हैं भावनाओं से, मंत्रों से, तो ये आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सारे भोजन में से जरा जरा सा भोजन निकाल करके इनकी सबसे पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप सुगंध की 5 आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलेगी। महीने में 1 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर सुगंधित हवन सामग्री 11 आहुति कम से कम अग्नि में उस हवन सामग्री की दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, कल्याण होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो हर दाल का अपना महत्व है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन विशेष रूप से पितरों की पूजा में, तंत्र की पूजा में उड़द की दाल का प्रयोग बहुतायत में होता है, काफी किया जाता है। क्या महत्व है इसका? उड़द की जो दाल है, काली उड़द की दाल, ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। और पितरों के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं में उड़द की दाल की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल की जो वस्तुएं हैं उसका काफी प्रयोग होता है। अगर किसी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो

अगल बगल में किसी का देहांत तो हो गया, आपको डर लग रहा है, तो शनिवार के दिन एक मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल पीपल के नीचे रखिए, उस पर जरा सा दही और सिंदूर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके मन का वहम और भय गायब हो जाएगा। जिन लोगों को अज्ञात डर सताता हो, अज्ञात बाधा लगती हो, ऐसे लोग अगर काली उड़द की दाल थोड़ी सी रख के शनिवार को पीपल के नीचे उस पे जरा सा दही और जरा सा सिंदूर गिरा दें, लगा दें, तो निश्चित रूप से इस तरह का डर और वहम समाप्त होगा। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, ऑफिस की तमाम समस्याएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। काला तिल बहुत सारी पूजा उपासना में, विशेष तरह के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। काले तिल का पितृपक्ष से, पितरों से क्या संबंध है? देखिए, काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का दान अगर आप करें, थोड़े से काले तिल का दान शनिवार को या अमावस्या को आप करते रहें, तो अज्ञात बाधाओं से, अननोन प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। जल में काला तिल डाल करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। जब रोज दोपहर के समय में पितरों को जल दिया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है, तो जल में काले तिल डाले जाते हैं और तिल मिला हुआ जल अपने पितरों को अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, हिंदू परंपरा की पूजाओं में पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पत्तों का, यहां तक कि घास का भी महत्व है। जैसे आप देखे होंगे कि गणपति को पूजा में दूर्वा चढ़ती है, एक तरह की घास है, कुश भी एक तरह की घास है। पितरों से इसका क्या संबंध है? माना जाता है कि कुश श्री

शरीर विष्णु के अंश से बना है, ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है, अमृत तत्व पाया जाता है। जल में कुश को रात भर भिगा करके सुबह उसी जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है कुशोदक से, और कुशोदक से अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो नियम यह है कि जल में काले तिल मिला लिए जाएं और हाथ में कुश ले लें या कुश घास की अंगूठी, पैंती कहते हैं उसको, उसको आप पहन करके तब तर्पण करेंगे, तब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, मेंटल डिप्रेशन रहता है या मन की समस्याएं परेशान करती हैं, तो जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कुश घास का शरबत बनाया जाता है आयुर्वेद में, और इसको पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। मुख्यतः पितृपक्ष में जो रोज तर्पण किया जाता है, जो रोज पितरों को जल दिया जाता है, वो बिना काले तिल और बिना कुश घास के कतई संभव नहीं है। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए, गाय की, कुत्ते की, भैंस की, पशुओं की सेवा करिए, और जब आपको मौका मिले तो पितृपक्ष में किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करिए। अगर आप पितृपक्ष में ये शुभ कार्य करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा है, क्या करें कि मकान जल्दी बने? अपने भाई से एक तांबे का सिक्का ले आइए, किसी भी दिन मंगलवार को लाएं तो बड़ा अच्छा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के साथ आपको मकान होने का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की पौराणिक लोक कथाओं पर बेस्ड फिल्म द वन ने सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि आज इसने अब तक 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है।

0: रहस्य रोमांच और छठ पूजा के रंग में रंगी फिल्म द वन ने धमाकेदार ओपनिंग की है। पौराणिक और भारतीय लोक कथाओं पर बेस्ड द वन ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9.60 करोड़ की ओपनिंग ली है। द वन के अगर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने भारत में 8 करोड़ तक का बिजनेस किया है। हालांकि फिल्म की कुल बॉक्स ऑफिस सफलता वीकेंड की कमाई और आने वाले दिनों में इसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। दरअसल पहली बार बॉलीवुड फिल्म में छठ पूजा दिखाने को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, जिसकी वजह से अच्छी एडवांस बुकिंग भी हुई थी। फिल्म के रिलीज पर दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला जुला रिव्यू मिला है, फिर भी फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी द वन को ओपनिंग डे पर नानी की द पैराडाइज से मुकाबला करना पड़ा, जिसके चलते इसकी कमाई पर भी असर पड़ा, लेकिन फिर भी इसका कलेक्शन अच्छा रहा। द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के हिंदी 2D वर्जन ने पहले दिन कुल 28.25% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी नाइट शो में देखी गई, ऑक्यूपेंसी 41.46% रही। शाम के शो में 26.08 और दोपहर की स्क्रीनिंग में 24% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सुबह के शो में 12.23% ऑक्यूपेंसी रही। फिल्म के पहले दिन देश भर में 6,746 शो हुए। पहले दिन के आखिर तक इसका इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ के करीब रहा। द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी बिहार के एक रहस्यमय जंगल की है, जहां दिन ढलने के बाद प्रवेश निषेध होता है। फिल्म की कहानी वहां के 400 साल पुराने माँ वन देवी के मंदिर और वहां से जुड़ी रहस्यमय लोक कथाओं पर आधारित है। एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार को फिल्म में नास्तिक दिखाया गया है, तो वहीं उनकी पत्नी ममता का किरदार निभाने वाली तमन्ना भाटिया की आस्था में बहुत गहराई दिखाई गई है। द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है। वहीं सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, मनीष पॉल और अवतार गिल सहायक भूमिकाओं में हैं। परमानेंट रूममेट्स और पंचायत जैसे शो के मशहूर निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। द रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया। KGL में जो राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आगाज। 8 देशों की वायु सेनाएं दिखाएंगे युद्ध कौशल। ऑब्जर्वर के तौर पर 32 देश भी शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिपकर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। सो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके लिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलके युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है।

0: एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
1: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
0: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
1: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला

0: जा सके। रंग क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है? पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है? और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है? कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: अनमैन ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी में सैनिक बैठे होते हैं और उनके पास होती है एक बड़ी सी वीआर स्क्रीन जो ये एहसास कराती है कि सैनिक पूरी तरह से उस टैंक में ही बैठे हैं, जबकि सैनिक इस व्हीकल में बैठकर उस टैंक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे कि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDE, पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोसिव। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक एनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी कि केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियमों के मुताबिक गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर के ही हाथ में होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
1: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको

0: ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
1: T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या है कि इसे अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 किलोमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6-7 सेकंड का वक्त लेता है, कम गहरी नदियों को आसानी से पार भी कर सकता है। लाइटवेट टैंक की बात की जाए तो भारतीय सेना के पास T-72 अजय टैंक है और उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं और इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
0: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
1: भारतीय सेना के पास T-72 के 3 वर्जन्स हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैक इम्प्रूव्ड अजय, जिनका इस्तेमाल भारत करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो के तहत काम शुरू किया था और इसके तहत टैंकों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी इनके अंदर हर वो अपग्रेडेड तकनीक फिट की जाएगी जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है। साथ ही साथ अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी तब्दील किया जा सकता है। दरअसल सेना का मानना है कि इन सुधारों के बाद T-72 टैंक आने वाले वर्षों में प्रभावी होंगे और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे अपने हिसाब से ही ढाला जा सकता है। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक के बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी कर चुका है। रण क्षेत्र में टैंक की कितनी अहमियत है, युद्ध के समय में टैंक कितना बड़ा योद्धा साबित हो सकता है, इसकी जरूरत कब और कैसे महसूस हुई, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रणक्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने की ही हुआ करती थी। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी जाती है उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उसमें मशीनगन से लैस होकर तैनात रहते हैं।

इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार, बाढ़ और लैंड माइंस से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलता था। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद ही हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेनाएं जहां जहां थी वहीं वहीं खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रखती। यह हथियार था टैंक।

0: अब टैंक का नाम टैंक क्यों पड़ा, दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ब्रिटेन जिस वक्त टैंक बना रहा था, या कहें कि वो हथियार बना रहा था, उस वक्त ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं ये जानकारी लीक ना हो जाए, और इसीलिए फाइलों में इस हथियार का नाम टैंक के नाम से रजिस्टर किया गया, और इसके तहत जितनी भी जानकारियां होती थी वो टैंक के नाम से ही रजिस्टर कर दी जाती थी, ताकि किसी भी देश को या किसी बाहरी मुल्क को इस बात की जानकारी ना हो कि ब्रिटेन कौन सा हथियार बना रहा है। धीरे धीरे हथियार बन गया, तैयार हो गया, लेकिन फाइनली नाम टैंक ही रहा।
1: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर ही थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें कि टैंक सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
0: वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल धीरे धीरे तमाम देश टैंकों की अहमियत को समझने लगे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक एक सबसे बड़ा और मजबूत और भरोसेमंद हथियार बनकर उभरा था, और यही एक बड़ी वजह थी कि तमाम मुल्कों ने इस तकनीक पर फोकस करना शुरू किया।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा करता रहा है। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया, जिसका नाम रखा गया विजयन। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाक युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ चुका है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसके डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या फिर नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है, और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इंपॉर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य हैं, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। अब देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक आसानी से निकल जाता है। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए कि उसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं, लेकिन फिर भी धसते नहीं है। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है, टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इससे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये होता है कि टैंक का वजन जमीन के किसी भी हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी नहीं धंसते।
0: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी नहीं धंसते। टैंक भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। टैंक की ताकत को दो चीजों से समझा जा सकता है, पहली है मैन्युवरेबिलिटी और दूसरा है वेट टू पावर रेशो, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि पहली बात, टैंक कितनी स्पीड के साथ चल सकता है, कितनी फुर्ती के साथ ये टर्न कर सकता है, और दूसरी बात, उबड़ खाबड़ रास्तों में किस तरीके से टैंक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकता है, यानी चाहे रेगिस्तान हो या ऊंचाई वाले पहाड़, टैंक कितनी ताकत से दुश्मन से लोहा ले सकता है। टैंक का वजन और इसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशो होगा, उतना ही अच्छा टैंक हो सकता है।
0: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो, अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।

टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी कि टैंक पर लगी तोप का साइज कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा।

यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव होगा। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागने में सक्षम

दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका अब्राहम M1, और भारत का जो है वो T-90 टैंक है, और हमारे पास T-72 भी है, और अब विजेंद्र बनाया है हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए। तो ये सच्चाई है, आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दिखलाना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T-90, T-72 और विजेंद्र।

टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चलता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है, कितनी तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर कर सकते हैं।

0: अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं, टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को ट्यूरेट कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। ट्यूरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगा सकते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला आसान हो जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है, और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान, चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
1: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजीशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिसगाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
0: युद्ध के मैदान में टैंकों के लिए एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन ने एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए माइंस प्लगर का

0: इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइन प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रॉल्स लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रॉल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छिड़का जाता है जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगे हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जा रहे हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है, जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रास्ते में इसे दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बास्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
0: टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है और साथ ही इस पर एक्सप्लोसिव भी लगाया जाता है जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोला बेअसर साबित हो।
2: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है, और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके, तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा, तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: टैंक के मेन गन से एमिनेशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है और साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना दिया जाता है जो धुएं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है? पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है? और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है? कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया। केजीएल लिज मेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हासिल हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तस्वूर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय है। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड द फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वाज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड्स क्वीन बन गई। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवत गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती हैं।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। आजकल यहाँ पे ला मर्से नाम का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, आप भी उसके खास नजारे के दीदार कीजिए।
7: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है, तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों में ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है और मौका त्योहार का है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है ला मर्से, जो 23 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव गर्मियों की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा बार्सिलोना शहर एक विशाल स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इस त्योहार का सबसे रोमांचक हिस्सा ह्यूमन पिरामिड बनाना है, जिसे स्थानीय भाषा में कास्टियोस कहते हैं। इसमें मीनार के सबसे ऊपर एक बच्चा ही पहुंचता है और हाथ उठाता है, इसका मतलब होता है कि उस टीम का ह्यूमन टावर पूरा हो गया है। इसे स्पेनिश परंपरा में एकता, साहस और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। 155 साल पुराना फेस्ट शहर की संरक्षक संत आवर लेडी ऑफ मर्सी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बार्सिलोना के अलग अलग हिस्से में फ्री म्यूजिकल कंसर्ट, स्ट्रीट डांस, ओपन एयर थिएटर और कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्पेन के इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए करीब 30 देशों से कलाकार बुलाए गए हैं, और इस फेस्ट का आनंद उठाने के लिए 10 से 15 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है, पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है, और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है, कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या के मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया KGL लिस्ट में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी रच दिया इतिहास। ईरान को हरा के जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता। अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया एक नया रिकॉर्ड। 10वीं बार एशियाड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में रहा शानदार प्रदर्शन। भारत के कुल अब तक 30 मेडल। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हरा के अपने नाम किया ये मुकाबला। भारतीय एथलीट प्राची चौधरी ने एशियाई गेम्स के महिला 400 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्राची ने 53.21 सेकंड का समय निकाल के जीता मेडल। मिक्स डबल स्क्वाश में भी देश को मिला मेडल। चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने जिताया ब्रॉन्ज। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर। वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हरा के फाइनल में बनाई अपनी जगह है। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर। स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने से चूके। एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड। एशियन गेम्स में आज सिल्वर मेडल से हुई थी भारत की शानदार शुरुआत। पुरुषों के मैराथन में सावन बरवाल ने जीता मेडल। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय लिया जो उनका पर्सनल बेस्ट और नया नेशनल रिकॉर्ड है। बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 21 सेकंड से बेहतर किया। सावन ने खत्म किया 44 साल का सूखा। इस इवेंट में 1982 की दिल्ली एशियन गेम्स में भारत को मिला था ब्रॉन्ज। भारत की बेटियों ने फिर किया कमाल। महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। आशी तिलोत्तमा और विदर्शा की तिगड़ी ने दर्ज कराई शानदार जीत। 1763 पॉइंट्स के हासिल। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई। गिरगांव चौपाटी पर गणपति प्रतिमा का हुआ विसर्जन। आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहिब रंगारी गणपति का विसर्जन। पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान जारी। अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी इस मुहिम में हुए शामिल। दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच। मां सीता बनेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 KGL लिस्ट में जो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवान राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन। 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया जाएगा इसका आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु दारा सिंह आएंगे नजर। अवतार गिल मेघनाथ और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखी थी ये रामलीला। इस साल भी सुंदर सेट और नई तकनीक के जरिए नए रूप में दिखेगा त्रेतायु। आज से पितृपक्ष पितरों के तर्पण का पर्व 10 अक्टूबर तक चलेगा। ये महालय पक्ष सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा पितृपक्ष का समापन। आज पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आगाज दिवंगत हुए पितरों का किया जाता है श्राद्ध। इसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार चलेगी श्राद्ध की परंपरा। 15 दिनों तक पितरों के नाम तर्पण और दान, पितृपक्ष में पूर्वजों के स्मरण और श्रद्धा की परंपरा, तर्पण पिंडदान और दान पुण्य किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का किया जाता है श्राद्ध। पितरों के तर्पण के लिए सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का कुतुब काल सर्वश्रेष्ठ। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा का श्राद्ध 27 सितंबर को पितृपक्ष की होगी औपचारिक शुरुआत। इस दिन प्रतिपदा तिथि का किया जाएगा श्राद्ध। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का छप्पन भोग। अनंत चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गिरिराज तलहटी में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। भक्तों ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर लिया उनका आशीर्वाद। हजारों श्रद्धालु के बीच धार्मिक आयोजन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। विशेष सजावट ने गिरिराज तलहटी की बढ़ाई भव्यता। मंदिर में गिरिराज महाराज का हुआ भव्य दिव्य श्रृंगार। गिरिराज महाराज का पंचरत्न महाअभिषेक किया गया। गिरिराज महाराज के दरबार में भक्तों की आस्था का रंग, पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। केदारनाथ धाम में रात से बारिश जारी। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं यात्री। बारिश के बीच बादलों से घिरी दिख रही है केदार नगरी। मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई यात्रा व्यवस्था की मुश्किलें। प्रशासन सतर्क, अलर्ट पर राहत और बचाव की टीमें। हेमकुंड साहिब में फिर शुरू हुई बर्फबारी। जबरदस्त ठंड के बीच सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड। तापमान में आई गिरावट, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। किन्नौर के सीमांत इलाकों में सीजन की ताजा बर्फबारी की शुरुआत हो गई। कुन्नू, चारंग, छितकुल और दुमती में बर्फ के सफेद चादर से मौसम खुशनुमा हुआ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। बर्फ गिरने से पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत हो गया। ताजा हिमपात के बाद किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़ा सर्दी का असर। मवेशियों के लिए करने पड़ रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में हुई राहत वाली बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट, उमस और गर्मी से मिले लोगों को राहत। रामनगरी अयोध्या में लगातार बारिश के बीच रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था अब भी अधिक। छतरी लेकर रामलला के दरबार पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़ जैसे हालात। 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। 525 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। बाढ़ के इस भयावह माहौल के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। बीमार छात्र की बचाई गई जान। इंद्रावती जलाशय से पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ के कुछ हिस्सों में स्थिति और भी खराब। राहत कार्य जारी। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा 27 सितंबर तक के लिए स्थगित की गई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया निर्णय। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी। लखनऊ में लगातार बारिश के बीच ऐतिहासिक हुसैनाबाद गेट का एक हिस्सा ढह गया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। गोरखपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित। ओडिशा के गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन लगातार माइकिंग कर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बस्तर में लगातार 5 दिनों तक हुई तेज बारिश के बाद इंद्रावती नदी सहित उसके सहायक नदियों में आई बाढ़, पूरा बस्तर जिला हो गया पानी पानी। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही है झमाझम बारिश, कई इलाकों में भर गया है पानी। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज और रुक रुक कर हो रही बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। टेहरी में मौसम ने बदली करवट, सुबह से जोरदार बारिश जारी।

ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी से सफेद चादर में ढके पहाड़, बर्फ से चमक उठी है बद्रीनाथ की चोटियां। बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालु का उत्साह बरकरार है। गर्म कपड़े और बरसाती के साथ श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। भारत चीन सीमा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान डटे हुए हैं। मुश्किल मौसम में भी जवान लगातार निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु की आवाजाही बढ़ी है। बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालु पितृतट पर और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। भारी बारिश के अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा फिलहाल रोकी गई है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना की नेक पहल, सेना के सर्जनों ने एलओसी पर 220 आम नागरिकों की आंखों की रोशनी लौटाई। सेना ने आयोजित किया ऑपरेशन दृष्टि का 10वां एडिशन, इसके तहत दो दिनों में की गई 220 लोगों की आंखों की सर्जरी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंच के लाभार्थियों का जाना हालचाल। लोगों ने सेना की इस नेक पहल के लिए उनको शुक्रिया अदा किया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी युद्धाभ्यास 2026 में स्काई स्ट्राइकर का सटीक हमला, टारगेट का पता लगाने और सटीक हमला करने की क्षमता का किया गया प्रदर्शन। इस कार्रवाई ने आधुनिक युद्ध में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया, अनमैन सिस्टम्स की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाया। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं होंगी इसमें शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान, मेजर जनरल जूलियन सबेने की अगुवाई में लेंगे हिस्सा। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026, दुनिया भर की वायुसेनाएं दिखाएंगी अपने करतब। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने विमानों के साथ हो रहे हैं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होगा अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेगा F-35 विमान। फिल्म नई नवेली का गाना भाभी तबाही हुआ रिलीज, वायु ने लिखे इसके लिरिक्स तो वहीं शानदार गाने के कॉम्पोजिशन जीवी प्रकाश कुमार ने किया है। संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया। एक्ट्रेस ग्लैमरस रेट्रो विंटर्स अंदाज में नजर आ रहे हैं। गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया पहली बार फिल्म तुम मेरे हूं में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। नीम करोली के बाद पर्दे पर दिखेगा राजस्थान के बाबा रामदेव पीर की कहानी, साल 2027 में रिलीज होगी कृष्णा अवतार। सीताराम की गूंज के साथ 50 दिन से बॉक्स ऑफिस पर कायम हनुमान अंश का जलवा, 381 करोड़ के पार फिल्म की कमाई। चीन के हुनान प्रांत में 2026 ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। 16 देशों की 24 टीमें दिखा रही अपना दमखम। युआनलिंग में दुनिया भर की टीमें ड्रैगन बोट में हिस्सा ले रही हैं। टीमें ताकत और तालमेल के साथ जीत के लिए चला रही हैं पर। ड्रैगन बोट रेस की जड़ें चीन की 2000 साल पुरानी लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। आज यही खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ड्रैगन बोट रेस अब चीन तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में इस खेल की टीमें मौजूद हैं। अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही ताल में नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। रेस में टीम वर्क और तालमेल सबसे अहम भूमिका।

0: की पंक्तियों को भी आसमान में उकेरा गया। चांद और दूर रह रहे अपनों के रिश्ते का संदेश दिया गया। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में आधुनिक तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया गया। केबल कार, लालटेन और ड्रोन शो ने लोगों को खास अनुभव दिया। मिड ऑटम फेस्टिवल चीन के प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में शामिल है। इस मौके पर परिवार साथ आते हैं, चांद देखते हैं और मून केक बांटते हैं। चीन में 1.10 लाख वर्ग मीटर के टेरेस पे खासा म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। चांदनी और संगीत के बीच त्योहार का जश्न मनाया गया। पहाड़ियों पर बने टेरेस का आकार विशाल फिंगरप्रिंट जैसा नजर आता है। इसे अनोखे मंच पर म्यूजिक और लाइट शो ने लोगों का ध्यान खींचा। मिड ऑटम फेस्टिवल के मौके पर पूरे कार्यक्रम को चांद की रोशनी के थीम पर सजाया गया। नेचुरल लैंडस्केप के बीच लाइव परफॉर्मेंस ने माहौल को और भी ज्यादा खास बना दिया। चीन के अलग अलग हिस्सों से लोग वुमिंग पहाड़ियों में इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। संगीत और रोशनी के साथ लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाया। शिक्सियांग के अनोखे पहाड़ी नजारे के बीच हुआ यह कॉन्सर्ट आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। चांदनी पहाड़ और संगीत ने मिलकर दर्शकों को अलग ही अनुभव दिया। शंघाई में वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में पहली बार ड्रोन का हो रहा है मुकाबला। प्रतियोगी ड्रोन बनाकर उड़ाने के साथ प्रोग्रामिंग और मरम्मत भी कर रहे हैं। ड्रोन इवेंट में 11 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन की इस प्रतियोगिता का नतीजा रविवार को सामने आएगा। प्रतियोगियों को इंजीनियर, प्रोग्रामर और पायलट तीनों की भूमिका निभानी होगी। उन्हें ड्रोन असेंबल करना, सॉफ्टवेयर ठीक करना और मुश्किल उड़ान भरने की परीक्षा देनी होगी। चीन के जेंगचेन ने सबसे पहले ड्रोन असेंबल का टेस्ट फ्लाइट शुरू की। पहले 3 दिनों के प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ भी हुई। ड्रोन अब सुरक्षा, खेती सर्वे और मैपिंग जैसे कामों में किए जा रहे हैं इस्तेमाल। प्रतियोगिता के अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन टेक्नीशियन के तौर पर भविष्य में मौके और भी बढ़ सकते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: Good news today.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं, तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है।

0: बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारें हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल नेंसिलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की पौराणिक लोक कथाओं पर बेस्ड फिल्म द वन ने सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि आज इसने अब तक 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है।

0: रहस्य रोमांच और छठ पूजा के रंग में रंगी फिल्म द वन ने धमाकेदार ओपनिंग की है। पौराणिक और भारतीय लोक कथाओं पर बेस्ड द वन ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9.60 करोड़ की ओपनिंग ली है। द वन के अगर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने भारत में 8 करोड़ तक का बिजनेस किया है। हालांकि फिल्म की कुल बॉक्स ऑफिस सफलता वीकेंड की कमाई और आने वाले दिनों में इसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। दरअसल पहली बार बॉलीवुड फिल्म में छठ पूजा दिखाने को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, जिसकी वजह से अच्छी एडवांस बुकिंग भी हुई थी। फिल्म के रिलीज पर दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला जुला रिव्यू मिला है, फिर भी फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी द वन को ओपनिंग डे पर नानी की द पैराडाइज से मुकाबला करना पड़ा, जिसके चलते इसकी कमाई पर भी असर पड़ा, लेकिन फिर भी इसका कलेक्शन अच्छा रहा। द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के हिंदी 2D वर्जन ने पहले दिन कुल 28.25% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी नाइट शो में देखी गई, ऑक्यूपेंसी 41.46% रही। शाम के शो में 26.08 और दोपहर की स्क्रीनिंग में 24% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सुबह के शो में 12.23% ऑक्यूपेंसी रही। फिल्म के पहले दिन देश भर में 6,746 शो हुए। पहले दिन के आखिर तक इसका इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ के करीब रहा। द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी बिहार के एक रहस्यमय जंगल की है, जहां दिन ढलने के बाद प्रवेश निषेध होता है। फिल्म की कहानी वहां के 400 साल पुराने माँ वन देवी के मंदिर और वहां से जुड़ी रहस्यमय लोक कथाओं पर आधारित है। एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार को फिल्म में नास्तिक दिखाया गया है, तो वहीं उनकी पत्नी ममता का किरदार निभाने वाली तमन्ना भाटिया की आस्था में बहुत गहराई दिखाई गई है। द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है। वहीं सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, मनीष पॉल और अवतार गिल सहायक भूमिकाओं में हैं। परमानेंट रूममेट्स और पंचायत जैसे शो के मशहूर निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। द रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है, पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है, और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है, कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया KGR लिजमेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, पितृपक्ष के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है यानी पितरों को याद करने का दिन। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल करके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अद्भुत प्रयोग के बारे में जानेंगे इनके, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए। गाय की, कुत्ते की, भैंस की, पशुओं की सेवा करिए। और जब आपको मौका मिले तो पितृपक्ष में किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करिए। अगर आप पितृपक्ष में ये शुभ कार्य करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 27 सितंबर 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या कहता है।
1: दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, पितृपक्ष के बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी। और सबसे पहले हम पंडित जी से बात करने वाले हैं जल के महत्व के बारे में। जल ही जीवन है पंडित जी, ये तो हमने सबके मुंह से सुना है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन पितरों से आखिरकार जल का क्या संबंध है, इसे समझना बेहद जरूरी है।
1: जी, हम आपको बता रहे हैं पितृपक्ष में अलग अलग चीजों के प्रयोग के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जल की यानी वॉटर की। क्या महत्व है इसका? देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु, टेंजिबल जो आइटम है, वो जल है, जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बिना जल के संभव नहीं है। जल में खड़े होकर अंजुलि में, अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें जल लेकर पितरों को अगर आप जल दें तो सर्वोत्तम होगा। और पितृपक्ष में सूर्योदय के पहले पीपल में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप पितृपक्ष में जानबूझकर जल की बर्बादी करेंगे या करते हैं तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में जल की बर्बादी करने से आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
1: मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम में अभी विलंब होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे अग्नि की। तो अग्नि का मानव जीवन में क्या महत्व है? कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तब अग्नि में ही हमारा जो देह होता है वो जलकर खाक हो जाता है। तो अग्नि और पितर, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, जैसे जल बड़ा महत्वपूर्ण है आचमन के लिए, संकल्प लेने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, पूजा के लिए, प्राण के लिए, वैसे ही अगर हम परंपरागत रूप से देखें, भारतीय परंपरा में देखें, तो अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत सारे धर्मों में अग्नि की बड़ी मान्यता है और इसीलिए सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। आप किसी भी धर्म में देखिए, दीपक के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में, अलग अलग तरीकों से अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह के समय वर और कन्या अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कोई आहुति डालते हैं भावनाओं से, मंत्रों से, तो ये आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सारे भोजन में से जरा जरा सा भोजन निकाल करके इनकी सबसे पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप सुगंध की 5 आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलेगी। महीने में 1 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर सुगंधित हवन सामग्री 11 आहुति कम से कम अग्नि में उस हवन सामग्री की दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, कल्याण होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, करियर की तमाम चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1984, जन्म का समय सुबह के 10:05, जन्म स्थान है अयोध्या। ये कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जे थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले और कर्जे मेरे कम हो सकें। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कर्ज को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्जा बहुत दिन रहेगा नहीं और व्यापार आपका लगभग अभी नवंबर के महीने से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आने वाले समय में अपने डाइजेशन का, अपने पेट का अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा स्वास्थ्य को संभालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न अनिल कुमार जी ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1978, जन्म का समय रात में 11:10, जन्म स्थान है जोधपुर राजस्थान में, लिखते हैं गुजरात से। अनिल जी कह रहे हैं कि नौकरी में समस्याएं बहुत है मेरी और मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनिल जी, मैं आपको कहूंगा कि अभी थोड़े समय तक यहीं पर समय बिताइए, क्योंकि अभी नौकरी बदलने की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। मार्च 2027 के बाद आपकी नौकरी और स्थान दोनों में परिवर्तन की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। करियर में आपको दिक्कत ना हो, सही समय पे नौकरी बदल जाए, इसके लिए इस समय भगवान गणेश की पूजा करें। सुबह शाम 108 बार गणपति के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और रविवार को गुड़ का या गेहूं के आटे का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: तो जब भी पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं उसमें उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में उड़द की दाल का मानव जीवन में क्या महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, ये पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
1: देखिए, वैसे तो हर दाल का अपना महत्व है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन विशेष रूप से पितरों की पूजा में, तंत्र की पूजा में उड़द की दाल का प्रयोग बहुतायत में होता है, काफी किया जाता है। क्या महत्व है इसका? उड़द की जो दाल है, काली उड़द की दाल, ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है, और पितरों के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती हैं उन वस्तुओं में उड़द की दाल की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल की जो वस्तुएं हैं उसका काफी प्रयोग होता है। अगर किसी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो भैरव देव को उसकी आत्मा की शांति के लिए उड़द की बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या घर में किसी का देहांत हो गया, अगल बगल में किसी का देहांत हो गया, आपको डर लग रहा है, तो शनिवार के दिन 1 मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, पीपल के नीचे रखिए, उस पर जरा सा दही और सिंदूर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके मन का वहम और भय गायब हो जाएगा। जिन लोगों को अज्ञात डर सताता हो, अज्ञात बाधा लगती हो, ऐसे लोग अगर काली उड़द की दाल थोड़ी सी रख के शनिवार को पीपल के नीचे उस पे जरा सा दही और जरा सा सिंदूर गिरा दें, लगा दें, तो निश्चित रूप से इस तरह का डर और वहम समाप्त होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में काले तिल के बारे में बात कर लेते हैं। काले तिल का मानव जीवन में आखिरकार क्यों इतना महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, आइए समझते हैं।
1: काला तिल बहुत सारी पूजा उपासना में, विशेष तरह के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। काले तिल का पितृपक्ष से, पितरों से क्या संबंध है? देखिए, काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का दान अगर आप करें, थोड़े से काले तिल का दान शनिवार को या अमावस्या को आप करते रहें तो अज्ञात बाधाओं से, अननोन प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। जल में काला तिल डाल करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। जब रोज दोपहर के समय में पितरों को जल दिया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है, तो जल में काले तिल डाले जाते हैं और तिल मिला हुआ जल अपने पितरों को अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुश का मानव जीवन में क्या महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, आइए पंडित जी से ही जानते हैं।
1: देखिए, हिंदू परंपरा की पूजाओं में पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पत्तों का, यहां तक कि घास का भी महत्व है। जैसे आप देखे होंगे कि गणपति को पूजा में दूर्वा चढ़ती है, एक तरह की घास है, कुश भी एक तरह की घास है। पितरों से इसका क्या संबंध है? माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है, अमृत तत्व पाया जाता है। जल में कुश को रात भर भिगा करके सुबह उसी जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है कुशोदक से, और कुशोदक से अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो नियम ये है कि जल में काले तिल मिला लिए जाएं और हाथ में कुश ले लें या कुश घास की अंगूठी, पैंती कहते हैं उसको, उसको आप पहन करके तब तर्पण करेंगे, तब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, मेंटल डिप्रेशन रहता है या मन की समस्याएं परेशान करती हैं, तो जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कुश घास का शरबत बनाया जाता है आयुर्वेद में, और इसको पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। मुख्यतः पितृपक्ष में जो रोज तर्पण किया जाता है, जो रोज पितरों को जल दिया जाता है, वो बिना काले तिल और बिना कुश घास के कतई संभव नहीं है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, ऑफिस की तमाम समस्याएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न हमें शकुंतला जी ने लिखा है और शकुंतला जी मुरादाबाद से हमें मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 17 जनवरी 1994, जन्म का समय सुबह के 5 बजे, जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है, लेकिन हमें लड़की पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि बेटे का विवाह वहाँ ना हो, कहीं और हो जाए, तो क्या स्थिति बन रही है, क्या उपाय करना चाहिए? शकुंतला जी, आपके पुत्र की कुंडली में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो विवाह अपनी मर्जी से ही करेंगे, जानी पहचानी बालिका के साथ। आप भी लड़की की कुंडली दिखा लीजिए, कुछ प्लस माइनस हो तो उपाय कर लीजिए और बेटे की इच्छा में सहमति व्यक्त करिए, क्योंकि वो रुक नहीं पाएंगे, उनको रोक पाना बड़ा कठिन है। कुंडली की संभावनाएं भी उनकी मनमर्जी ही दिखा रही हैं। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के बेहतर जीवन और भविष्य के लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार की शाम को जलाइए तो काफी अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बता
1: जी। आज का अंतिम प्रश्न निकिता जी ने हमें लिखा है और निकिता हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1990, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद गुजरात। निकिता कह रही हैं कि मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूं कि मैं गुजरात चली जाऊं वापस, अहमदाबाद में या उसके आसपास कहीं नौकरी मिल जाए, परिवार के आसपास रह सकूं, तो इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? निकिता, आप अभी नौकरी बदलने की कोशिश करिए, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने की संभावना भी प्रबल है और वापस आप अपने नेटिव प्लेस के पास जा पाएंगी, वापस अहमदाबाद या उसके पास जा पाएंगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी आप नौकरी में ही रहिएगा, अभी जल्दबाजी में जोश में आ करके व्यापार में एंट्री मत करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल प्लेन वाटर, और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका बर्थडे यानी जिनका जन्मदिन 27 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए जल्दी से पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 27 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग इस साल बनते हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम पितृपक्ष में तर्पण नहीं करते, क्या होता है उससे, नहीं करेंगे क्या हो जाएगा। तो क्या पितृपक्ष में तर्पण ना करने का नुकसान होता है? देखिए, नियम तो ये कहता है कि रोज पितरों को याद करके जल देना चाहिए, नहीं तो पितृपक्ष में तो जल देना ही चाहिए, उनके आशीर्वाद के लिए उनको याद करने का एक तरीका है, जल दीजिए, प्रार्थना करिए उनके लिए। अगर आप जानते हैं, आपको जानकारी है, आप कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसके बावजूद आप तर्पण नहीं करते, तो इसका अशुभ प्रभाव आपके संतान के ऊपर पड़ सकता है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं 27 सितंबर 2026 यानी दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: 27 सितंबर 2026 दिन रविवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: तो चलिए अब समय हो गया पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में किन चीजों का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको पूजा में दीपक जलाना चाहिए या कपूर जलाना चाहिए, इसका प्रयोग करना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष कम होगा।
0: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा है। क्या करें कि मकान जल्दी बने? अपने भाई से एक तांबे का सिक्का ले आइए, किसी भी दिन मंगलवार को लाएं तो बड़ा अच्छा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के साथ आपको मकान होने का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ गुड लक डे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी है और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब बात करते हैं हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन देखिए, इस बार सबसे बड़ा आकर्षण जो है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बना है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर

0: 1920 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के ईए 18 जी ग्रॉलर, ग्रीस और यूएई के एफ 16 तथा अमेरिका के ए 10 और एफ 16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी एफ 35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एशियन गेम्स 2026 में आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा। कबड्डी में भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने फाइनल में शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता। कप्तान पुष्पा राणा की अगुवाई में भारत की बेटियों ने कड़े मुकाबले में ईरान को 37-34 के अंतर से मात दी। पदक विजेता टीम की कप्तान से पुष्पा राणा और खिलाड़ी पूजा से हमारे खेल संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के खास बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं।
2: देखिए जी, जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है। जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है। पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं। पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
3: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है, क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
4: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाले टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
2: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
3: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
2: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
3: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
2: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेन्स टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
3: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है।
2: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज ताइपे को भी
3: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था

0: तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
1: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी,
0: हाँ जी
1: और अब जो है ये देखिए आप, एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
0: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी। प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है
1: पूजा आप कुछ कह,
0: अपनी गेम को ऐसा देखना।
1: क्योंकि क्या होता है ना कि रिकग्निशन, पहचान भी होना बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए अभी पुष्पा ने कहा कि क्रिकेट के बाद प्रो लीग ने यहाँ पर कबड्डी को भी बहुत ऊपर वो लेकर आया है, बट अब जब आप जाते हैं अपने घर परिवार, दोस्त में, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, तो आपका भी तो यार ऑटोग्राफ्स आप मांगते होंगे, आपसे सारे लोग सेल्फी उल्फी लेते होंगे।
0: ये तो है सर, मांगते हैं, फैंस वगैरह भी आते हैं, पर जो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने में जो प्राउड फील होता ना, मतलब वो अलग ही वाइब होती है।
1: एब्सोल्युटली सही बात है। अच्छा, दो तीन चीजें और, क्योंकि क्या है ना, आप लोगों को देखकर अलग अलग शहरों के गांवों में, गलियों में अब कबड्डी जो है हमारी, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां भी वो खेलना शुरू कर दिया है, उनको आप क्या कहोगे कि इस स्टेज तक आना है, भारत का नाम रोशन करना है, तिरंगा जो है वो उसको ऊपर तक पहुंचाना है, क्या उनको मैसेज दोगे, क्या करना चाहिए उन लोगों को?
0: हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि आप हार्ड वर्क करें, और जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही लेवल पे आप पहुंचोगे। और जैसे आज की जनरेशन है वो बहुत फास्ट अचीवमेंट चाहते हैं कि भाई हमने आज खेलना स्टार्ट करा तो आज ही हमें वो मिलेगा, उसका फल मिलना चाहिए, नहीं तो निराश हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करना, एक लंबा टारगेट लेके रखना। जब आप कंटिन्यू उस चीज को मेहनत करते रहोगे तो आपको जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा।
1: अच्छा, आप पूजा, आपसे भी और पुष्पा आपसे भी, आप दोनों इस बात का जवाब दे दिया। क्या होता है ना कि खिलाड़ी जब उसको सक्सेस मिल जाती है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी के उस अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा सेक्रीफाइस, बलिदान ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि पूरी फैमिली भी करती है। सो आप लोगों के बैक स्टोरी क्या है, किस तरीके से फैमिली ने, मम्मी पापा ने, दोस्तों ने, पूरी फैमिली, क्या सपोर्ट सिस्टम और किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए?
0: लिटरली मैं सच कहूँ तो घर के फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं। मैंने तो अपने सिस्टर की शादी भी पिछले बार लास्ट वाले जो एशियन गेम्स के कैंप थे, तो मेरे रियल सिस्टर की शादी थी तो मैं वो भी मतलब ज्वाइन नहीं कर पाई थी उनको वहां पे। और बहुत सारी है जो इंजरीज इंजरी को लेके है, जब आप इंजर्ड होते हो तो आप क्या बोलते हैं मतलब आप माइंड सेटअप भी उस हिसाब से नहीं रख पाते हो, खुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। और बट इसमें हमारे कोचेज हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमारे फिजियो जो रहते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल वाली रहती है।
1: जी पूजा,
0: मतलब ऐसा है सर, मतलब कि जब एक खिलाड़ी स्ट्रगल करता है ना तो मतलब उसको गांव है, कुछ भी है, आसपास के लोग हैं, मतलब वो मोटिवेट नहीं करते, उसको डीमोटिवेट करते हैं। हाँ क्या है, कुछ नहीं करेगा, यही रह जाएगा, ऐसा ऐसा। पर जब वो सक्सेस होता है ना तो उस सक्सेस के पीछे ना कि फैमिली, तब वो सभी एक साथ पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई हमारे गांव का बच्चा है, ऐसे है वैसे है, मतलब जो है वो फैमिली है, फैमिली मोटिवेट करती है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, और बाकी तो सक्सेस होने के बाद ही आते हैं।
1: कभी ऐसा हुआ पूजा कि आपको भी किसी ने, आस पड़ोस के लोगों ने बोल दिया यार आप क्या जा रहे हो, कि ये कैसा स्पोर्ट है, इंजरी हो सकता है, आप एक फीमेल हैं, कल को शादी करनी होगी, कैसे स्पोर्ट में जा रहे हो, मत खेलो, ऐसा भी बोला होगा आपको, आपको कभी हुआ ऐसा?
0: नहीं सर, हमारे मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, पर जो मेरी फैमिली थी ना, मेरी फैमिली में मेरे दादाजी हैं, उनसे ज्यादा सपोर्ट किसी ने नहीं किया मेरे को।
1: वेरी गुड, यही होना भी चाहिए, क्योंकि परिवार में परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और मैं तो यार अब क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी खुशी होती है जब भारत का तिरंगा ऊपर जाता है, और इतनी मेहनत आप लोगों की, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम उम्मीद करेंगे कि भारत की ये जो कबड्डी टीम है इसी तरीके से आगे भी हम सबको खुश होने का मौका देती रहेगी। थैंक यू सो मच पूजा और पुष्पा।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: त्रिपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है? पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है? और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है? कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला, बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है, ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिपकर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों? 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। सो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है, आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है, जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है। वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसलिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात, टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंत मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया KGR लिज में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशीबाजी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाली स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 इयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ्स से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहीं। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से पल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थामकर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही है। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But

0: is, it's just like 10 people out of 100 recognizes you. And you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
1: इन सब के बावजूद सांगली से स्मृति का बहुत गहरा लगाव है। दो साल की थी स्मृति जब सांगली से उनका नाता जुड़ा, और आज भी सांगली जाना और वहाँ वक्त बिताना उन्हें बहुत पसंद है।
2: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
1: सांगली में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि सांगली के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि सांगली में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
3: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए अब बात करते हैं हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन देखिए, इस बार सबसे बड़ा आकर्षण जो है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बना है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा

0: दो KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। आजकल यहाँ पे ला मर्से नाम का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप भी उसके खास नजारे के दीदार कीजिए।
2: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों में ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है और मौका त्योहार का है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है ला मर्से, जो 23 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव गर्मियों की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा बार्सिलोना शहर एक विशाल स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इस त्योहार का सबसे रोमांचक हिस्सा ह्यूमन पिरामिड बनाना है, जिसे स्थानीय भाषा में कास्टियोस कहते हैं। इसमें मीनार के सबसे ऊपर एक बच्चा ही पहुंचता है और हाथ उठाता है। इसका मतलब होता है कि उस टीम का ह्यूमन टावर पूरा हो गया है। इसे स्पेनिश परंपरा में एकता, साहस और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। 155 साल पुराना फेस्ट शहर की संरक्षक संत आवर लेडी ऑफ मर्सी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बार्सिलोना के अलग अलग हिस्से में फ्री म्यूजिकल कंसर्ट, स्ट्रीट डांस, ओपन एयर थिएटर और कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्पेन के इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए करीब 30 देशों से कलाकार बुलाए गए हैं और इस फेस्ट का आनंद उठाने के लिए 10 से 15 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के उच्च पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के जिया लिज में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम दैट इज मेन इंजन जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे। दैट मींस अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर हैं, जो आवाज के जो सिग्नेचर हैं, वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है, आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है, आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है। तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है। और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसलिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात, टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फी बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुख करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलौड़ी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया KGR लिजमेजो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हासिल हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तान, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशीबाजी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय है। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड द फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वाज रियली वाचिंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गईं और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड्स क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवत गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती हैं।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt

0: कमाल यह है कि सांगली में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
1: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए अब बात करते हैं हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन देखिए इस बार सबसे बड़ा आकर्षण जो है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बना है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश

0: देश के C-130J जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटरऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। आजकल यहाँ पे ला मर्से नाम का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप भी उसके खास नजारे के दीदार कीजिए।
2: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों में ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है और मौका त्योहार का है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है ला मर्से, जो 23 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव गर्मियों की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा बार्सिलोना शहर एक विशाल स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इस त्योहार का सबसे रोमांचक हिस्सा ह्यूमन पिरामिड बनाना है, जिसे स्थानीय भाषा में कास्टियोस कहते हैं। इसमें मीनार के सबसे ऊपर एक बच्चा ही पहुंचता है और हाथ उठाता है। इसका मतलब होता है कि उस टीम का ह्यूमन टावर पूरा हो गया है। इसे स्पेनिश परंपरा में एकता, साहस और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। 155 साल पुराना फेस्ट शहर की संरक्षक संत आवर लेडी ऑफ मर्सी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बार्सिलोना के अलग अलग हिस्से में फ्री म्यूजिकल कंसर्ट, स्ट्रीट डांस, ओपन एयर थिएटर और कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्पेन के इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए करीब 30 देशों से कलाकार बुलाए गए हैं और इस फेस्ट का आनंद उठाने के लिए 10 से 15 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के उच्च पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल। रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया। KGR लिज में जो राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है, मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम दैट इज मेन इंजन जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान 0 से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है, जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है। वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में आईएमडी का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तान, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर ICC अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तस्वूर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पापा को डर लगता था कि you know, मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती हैं।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से पल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवद गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवद गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गई। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवद गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही है। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्लेस्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि सांगली के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि सांगली में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की लिस्ट में जगह बनाई है।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: तो चलिए अब बात करते हैं हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन देखिए, इस बार सबसे बड़ा आकर्षण जो है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बना है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16

0: से विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। आजकल यहाँ पे ला मर्से नाम का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप भी उसके खास नजारे के दीदार कीजिए।
2: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों में ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है और मौका त्योहार का है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है ला मर्से, जो 23 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव गर्मियों की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा बार्सिलोना शहर एक विशाल स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इस त्योहार का सबसे रोमांचक हिस्सा ह्यूमन पिरामिड बनाना है, जिसे स्थानीय भाषा में कास्टियोस कहते हैं। इसमें मीनार के सबसे ऊपर एक बच्चा ही पहुंचता है और हाथ उठाता है। इसका मतलब होता है कि उस टीम का ह्यूमन टावर पूरा हो गया है। इसे स्पेनिश परंपरा में एकता, साहस और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। 155 साल पुराना फेस्ट शहर की संरक्षक संत आवर लेडी ऑफ मर्सी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बार्सिलोना के अलग अलग हिस्से में फ्री म्यूजिकल कंसर्ट, स्ट्रीट डांस, ओपन एयर थिएटर और कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्पेन के इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए करीब 30 देशों से कलाकार बुलाए गए हैं और इस फेस्ट का आनंद उठाने के लिए 10 से 15 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हरा के जीता गोल्ड। पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर के नॉर्मल स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला। प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन। मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया KGR लिज में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में यह अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों? 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके लिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसिलोड़ी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: एशियन गेम्स के सातवें दिन भारत के खाते में 7 मेडल, कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड, पुरुष शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जमकर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, किन्नौर में स्नोफॉल से खिले सैलानियों के चेहरे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, उत्तर भारत के कई जिलों में IMD का अलर्ट। इस साल दिल्ली में दिखेगी अयोध्या की मशहूर रामलीला, प्रभु राम के अवतार में नजर आएंगे रवि किशन, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के जिया लिज में जो। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्काई स्ट्राइकर का सटीक निशाना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2026 में स्वदेशी ड्रोन की दिखी ताकत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हासिल हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थीं और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थीं। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ, BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहीं। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli में स्मृति का पूरा बचपन बीता, यहाँ तक कि Sangli के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि Sangli में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें

अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का बहुदेशीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 शुरू हो गया है। इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन देखिए, इस बार सबसे बड़ा आकर्षण जो है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बना है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

0: आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है। आजकल यहाँ पे ला मर्से नाम का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप भी उसके खास नजारे के दीदार कीजिए।
2: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है, तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों